सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, आप सभी रोज सवेरे नित योग पाठशाला में आकर के योग आसनों को कर रहे हैं और साथ ही साथ उसका लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। हर रोज की तरीके से हम एक आसन प्राणायाम के साथ में एक शब्द को जोड़ करके हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आसन प्राणायाम की उत्पत्ति के साथ साथ उस शब्द का भी कुछ ऐसा असर हो कि हम आप लोगों को उस आसन और प्राणायाम को समझा सके। इस दिवसीय योग शिविर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती है योगिनी समता। तो आइए आज हम बात करने जा रहे हैं नियंत्रण चक्रासन। नियंत्रण चक्रासन के बारे में हम बहुत सारी बातें आपको आज बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें नियंत्रण के बारे में, ये चक्रासन नियंत्रित क्यों है और हमें इसमें नियंत्रण करने के लिए क्या महत्वपूर्ण भूमिका चाहिए। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि नियंत्रण है क्या। कहते हैं किसी भी काम को करने के लिए अगर हम नियंत्रण नहीं रखते हैं तो वह बेकाबू हो जाता है। जिस तरीके से हमें अगर किसी की सवारी करनी है, यानी किसी की, जैसे घुड़सवारी हो गया, हम हाथी पे बैठते हैं, या कई ऐसी सवारी हम कहीं जाते हैं तो शौक के कारण हम सवारी करते हैं, और अगर यदि उसकी लगाम साथ में चलने वाले व्यक्ति के हाथ में ना हो, नियंत्रण करने की शक्ति ना हो, तो कुछ का कुछ हो सकता है। ठीक इसी प्रकार चक्रासन के आगे नियंत्रण शब्द का जोड़ना यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण को दर्शाता है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि चक्रासन में नियंत्रित होना और नियंत्रण करना दोनों ही महत्वपूर्ण है। आगे आसन के बारे में जब हम आपको जानकारी देंगे तब आपको यह विदित हो जाएगा कि नियंत्रण करना और नियंत्रित रहना किसी भी आसन प्राणायाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए हम बढ़ते हैं नियंत्रण चक्रासन की ओर। तो सबसे पहले हम जान लें कि नियंत्रण चक्रासन है क्या। सबसे पहले तो आज हम आपको ये बता दे रहे हैं कि चक्रासन का इतिहास क्या है, यानी कि चक्रासन कैसे शुरू हुआ। हम चक्रासन का उल्लेख 17वीं सदी के हठ ग्रंथ श्रीनिवास भट्ट द्वारा रचित हठ रत्नावली में देखते हैं। पाठ मुख्य रूप से हठ प्रदीपिका से लिया गया है और इसमें पूरे 84 आसनों की सूची है जिसमें से सबसे प्रमुख माना गया है चक्रासन। चक्रासन जैसे किया जाता है हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले चक्रासन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे दें। शरीर में स्फूर्ति शक्ति एवं तेज की वृद्धि करता है। टटी पीड़ा, श्वास रोग, सिर दर्द, नेत्र विकारों, सर्वाइकल में विशेष हितकारी है। हाथ पैरों की मांसपेशियों को सबल बनाता है। महिलाओं के गर्भाशय के विकारों को भी यह दूर करता है। तो आइए अब हम आपको बता दें कि चक्रासन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम किसी मैट पे या चद्दर पर आराम से बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में बैठ जाएंगे। उसके बाद 1, 2, 3 की गिनती करते हुए सीधे लेट जाएंगे पीठ के बल। घुटनों को मोड़ लेंगे, फिर एड़ियां नितंबों के समीप लगी हुई होनी चाहिए, यानी एड़ियां जो हैं वो हमारे हिप्स तक बिल्कुल

फूल पास में ले आए, दोनों हाथों को उल्टा करके कंधों के पीछे थोड़े अंतर पर रखें और इससे संतुलन बना रहता है। पांच अंदर भरकर कटी प्रदेश एवं छाती के ऊपर उठाएं। धीरे धीरे हाथ एवं पैरों को समीप लाने का प्रयत्न करें, जिससे शरीर की चक्र जैसी आकृति बन जाएगी, यानी कि एक चक्र जिस तरीके से होता है उस तरीके से इसकी आकृति बन जाएगी। चक्रासन यानी नियंत्रण चक्रासन करने के लिए जो प्रभावित अंग होते हैं वह हैं मेरुदंड, पीठ, कलाई, टांग व बाह। चक्रासन से क्या होता है ये अभी हमने आपको बताया, और चक्रासन कैसे किया जाता है यह हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको उसके लाभ बताने जा रहे हैं। नियंत्रण चक्रासन के लाभ, रीढ़ की हड्डी लचीली मजबूत बनती है, पाचन क्रिया ठीक होता है, यह पेट और कमर के स्नायु को मजबूत बनाता है, हड्डियाँ मजबूत बनती हैं, मोटापा कम करने के लिए पेट पर जमी अतिरिक्त चर्बी कम करने में मदद मिलती है। नियंत्रित चक्रासन कितने समय तक करना चाहिए आइए हम बताते हैं। पैरों के बल धीरे धीरे उठने की कोशिश करें। हम एक बार फिर से उसकी विधि बताने जा रहे हैं। चक्रासन करने का सही तरीका है, एक बार हम फिर से करते हैं। आप अपने पैरों के बल धीरे धीरे उठने की कोशिश करें और सिर को पीछे की तरफ ले जाते हुए दोनों हाथों के पंजों को जमीन पर रख दें। ध्यान रहे आपकी कमर का पोर्शन हल्का मुड़ा हुआ होना चाहिए। इस अवस्था में आप कम से कम 5-10 सेकंड तक बने रहें और फिर सामान्य अवस्था में आ जाएं। पेट की चर्बी को कम करने में चक्रासन कई तरीके से फायदेमंद होता है, तो आइए हम जान लेते हैं कि किस तरीके से फायदेमंद है। चक्रासन करने की सही विधि और इसके फायदों के बारे में हम पहले भी आपको बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन आइए अब हम आपको चक्रासन यानी नियंत्रित चक्रासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। योगा शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है। रोजाना योगा करने वाले लोग मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। योग के कई आसन होते हैं जो शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और स्वास्थ्य समस्याएं बहुत ही कम हो जाती हैं। पेट की चर्बी से लेकर मोटापा कम करने तक चक्रासन बेहद फायदेमंद होता है। इसका अभ्यास यदि आप नियमित रूप से करेंगे तो इससे आपको और कोई भी कई लाभ प्राप्त मिल सकते हैं। चक्रासन करने की सही विधि और फायदे के बारे में तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इसलिए हम अब इसके फायदे और भी बता करके आपको यह निश्चित कर देंगे कि चक्रासन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। डिप्रेशन, चिंता, तनाव जैसी मानसिक समस्याओं को क्या कम करता है, थायराइड की समस्या को कम करता है और इसके लक्षणों को भी यह कम करता है। इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है, इससे इन्फेक्शन होने का खतरा भी कम हो जाता है। पीठ दर्द, कमर दर्द और घुटनों के दर्द को यह कम करता है। शरीर के लचीलेपन को यह कम करता है। चेहरे और बालों को भी यह चक्रासन बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। तो आइए दोस्तों हम अब अगले ओर चलते हैं, यानी कि चक्रासन की अगले पड़ाव की ओर। चक्रासन की मुद्रा हम आपको बता दें, पवन मुक्तासन यानी कि पवन राहत मुद्रा चक्रासन का एक आदर्श प्रति मुद्रा हो सकता है। बस कुछ श्वासों के लिए इसी मुद्रा में रहें, इससे आपको रीढ़ की हड्डी पर भी जो तनाव से राहत मिल सकती है। चक्रासन कठिन क्यों है ये भी आपको हम बता दें, क्योंकि वाकई में यह कठिन है। चक्रासन करने के लिए बहुत सारे ऐसे लाभ होते हैं जो कि हमें यह करने के लिए मिलते हैं, जिसकी वजह से यह थोड़ा कठिन हो जाता है। उक्त रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, गर्भिणी, हर्निया, नेत्र दोष जिनका ऑपरेशन हुआ हो या चक्कर आने की समस्या हो, गर्दन या कमर से पीड़ित व्यक्ति यह आसन बिल्कुल ना करें। चक्रासन करना कठिन कार्य के कारण अपनी क्षमता से अधिक प्रयास भी ना करें, क्योंकि चक्रासन थोड़ा सा कठिन अवस्था की ओर ले जाता है। इसलिए यह आसन महत्वपूर्ण रूप से यह जानकारी लेने के बाद ही आप इस आसन को करें। आज के समय में पूरी दुनिया ने योग के महत्व को समझा है और इसलिए
सब लोग स्वस्थ रहने के लिए योग की राह पर चल पड़े हैं। योगा सेक्शन के दौरान हम कई तरह के अलग अलग योगासनों का अभ्यास करते हैं। इन्हीं में से एक है चक्रासन। इस आसन का अभ्यास करते हुए शरीर एक चक्र की तरह बन जाता है। इस तरीके से दोस्तों आज हमने किया नियंत्रित चक्रासन। तो अगले प्राणायाम और अगले आसन की ओर हम फिर से मिलेंगे अगले दिन के लिए। तब तक के लिए आइए हम सभी करते हैं ध्यान यानी मेडिटेशन, और हम अगले एक आसन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योगशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मेरे जहन में एक बात आई कि हमने बहुत सारे आसन प्राणायामों को हम सब लोगों ने मिलकर के किया है, लेकिन क्या कभी हम लोगों ने उन चीजों पर ध्यान दिया है जिसमें हड्डी नहीं होती है? सोचने वाला प्रश्न है, क्योंकि हमारे शरीर में कई ऐसे अंग हैं जिसमें हड्डी नहीं पाई जाती है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है नाखून और बाल का। इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए, उस अंग के लिए कोई आसन या प्राणायाम बना ही नहीं है। बिल्कुल बना है। आसन प्राणायाम हमारे संपूर्ण शरीर के एक एक नस के लिए बना है, एक एक अंग के लिए बना है। आपको पता होगा कि मस्तिष्क में जितनी भी नसें होती हैं, हमारी बॉडी में जितनी भी नसें होती हैं, उन सभी के लिए एक एक आसन और एक एक प्राणायाम बना है। 84 लाख जो जिया जून है, हम कई बार सोचते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन क्या आपको ये बात की जानकारी है? पतंजलि में 88,000 जो कि आसन और प्राणायाम बताए जा चुके हैं। तो आप खुद सोचिए, हमारे शरीर में एक एक अंग के लिए, एक एक नस के लिए यह प्राणायाम पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग में बताए गए हैं। अष्टांग योग में 8 नियम आप सभी को पता है। मैंने कई बार, हम लोग जब भी करते हैं योग के बारे में बात करते हैं, तो कई बार मैंने बताए हैं। आप खुद सोचिए कि हर एक अंग के लिए प्राणायाम और आसन है। तो आइए उसी में से आज हम बात करने वाले हैं नाखूनों की आसन के लिए, नाखून के आसन अभ्यास के लिए योगासन। सबसे पहले तो हम बता दें, नाखूनों की पोषण हमें हमेशा से अपने आहार के रूप में करनी चाहिए, साथ ही संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन, विटामिन बी, बायोटीन, आयरन, कैल्शियम नाखूनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कई बार फल तो खाते हैं, फलों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते कि कौन से फल को खाने के लिए हमें उसमें आयरन और कैल्शियम की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता मिल सकती है। नाखूनों को अगर आपको ठीक करना है, नाखूनों को अगर आपको चमकदार बनाना है, तो आपको नींबू का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए खाने में, या फिर फलों के ऊपर। और फल में सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर आप नाखूनों के लिए देखते हैं, तो आपको केले का सेवन ज्यादा करना चाहिए। कैल्शियम की जो एक प्रचुर मात्रा केले में पाई जाती है, और जो शरीर के साथ साथ नाखून को भी चमक और मजबूती देने का काम करती है। तो आइए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे आसन जिसको करने से आप अपने उंगलियों और नाखूनों की सुंदरता बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला उसमें आता है बालायम योग। बालायम योग का मतलब होता है नाखून रगड़ना। आपने इस चीज के लिए तो सुना ही होगा कि कई बार हम जब फ्री भी बैठे होते हैं, आप लोगों ने देखा है, या हम पतंजलि के अनुसार बाबा रामदेव जी को करते हुए देखा है कि कभी भी वो अगर किसी अभ्यास में भी बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तो अपने नाखूनों को रगड़ते रहते हैं, उंगलियों के नाखूनों को रगड़ते रहते हैं। कहा जाता है कि ऐसे नाखूनों को रगड़ने से नाखूनों की जो चमक है वो तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही साथ में आपके बालों की भी वृद्धि होती है। तो ऐसे आसन को उपयोगी होता है करना जिसको एक मात्र उपयोग से उसका जो असर है, उसका जो एक कह सकते हैं कि हमें लाभ है, वो दुगना मिलता है। पहले दोनों हाथों की उंगलियों के नाखूनों को आपस में रगड़ें। रोज 5 से 10 मिनट ये काम करना चाहिए। इससे आपको 2 लाभ होंगे।
आपके नाखूनों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी ठीक होगा, साथ ही साथ में आपके बालों में भी इसमें बहुत ही ज्यादा इसका असर होता है, जिसमें बाल और नाखूनों की जड़ों का रक्त संचार बढ़ता है। दूसरा आसन हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि है पवन मुक्तासन। पाचन तंत्र को मजबूत करता है, साथ ही साथ में अच्छा पाचन, अच्छे बाल और नाखूनों की भी, जितनी भी आप इस आसन को करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होता है। पवन मुक्तासन आसन को हम दिन में या फिर शाम को दो बार, एक सुबह और एक शाम को हम कर सकते हैं। उसके बाद में हम तीसरा आसन करने जा रहे हैं जो कि है वज्रासन। खाने के बाद बैठना, कैसे बैठना है वो हम आपको बताते हैं। खाने के बाद बैठने के लिए जैसे हम पैर को फोल्ड कर लेते हैं, और जब भी हम इस आसन को करते हैं तो थोड़ा सा हमारे पेट में भी, जैसे कह सकते हैं कि हल्का सा एक दबाव होता है, लेकिन हमको उससे घबराना नहीं है। जब भी हम खाना खाते हैं, चाहे वो रात में हो चाहे वो सवेरे हो, हमें दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़ लेना है। साथ ही साथ हम जब बैठेंगे तो दोनों हाथों को अपने घुटनों पर मुट्ठी बांध लेंगे, यानी कि अंगूठे को अंदर कर लेंगे और अपनी चार उंगलियों से उसको दबा लेंगे। भोजन के पाचन में यह बहुत ज्यादा मदद करता है। इससे शरीर में पोषक तत्व सही तरह से अवशोषित होते हैं, जिससे नाखून मजबूत होते हैं और हमें चमकदार नाखूनों के साथ साथ बालों का भी सही पोषण मिलता है। चौथा और महत्वपूर्ण आसन है सूर्य नमस्कार। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नाखून मात्र को स्वस्थ रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए सूर्य नमस्कार क्या जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण एक व्यायाम है, जो कि अगर आपने सूर्य नमस्कार सुबह कर लिया तो आपको कोई और आसन करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। यानी कि बहुत सारे आसनों के नाम हमने अभी आपको बताए, लेकिन सूर्य नमस्कार एक अपने आप में संपूर्ण व्यायाम, जैसे कहते हैं ना कि एक संपूर्ण पैकेज, हम अगर कुछ भी खाने के लिए कहते हैं तो हम एक बड़ी थाली को हमेशा से प्रेफर करते हैं कि उसमें चार पांच सब्जियां होती हैं, दो तरह की रोटियां होती हैं, चावल होता है, सैलेड होता है, अचार होता है, रायता होता है। ठीक वैसे ही एक संपूर्ण थाली हम कह सकते हैं कि अपने शरीर के लिए एक या संपूर्ण थाली का नाम इसलिए दिया क्योंकि सूर्य नमस्कार वाकई में एक संपूर्ण थाली का काम करता है। पूरे शरीर का व्यायाम, रक्त संचार और ऊर्जा संतुलन से नाखूनों पर सकारात्मक असर पड़ता है, साथ ही साथ में यह आपकी ऊर्जा को भी बहुत ज्यादा बढ़ाता है। पांचवा प्राणायाम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि है अनुलोम विलोम कपालभाति। अनुलोम विलोम व कपालभाति हमने अपनी अलग अलग सीरीज में बहुत बार आपको बताया है। जिन लोगों को भी अनुलोम विलोम कपालभाति के बारे में जानकारी नहीं है, हमारी एक योगा सीरीज भी YouTube पे है जिसे आप सर्च करके देख सकते हैं। अनुलोम विलोम की विधि, कपालभाति की विधि संपूर्ण रूप से एक एक स्तर पर बताई जा चुकी है। अब आपको करना कब है ये बता दें। अनुलोम विलोम व कपालभाति सवेरे और शाम को, अगर आप शाम को समय नहीं दे पा रहे हैं तो सवेरे ही आप इसको कर सकते हैं। सुबह सवेरे अगर आप इस प्राणायाम को करते हैं तो आपको शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन और संतुलित ऊर्जा देता है। इससे नाखूनों में चमक और मजबूती के साथ साथ आपके संपूर्ण शरीर को एक अलग सी ऊर्जा प्रदान करता है। ये पांच प्राणायाम आसन जो कि आज हम लोगों ने किए, यह है नाखूनों की स्वस्थ आयु के लिए। कई बार देखा है कि नाखूनों में ना सफेद सफेद एक स्पॉट पड़ जाता है या फिर उसमें पैचेस पड़ जाते हैं, तो आप इन सारे प्राणायामों को, आसनों को करें। उसके बाद में आप अपना जो आहार है वह संतुलित आहार लें, प्रोटीन युक्त लें, विटामिन बी युक्त लें, बायोटीन, आयरन, कैल्शियम, यह सब जरूरी होता है हमारे नाखूनों को स्वस्थ करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आज नाखूनों के लिए बताए जाने वाले सारे योग प्राणायाम आप जरूर से करेंगे, सवेरे जरूर करेंगे योगशाला में आकर।
तब तक फिर से मिलेंगे एक नए आसन के साथ, एक नई सीरीज के साथ। करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे आसन, बहुत सारे प्राणायाम हमारे समस्त शरीर के लिए होते हैं, ठीक वैसे ही आज हम आप मिलकर के पैरों के आसन को करेंगे। पैरों के लिए योग करने से उन्हें मजबूत और लचीला बनाने में मदद तो करता ही है, साथ ही साथ दर्द और सूजन में भी राहत मिल सकती है। कुछ आसन जैसे पवन मुक्तासन, भुजंग आसन और अर्ध चंद्रासन पैरों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। साथ ही साथ मंडू, चक्की चलाना और भी ऐसे पैरों के बहुत सारे आसन हैं, जिसे यदि हम लगातार करते रहें तो हमारे शरीर में होने वाली कई ऐसी प्रॉब्लम्स को वो दूर कर सकता है। तो आइए अब हम करने जा रहे हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन आसन को करने के लिए सबसे पहले आप किसी मैट, योगा मैट या आप चद्दर पर बैठ जाएं। सुखपूर्वक यानी कि सुखासन की स्थिति में बैठने के बाद में यह आसन पैरों में खिंचाव जब होता है तो उसे यह समाप्त करता है। पैरों में खिंचाव यदि आपको ज्यादा होता है तो उन्हें रिलैक्स भी करता है। इसे करने के लिए अपने पैरों को सामने फैलाकर बैठे और फिर अपने पैरों को एक एक करके अपने घुटनों तक खींचे और फिर उन्हें वापस फैलाएं। यानी कि दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाने के बाद में पैर के पंजों को पकड़ करके घुटनों तक लेकर के आएं। ऐसे ही दाहिना घुटना बाएं घुटने के पास में और बायां घुटना दाएं घुटने के पास में ले आकर के इस आसन को पूरा करें। तत्पश्चात प्रारंभिक अवस्था में लौटते हुए हम दूसरा आसन करेंगे जो कि है भुजंग आसन। कई बार दोस्तों आपने भुजंग आसन का नाम सूर्य नमस्कार की एक श्रेणी में सुना है। भुजंग आसन जिसे कोबरा आसन भी कहा जाता है, यह आसन पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। इसे करने के लिए पेट के बल लेट जाएं, अपने हाथों को शरीर के पास रखें और फिर अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाएं और पंजों की सहायता से पैरों के तलवों तक अपने कसाव करते हुए गर्दन को आसमान की ओर देखें। जब आप इस आसन को करेंगे तो इसका आकार कोबरा सांप की तरीके से लगता है और इसका लाभ हमारे पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने के साथ साथ रीढ़ की हड्डी को भी लचीला बनाता है। आइए दोस्तों प्रारंभिक अवस्था में लौटने के बाद में फिर से एक नए आसन की ओर चलते हैं जो कि है अर्ध चंद्रासन। यह आसन पैरों को मजबूत और संतुलित बनाने में मदद करता है, साथ ही साथ यह चंद्रासन की एक अवस्था है यानी कि चंद्र आसन में। आपने सुना होगा सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार। चंद्र नमस्कार की इस एक प्रक्रिया में अर्ध चंद्रासन आता है। इसे करने के लिए एक पैर को सीधा रखें और दूसरे पैर को अपने शरीर के ऊपर उठाएं। यानी कि जमीन पर हम सीधे लेट जाएंगे पीठ के बल। उसके बाद में अपने एक पैर को उठाते हुए दूसरे पैर को पूरे शरीर को क्रॉस करके यानी कि उसको लांग करके जितना ऊपर आपका पैर जा सके दाहिनी ओर पैर को उठाएंगे। यही अवस्था हम अपने बाएं और दाएं दोनों पैरों की स्थितियों में दोहराएंगे। सूर्य नमस्कार यह आसन पैरों और पूरे शरीर के लिए एक अच्छा वार्म अप भी बताया गया है और यह पैरों में रक्त परिसंचारण को बेहतर करने में मदद करता है। ऐसे बहुत सारे आसन और भी हैं जो कि हमारे पैरों की मजबूती को बनाने के लिए किए जाते हैं, जैसे विपरीतीकरण, वृक्षासन और ताड़ासन। तो आइए दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं वृक्षासन। यह आसन पूर्ण रूप से पैरों पर आधारित होता है। यह वैसे भी मांसपेशियों तथा संपूर्ण मांसपेशियों के अकड़न को ठीक करने के लिए
बड़ा ही लाभप्रद होता है। वृक्षासन को करने के लिए हम किसी योगा मैट या चद्दर पर सीधे खड़े हो जाएंगे। दाहिना पैर उठा करके बाएं पैर के घुटने तक मोड़ करके एक ही पैर पर वृक्ष के भांति खड़े हो जाएंगे और सीधे सीधे हाथ दोनों हवा में करते हुए प्रणाम अवस्था की स्थिति में आएंगे। पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौटते हुए यानी कि हाथों को नीचे करते हुए विपरीत दशा में दोनों पैरों को फिर से करेंगे। वृक्षासन हम अगर देखें चित्र अनुसार या फिर कहीं पर भी हम इस चित्र को देखें तो वृक्षासन पुरातन काल से योग मुनियों द्वारा यह आसन किया जाता है, जो कि यह बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होता है पैरों के आसन के लिए। दूसरा आसन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, ताड़ासन। यह आसन भी पैरों के साथ साथ हाथों और रीढ़ की हड्डियों को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होता है। इसको करने के लिए सर्वप्रथम हम सीधे खड़े हो जाएंगे, तत्पश्चात पैरों की उंगलियों को पूरा प्रेशर देने के बाद यानी कि भार करने पर सीधे आकाश की ओर दोनों हाथों को उठा लेंगे।

सुप्रभात भारत, आज की पहली किरण लेकर आई है आपकी आरजे आकांक्षा सूरज की पहली रोशनी के साथ, भक्ति का उजाला और देशभक्ति की गर्माहट। आज हम मिलकर नमन करेंगे उस ईश्वर को जिसने हमें ये पावन भूमि दी और प्रणाम करेंगे भारत माता को, जिसके आंचल में सब धर्म, सब भाषाएं, सब संस्कृतियां खिलती हैं। यहाँ मंदिर की घंटियां भी हैं, मस्जिद की अजान भी, गुरुद्वारे का कीर्तन भी है और गिरजाघर की घंटियां भी, और इन सब के बीच धड़कता है एक दिल। कौन सा? भारत का दिल, हम सब का दिल, इस देश का दिल, भारत माता का दिल।

धर्म हमें ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता सिखाता है, लेकिन देश हमें वो धरती देता है जिस पर खड़े होकर हम ईश्वर को पुकारते हैं। अगर धरती ही ना रहे तो मंदिर का आंगन कहाँ होगा, मस्जिद की सीढ़ियाँ कहाँ होंगी, गुरुद्वारे का लंगर कहाँ बनेगा, गिरजाघर की घंटियाँ कहाँ बजेंगी। इसलिए पहले देश फिर धर्म। जैसे हमारे सैनिक के लिए हर नागरिक एक समान है, वैसे ही हमारे दिल में हर धर्म का सम्मान होना चाहिए और उन सबसे ऊपर देशभक्ति।

इस देशभक्ति की गहराई को थोड़ी और गहराई देते हैं इस कहानी के माध्यम से, जिसका नाम है सीमा पर दीपक। कहानी बहुत ही छोटी सी है, पर इसका अर्थ बहुत बड़ा है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव के एक लड़के से, जिसका नाम है दीपक, जिसका सपना था सैनिक बनकर देश की रक्षा करना। उसकी माँ रोज सुबह मंदिर में आरती करती और बेटे के लिए प्रार्थना करती कि हे प्रभु, इसे शक्ति देना ताकि ये मातृभूमि की सेवा कर सके। दीपक धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसकी सेना में भर्ती होती है और सीमा पर तैनात हो गया दीपक। एक दिन त्योहार पर दुश्मन ने हमला किया। दीपक ने अपने प्राण देकर चौकी बचाई। उसकी आखिरी चिट्ठी में लिखा था, माँ, मैं आपकी ईश्वर की प्रार्थना और भारत माता की सेवा दोनों में सफल हो गया। इस तरह अपने प्राणों की आहुति देकर अपने देश की रक्षा में और इस देश को प्रज्वलित रखा दीपक ने।

आप सुन रहे हैं अपना भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, और आज हम बात कर रहे हैं उस भक्ति की जिसके लिए हम सभी तत्पर होते हैं। जी हाँ, देशभक्ति। भारत माता, वो जहाँ सबका ईश्वर एक समान होता है, सारे धर्म एक जैसे हैं, सबकी आत्मा एक है, इंसानियत, देशभक्ति, भारत की शान। अलग अलग होके भी हम एक हैं, और यही हमारी पहचान है इस सारी दुनिया में सबसे अलग जो हमें करती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, सबके दरवाजे खुले हैं, पर मातृभूमि का द्वार सबसे बड़ा है। ईश्वर को भोग चढ़ाने से पहले भूखे को रोटी देना सीखें, यही सच्ची देशभक्ति है। और ईश्वर भी यही कहता है कि हर आत्मा में परमात्मा का वास होता है, इसलिए हर जीव पर दया करें, प्रेम करें और उसको एक सम्मान के भाव से देखें। जो धरती हमें जन्म देती है उसकी सेवा सबसे बड़ा धर्म है।

धर्म हमें ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता देता है, लेकिन देश हमें वो धरती देती है जिस पर खड़े होकर हम ईश्वर को पुकारते हैं, जी हाँ, आवाज लगाते हैं और अपनी दिल की बातों को उन तक पहुंचाते हैं। अगर धरती ना हो तो मंदिर का आंगन कहाँ होगा, मस्जिद की सीढ़ियाँ कहाँ होंगी, गुरुद्वारे का लंगर कहाँ बनेगा और गिरजाघर की घंटियाँ कहाँ बजेगी, ये सब सोचने की बात है। इसलिए पहले देश फिर धर्म। जैसे हमारे सैनिकों के लिए हर नागरिक एक समान होता है, वैसे ही हमारे दिल में हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। हम सबका ईश्वर अलग हो सकता है, लेकिन हमारी मातृभूमि एक है, इस बात से कोई कतरा नहीं सकता और ना ही इसको अलग किया जा सकता है। बिल्कुल, हम सबकी माता एक है जिसका नाम है भारत माता। सबसे पहले उसकी भक्ति यानी देशभक्ति।

भारत की सबसे बड़ी ताकत है विविधता में एकता। आइए सुनते हैं चार अलग अलग धर्मों की प्रार्थनाएं जो मिलकर एक ही संदेश देती है, शांति, प्रेम और सेवा।

श्रोताओं, भारत माता सिर्फ मिट्टी नहीं, ये तो हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद और हमारी संस्कृति की खुशबू, साथ ही साथ हमारी संतानों के सपनों का संगम है। जिस धरती पर कृष्ण ने बांसुरी बजाई, राम ने वनवास बिताया, नानक ने नाम जप किया, ईसा ने प्रेम का संदेश दिया, वही है हमारी भारत भूमि, भारत माता। माँ सिर्फ वो नहीं जो जन्म देती है, माँ वो भी है जो जीवन जीने की पहचान देती है, और ऐसी माँ एक ही है जिसको हम कहते हैं भारत माता। अगर ईश्वर हमको आकाश में, अगर ईश्वर हमारे आकाश में है तो भारत माता हमारी धरती पर है। अगर ईश्वर हमारे आकाश में है तो भारत माता हमारी धरती है, और धरती और आकाश मिलकर ही जीवन का पूरा आंगन बनाते हैं। देशभक्ति वो आरती है जो हर धर्म की ज्योति से जलती है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम सभी मिलकर एक साथ में एक सुर में गाते हैं। क्या गाते हैं? हाँ जी, जब बात आती है हमारे देशभक्ति, हमारे शान की, तो हम गौरवान्वित होके वो बखान करते हैं जो हमें हमारी भारत माता ने दिया, जो भारत देश ने, भारत धरती ने हमें दिया, और आज हम अपनी पहचान बना पाए। और उसकी लौ में चमकता है क्या, इन सभी की लौ के बीच में चमकता है हमारी भारत माता का चेहरा, जो किसी गरीब की मुस्कान होता है, किसी भूखे के पेट का भोजन एक सुकून होता है, और कभी कभी एक नन्हे से बालक की खिलखिलाहट।

आज हम भक्तिमय कार्यक्रम में वो भक्ति कर रहे हैं जो इंसानियत का सबसे बड़ा द्योतक है। जी हाँ, देशभक्त। भारत माता की सेवा करना सबसे बड़ा तीर्थ है और उसके लिए प्राण देना सबसे बड़ी पूजा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हम देश के लिए अपने प्राण को न्योछावर करें तभी देशभक्ति होती है। नहीं, अगर हम इंसानियत भी निभा लें पूरी तरह से तो समझ लीजिए हमने सारे धर्मों को एक साथ में निभा लिया। अगर हम केवल एक धर्म को लेके चलते हैं तो हमारी सोच थोड़ी सी संकुचित हो जाती है। थोड़ा सा ऊपर उठ के देखते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, तो फिर वो चाहे हिंदू धर्म हो या फिर इस्लामिक धर्म हो या फिर हो वो हमारा बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर कोई अन्य धर्म, सारे एक ही बात करते हैं, वो है मानव कल्याण। और उसको करने के लिए सबसे पहले हमें एक इंसान बनना होता है, इंसानियत अपनानी होती है, और उसके लिए सबसे उचित तरीका है देशभक्ति। तो आइए मिलके एक देशगान सुनते हैं और उसकी धुन में खो जाते हैं।

हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, सबके आंगन भारत माता के आंचल में ही बसते हैं। अगर भक्ति में शक्ति है तो देशभक्ति में जीवन का उद्देश्य है। मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली, नदियों का संगीत, पर्वतों की ऊंचाई, सब मिलकर भारत माता का स्वरूप बनाते हैं। भारत माता को प्रणाम करना हर सुबह सूरज को प्रणाम करने जैसा है। जीवन में नई रोशनी, जो जीवन में नई रोशनी और नया उद्देश्य लेकर आता है।

ईश्वर की पूजा हर धर्म में है, पर भारत माता की सेवा वो पूजा है जो हर धर्म से ऊपर है। गंगा का पवित्र जल, यमुना की कलकल, नर्मदा का आशीर्वाद, ब्रह्मपुत्र की गर्जना, सब हमारी भारत माता के आभूषण हैं। जहां मंदिर में भजन है, वहीं सीमा पर बंदूक का पहरा है। दोनों की धुन में एक ही भावना है, जिसे कहते हैं सुरक्षा और प्रेम की भावना। भक्ति में जहां आत्मा को शांति मिलती है, वहीं देशभक्ति में आत्मा को उद्देश्य मिलता है। हमारी मातृभूमि का आंचल इतना बड़ा है कि इसमें सब धर्म, सब भाषा, सब संस्कृति सहजता से समा जाते हैं। अगर रामायण में धर्म है तो महाभारत में न्याय है, अगर कुरान में रहमत है तो बाइबल में प्रेम है, और इन सब का संगम है भारत माता। जी हाँ, हमारी भारत भूमि। देशभक्ति वो मंत्र है जिसे हर धर्म बिना मतभेद के जप सकता है। तो आइए इस देशभक्ति का जप करते हैं इस देश गीत के जरिए।

0: जिस भूमि पर तुलसी ने रामचरित्र लिखी, कबीर ने साखियां गाई, गुरु गोविंद ने खालसा बनाया और अब्दुल कलाम ने सपनों को पंख दिए, वही भूमि हमारी भारत भूमि है। देशभक्ति और भक्ति का संगम वो दीपक है जो आंधी में भी जलता है और अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। चाहे वो मंदिर का प्रसाद हो, मस्जिद का खैरात हो, गुरुद्वारे का लंगर हो या फिर गिरजाघर की रोटी, ये सब भारत माता की थाली के व्यंजन हैं। ईश्वर को मानना आस्था है, पर भारत माता को मानना कर्तव्य है। धर्म हमें जोड़ता है ईश्वर से, देशभक्ति हमें जोड़ती है एक दूसरे से। भगवान का नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब कोई भारत माता की जय कहता है तो हर दिल एक साथ धड़कता है। भक्ति में जो आंसू आते हैं वे दिल को पवित्र करते हैं, और देशभक्ति में जो आंसू आते हैं वे धरती को पवित्र और पावन करते हैं। हर धर्म का पहला पाठ होना चाहिए, अपनी मातृभूमि से प्रेम करो। भारत माता की पूजा किसी एक मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में नहीं, बल्कि हर दिल में होती है। तो चलिए भारत माता को एक और सलामी देते हैं और सुनते हैं ये गीत।
1: शाम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
2: क्या कहती हो शामू की माँ?
1: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है?

श्रोताओं, आप सुन रहे थे अपना भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, जिसमें आपके साथ थी आपकी रेडियो सखी आकांक्षा। आपने ट्यून करके रखा था रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आज की पहली किरण में हमने देखा ईश्वर हमें शक्ति देता है और मातृभूमि हमें पहचान देती है। चाहे हम मंदिर जाएं या मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर, अगर दिल में देशभक्ति है तो हर कदम पूजा है, हर सांस प्रार्थना है। आइए हम सब मिलकर एक वचन लें, हम अपने देश से प्रेम करेंगे, इसकी सेवा करेंगे और इसके हर धर्म हर संस्कृति का सम्मान करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में है
1: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9281 9776। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

हां जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड यस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज फाइनली 15 अगस्त है और इस 15 अगस्त में हम कहीं ना कहीं हर साल हर बार बहुत सारी चीज़ों को याद करते हैं और स्पेशली हमको याद आते हैं वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम अपनी चीज़ों को कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा भी अपना एक देश है, जिनकी वजह से हम अपनी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। सो ऐसा काफ़ी कुछ होता है जो आज के दिन से जुड़ा हुआ होता है और जब आज का दिन स्पेशली आता है तो हमको बहुत कुछ याद दिला जाता है, बहुत सारी बातें हमारे इर्द गिर्द होती है। सो इन सभी बातों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, इन सभी बातों को समझते हुए, कहीं ना कहीं हम इस बात को ज़रूर समझें कि हाँ, आज का ये दिन हमारे लिए कितना ज़्यादा ख़ास है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्योंकि ये दिन जैसे ही आता है, जैसे ही हम मार्केट में निकलते हैं, चारों तरफ तिरंगा दिखाई दे रहा होता है, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स प्ले हो रहे होते हैं, उसी में हम कहीं ना कहीं खो से जाते हैं। एक अलग सी वाइब, एक अलग सा माहौल हमको साफ नज़र आने लगता है। सो आज की सुबह भी बिल्कुल वैसी ही है और अगर आप उठ करके देखेंगे, यहाँ से लेके चौक बाज़ार, अम्बेडकर चौराहा होते हुए रानी बाज़ार, दुखरनाथ मंदिर, कहीं पे भी आप निकलेंगे तो आप देखेंगे कि हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा नज़र आ रहा है और पैट्रियोटिक सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं जो हमारे इमोशंस को बयां कर रहे हैं। और आइए इस ख़ास दिन को सेलिब्रेट करते हुए आज के इस दिन की तरफ बढ़ते हैं। और ये दिन, जैसे कि हमने बताया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इमोशन से हमारे जुड़ा हुआ है। सो इस दिन को सेलिब्रेट करते हुए हम ज़रूर आगे जाएंगे और कहीं ना कहीं इन बातों को भी हम समझेंगे कि हाँ, सच में हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये दिन, हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है उन चीज़ों को याद करना, समझना, जिनके लिए हम हमेशा से कहीं ना कहीं डेडिकेटेड रहे हैं। सो आइए इस खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से पैट्रियोटिक सॉन्ग के साथ में। फ़िलहाल आपने ट्यून कर लिया अपना गोंडा एफएम रेडियो 11.86 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: सो भाई, आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आज है 15 अगस्त और इसको और भी ज़्यादा ऑफ कोर्स हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। यानी हर तरह से वो सारी बातें जो आज से जुड़ी है, जो कहीं ना कहीं आज़ादी से जुड़ी है और आज के दिन को तिरंगा कर रही है। सो चलिए फिलहाल आपको ले चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताते हैं कि भाई आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। और एक बार वापस से हम सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आर्य खान।

हाँ जी, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और देखते हैं थॉट क्या कह रहा है। थॉट कह रहा है कि सबसे बड़ी जीत किसी झगड़े को लड़ाई बनने से पहले ही सुलझा लेना है। वाह क्या बात है। आज का थॉट कह रहा है कि सबसे बड़ी जीत जो है वो किसी झगड़े को लड़ाई बनने से पहले ही सुलझा लेना है। सो कितनी प्यारी बात कही है आज के इस थॉट ऑफ द डे ने और इसके क्या मायने हैं। जबरदस्त, चाहे हम अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर देखें या देश के लेवल पर देखें, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि भाई कौन ताकतवर है, किसके पास ज़्यादा हथियार है, किसके पास किसकी कितनी सेना है, लेकिन दरअसल मायने ये रखता है कि कौन बहुत ही बुद्धि के साथ में, कौन बहुत ही सलीके के साथ में चीज़ों को, जो झगड़ा हो लड़ाई बनने से पहले ही सुलझा ले, उसको सेटल डाउन कर दे। सो ये बहुत बड़ी बात है और यही कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे। सो आज का थॉट ऑफ द डे भाई मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि हम जिस भी जगह रख कर देखेंगे हमको ये उतना ही रेलेवेंट, उतना ही अप्रोप्रिएट नज़र आने वाला है। सो थॉट क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी जीत किसी झगड़े को लड़ाई बनने से पहले ही सुलझा लेना है। कई बार ऐसा होता है कि भाई कई लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं कि आज तो हम इनको बताते हैं, लेकिन देखिए ना, उससे जस्ट पहले ही कई ऐसे लोग होते हैं जो इन झगड़ों के होने से पहले ही ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। सो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और झगड़े जितनी जल्दी जिस तरह से ख़त्म हो जाए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन झगड़ों को ज़्यादा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है और ये झगड़े हमारे लिए सही नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ के डायरेक्शन को ही बदल देते हैं और कहीं ना कहीं हम भटक से जाते हैं। हमारी एनर्जी, हमारी ताकत, जो कुछ हमें अपनी बेहतरी के लिए लगाना होता है, कहीं ना कहीं उनसे हम दूर से हो जाते हैं। सो इसलिए ये थॉट ऑफ द डे मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है कि भाई इस थॉट ऑफ द डे का कहीं ना कहीं जो कहना है उस कहने को हम रिलेट कर रहे हैं। और जब हम ये चीज़ देखते हैं अपने अंदर या किसी के भी अंदर, तो हमको ये समझ में आता है कि हमको हमेशा वो लोग बहुत पसंद आए हैं जिन लोगों ने झगड़े को सुलझाया है, इन सारी कन्फ्यूजन्स को दूर किया है, वो लोग हमेशा ही समझ में आए हैं। और यस ऑफ कोर्स ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो है वो बहुत बेहतरीन होते हैं। सो आपके साथ भी ऐसा होगा, कई बार झगड़ा बढ़ने वाला होगा, जो लड़ाई में तब्दील होने वाला होगा और आपने सुलझा लिया होगा, देन उस दिन हमको खुद भी रियलाइज़ होता है कि यार झगड़ने ज़्यादा तो सुलझा करके उसको ख़त्म करने मज़ा आया, तो मज़ेदार चीज़ तो यही है। सो फिलहाल मुझे लगता है ये लाइफ में अगर हम ज़रा इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन फील करते हैं, बहुत ही अच्छा फील करते हैं कि हमने लड़ाई नहीं बनने दिया उस झगड़े को। सो अगर आप भी मानते हैं कि ऐसा है तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे देश पर कोई समस्याएं आती है और देश उसको सुलझा लेता है पहले ही बिना किसी झगड़े के, तो समझ लीजिए बहुत समझदारी की निशानी है। मैंने कहा ना, जिस स्तर पर जिस जगह रख करके सोचेंगे हमको ये थॉट ज़रूर समझ में आने वाला है। फिलहाल ऑफकोर्स आज तो वाइब है, आज तो दिन है स्वतंत्रता दिवस का, सो सॉन्ग्स भी हमारे वही होने वाले हैं।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: अच्छा भाई, सबका अपना अपना तरीका होता है कोई भी इवेंट या कोई भी स्पेशल डे सेलिब्रेट करने का। फिलहाल अगर हम बताएं कि एक ऐसा भी तरीका है जो काफ़ी ज़्यादा अलग है, तो क्या आप यकीन करेंगे? बेशक करना ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक दो चीज़ों को तो कहते हैं, यानी हम बात तो करते हैं अपने देश की, लेकिन कई अपनी जो बेसिक्स वाली बातें हैं, जिसको हम सिविक सेंस भी बोलते हैं, या समटाइम्स हम कहते हैं कि राइट्स की हम बात करते हैं, लेकिन ड्यूटीज़ में हम सामने बहुत कुछ जो है वो भूल जाते हैं। सो कहीं ना कहीं इस बात को समझना भी ज़रूरी है। सो क्या ऐसे भी लोग हैं जो इसके अलावा इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं? क्या वो समझने की कोशिश करते हैं, और क्या वो सच में कहीं ना कहीं उन चीज़ों को फॉलो भी करते हैं? हाँ, बेशक करते हैं और बेशक करते ही जा रहे हैं। फिलहाल ऐसे ही एक शख्स की हम आपको बात बताने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ये आप जानेंगे कि भाई किस तरह से विदेश से कुछ लोग वक्त निकाल करके और कहीं ना कहीं क्लीननेस को लेकर के भी काम लगातार करते जा रहे हैं, भारत का झंडा लगा करके, जिनको हम कह सकते हैं कि भाई ये जो हीरो हैं, दरअसल ये सिविक सेंस के हीरो हैं, और ये हीरो हम सभी के हैं। जी हाँ, तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है, और इस बात को शायद समझा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से अगर हम बात करते हैं देश की, जिस तरह से हम बात करते हैं अपनेपन की, उसी तरह से कहीं ना कहीं बात आती है कि भाई हमारा सिविक सेंस क्या है, और हम बाहर किस तरह से लोगों के सामने लोगों के लिए बिहेव करते हैं, ये समझा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए भाई, आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही स्टोरी की तरफ जो इस तरह का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों के ज़रिए उनको काफ़ी ज़्यादा सराहना भी मिल रही है। आखिर कौन है वो शख्स, क्या ऐसा कर रहे हैं जिनको आरजे अदनान बोल रहे हैं कि भाई ये सिविक सेंस के सुपर हीरो हैं।
2: Now you're listening, Good Morning Kota with your favorite आरजे अदनान।

विदेश से कुछ वक्त रह करके या घूम करके आने के बाद हम में से ज्यादातर लोग जो है अपने देश में साफ सफाई की शिकायत जरूर करते हैं, है कि नहीं है? लेकिन आपको मिलाते हैं राजस्थान के विष्णु भारतेश से। आखिर वो कर क्या रहे हैं? दरअसल ये सफाई का जिम्मा खुद उठा रहे हैं।

देखते हैं कि भाई हम कहीं पे भी कचरा फेंकने लग जाते हैं, है ना। सो उसे कहाँ फेंकना है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझना ज़रूरी होता है और ये हमें समझना भी चाहिए। फिलहाल टेलर मास्टर बने स्वच्छता वाले भैया। जी हाँ, आपको हम बता दें कि हर दिन साफ करते हैं 2 किलो कचरा। और ज़रा सोचिए कि ये 2 किलो कचरा जो है, ये विष्णु भारतेश जी हैं जो कि झालावाड़ राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं 11 साल पहले, चूँकि विष्णु जो है वो सऊदी अरब गए थे और वहाँ की साफ़ सफाई देख करके इन्होंने सोचा भी कि क्या बात है, अगर यहाँ ऐसा हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं। बस फिर क्या था, सो देश लौटते ही ये निकल पड़े गांव-गांव लोगों में सिविक सेंस जगाने के लिए। हाथ में था एक डस्टबिन और साथ ही साथ जहाँ भी कचरा दिख जाता वहीं सफाई करना ये शुरू कर देते। सो यहीं से शुरू हो गया स्वच्छता वाले भैया की पहचान। जी हाँ, शुरुआत में इन्हें कचरा उठाकर लोगों ने देखा तो पागल कहा कि ये पागल हैं, ये क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि घर वालों ने भी इनका विरोध किया कि भैया तुम्हें और कोई काम नहीं बचा है, अब तुम यही करने वाले हो। लेकिन विष्णु जो थे वो रुकने वाले कहाँ थे। इन्होंने अपनी टेलरिंग के काम से वक्त निकाल करके बीच में रोज़ सार्वजनिक जगहों की सफाई करने निकल जाते थे। जी हाँ, और आज 11 साल से ये हर महीने करीब 6,000 रुपये अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। हर महीने स्कूल में बच्चों से मिलते हैं, घर घर जाकर लोगों को समझाते हैं एंड ताकि लोग जुड़े और पूरे गांव को जो है वो कचरा मुक्त बनाया जा सके। आज इनकी ये मुहिम राजस्थान से निकल करके गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई शहरों तक जो है वो पहुंच चुकी है। सो जिसे लोगों ने पागल कहा उसने गांव की तस्वीर ही बदल दी। अब इनके गांव में गंदगी नहीं, सफाई चमकती है। सो स्वच्छता अब जो है वो सिर्फ इनकी नहीं पूरे गांव की जिम्मेदारी बनने लगी है। सो अब विष्णु की अगली कोशिश है कि इकट्ठा किया गया प्लास्टिक सिर्फ डंपिंग ग्राउंड तक ना जाए बल्कि उन प्लास्टिक्स को रिसाइकल करके कंपनी तक पहुंचाया जाए ताकि कचरा जो है वो अब समस्या नहीं समाधान और संसाधन बन सके। सो ज़रा सोचिए कि अगर हर शहर और हर गांव में ऐसे स्वच्छता वाले भैया हों तो देश का हर कोना बदल सकता है। सो क्या हमारे शहर या आप जिस भी शहर से सुन रहे हैं आपने भी ऐसे ही किसी को देखा है स्वच्छता वाले भैया? अगर देखा है या किसी भी आदत से आप वाकिफ है तो आप भी हमको कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी ही खूबसूरत पहल है और मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब हम अपनी उन चीज़ों को करते हैं जो हमारा सच में फ़र्ज़ है और जो बहुत छोटी सी लगती है लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। उनमें से एक है क्लीननेस, साफ़ सफाई।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: हाँ जी, नजर कहाँ लगेगी भाई, क्योंकि फिलहाल आपने जो मैसेजेस भेज दिए थे वो हम तक आ गए। और चलिए अब हम आप तक पहुंचा देते हैं, यानी बता देते हैं कि आखिर कौन कौन आ गए हैं चैट बॉक्स पर, क्या कुछ लिखा है आज स्पेशल इंडिपेंडेंस डे पर, ओनली ऑन रेडियो 11.6 FM।
1: Now you're listening, Good Morning Kota, with your favorite RJ Khan.

यस तो भैया यहाँ पे काफ़ी सारे मैसेजेस आ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं मैसेज की तरफ जो आया है अनूप मिश्र जी का। आप लिखते हैं, दे सलामी इस तिरंगे को जिसने तेरी शान है, सिर ऊंचा रखा इसका जब तक जान में जान है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। और ग्लोबल फायर सेफ्टी, क्या बात है, ये आपकी ब्रांड का नेम है और ये हमारे अनूप जी हैं। हमारी आशु जी लखनऊ से लिखती हैं, सुप्रभात सुप्रभात आपको भी। महेंद्र देपन है फ्रॉम राजस्थान, गुड मॉर्निंग अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू। और प्रीति जी ने बोला है, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। महेंद्र लिखते हैं, जय हिंद, आज़ादी का ये पर्व है, हर दिल में स्वाभिमान रहे, जब तक सूरज चांद रहे, भारत का ऊंचा नाम रहे, शहीदों के त्याग को दिल से नमन करते हैं हम, हर जुबां पर तरन्नुम और होंठों पर जय हिंद का पैगाम रहे। क्या बात है, एंड थॉट ऑफ द डे, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच महेंद्र। प्रीति जी ने लिखा, हकीकत बयां करता हुआ ऑसम थॉट, आपसी तालमेल से विवादों को सुलझाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है जिंदगी के लिए, थैंक यू। आशु जी लिखती, वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच। मिश्र ऑप्टिकल से अजय जी हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, और लिखते हैं, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिश्र ऑप्टिकल गोंडा की ओर से आप सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए इस पावन अवसर पर हम अपने वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नमन करें और देश की एकता अखंडता एवं प्रगति में अपना योगदान देने के लिए संकल्प लें। क्या बात है। मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से आ गए हैं, लिखा है, गुड मॉर्निंग डियर आरजे अदनान भाई, गुड मॉर्निंग टू यू। साथ ही आपने मुबारकबाद दी है सभी देशवासियों को, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। मोहम्मद मुशीब जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, थैंक यू सो मच। और भाई जाहिर सी बात है कि इतना खूबसूरत सा मंजर है, इतना बेहतरीन समा चल पड़ा है, तो चलिए फिलहाल आपको भी ले चलते हैं हम एक ऐसे सॉन्ग की तरफ जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। फिलहाल आप लोगों ने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। फिलहाल वक्त है कुछ पैट्रियाटिक सॉन्ग्स सुनने का, वापस से आने का, और आने के बाद बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कहनी हैं, जो आप तक पहुंचानी हैं, और वो ज़रूर हम पहुंचाएंगे भी और आपसे कहेंगे भी। और फिलहाल आपको बने रहना है आपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, क्योंकि ये है आपके गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

सुबह इतना खास दिन है, मुझे लगता है कि हर कोई भी इस दिन को अपने अपनी तरह से सेलिब्रेट करता है। मुझे लगता है कि अगर आप भी लिखते हैं तो आज अगर आप लिखे हैं कोई भी ऐसा कंटेंट, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी पॉम जो है कहीं ना कहीं देश के लिए, आपके इमोशंस के लिए, आज के ख़ास दिन 15 अगस्त के लिए, तो आप भी लिख भेजिए और हम भी आपकी उस कविताओं को आज लाइव पढ़ना चाहते हैं, ताकि आपने जो कुछ लिखा है वो हम ज़रूर बयां करें, आपके क्या है इमोशन आज के ख़ास दिन को लेकर के। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो 11.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: यस सेना की जय जय हो जाओ। और फिलहाल मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ है जो आपसे आज कहना है, बयां करना है। फिलहाल एक बार वापस से आपका मॉर्निंग वाले शो में वेलकम करते हैं आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। एक ऐसा नाम जिनके नाम में ही आज़ादी, एक ऐसा हौसला जिनको अच्छे अच्छे ना तोड़ सके, एक ऐसी शख्सियत जिसको आज भी याद किया जाता है। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन है जो दुश्मन की गोलियों का हम करेंगे सामना। आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे ऐसी बात कहने वाले। क्या आप इनको जानते हैं कि इनका नाम क्या है?
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, देखिए भाई, ऐसा कहने वाले कि मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता, मेरा घर जेल खाना। सिर्फ 15 साल की उम्र में अंग्रेजों के सामने अपनी पहचान आज़ाद बताने वाले इस क्रांतिकारी ने अपनी पूरी जिंदगी देश की आज़ादी के नाम कर दी। दरअसल 27 फरवरी 1931 को अंग्रेज पुलिस ने इन्हें घेर लिया, लेकिन इन्होंने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी और अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार होने की बजाय खुद को गोली मार करके शहीद हो गए। सो आजाद जी आजाद ही शहीद हुए। क्या आप इनका नाम जानते हैं? अगर इनका नाम जानते हैं तो आप बता सकते हैं, है ना? चलिए फटाफट से, अगर आप नाम जान रहे हैं तो मुझे मैसेज करके बताइए कि भाई इन फ्रीडम फाइटर का आखिर क्या नाम है जिन्होंने कहा कि हम आज़ाद जिए हैं और आज़ाद ही रहेंगे। जी हाँ, और ये आज़ाद ही शहीद हुए, ये अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए बल्कि ख़ुद को गोली मार कर इन्होंने शहीदी हासिल कर ली। ऐसे स्वतंत्रता

सिनानी का नाम आपको अगर पता है तो चलिए कमेंट करिए और बताइए कि आप आखिर क्या इनके नाम को जानते हैं, कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किस फ्रीडम फाइटर की जिन्होंने ये नारा दिया और जिन्होंने आज़ादी की इतनी बड़ी लौ जगाई।

सो यह सबने पूछा था भाई कि वो इंडिपेंडेंट जो आज हम हैं उसको लेकर, चूंकि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी बहुत कुर्बानियाँ दी थी और जिनके बारे में हमने बताया था कि वो आज़ाद थे और आज़ाद ही हमेशा रहे, और मैंने उनका नाम पूछा तो देखिए फिलहाल सुजीत का आंसर आ गया है, चंद्रशेखर आज़ाद बोला है, और के गुप्ता जी ने तिरंगा कॉम्प्लेक्स से सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग बोला, इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद दी और साथ ही कहा चंद्रशेखर आज़ाद थे वो। ऑल राइट, एंड कमल नयन जी आपको भी गुड आफ्टरनून, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। सो बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि आप लोगों ने जो आंसर दिया वो बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है, नाम उनका है चंद्रशेखर आज़ाद। सो चंद्रशेखर आज़ाद साहब थे जो जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ बिल्कुल नहीं आए, और 15 साल की बहुत छोटी सी टीन एज में ही उन्होंने आज़ादी की अलख अपने अंदर जो जलाई थी वो लोगों तक पहुंचा दी, वो अंग्रेज़ों तक पहुंचा दी, जिसके बाद अंग्रेज़ों का जीना मुहाल हो गया। सो ऐसे कहते हैं कि भाई जब आप करने पे आते हैं तो आप दुनिया सच में बदल सकते हैं, एंड वो काम चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने अपनी लाइफ में किया। ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, या यूं कहूं कि अनगिनत है, जिसको हम उंगलियों पर गिन भी नहीं सकते, इतने लोगों ने कुर्बानी दी, हर तरह से दी, हर काम से दी, बिना लोगों के कुर्बानी दिए, बिना मिले, बिना एकजुट हुए आज़ादी मुमकिन ही नहीं थी, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। सो ऐसे कई नाम हैं जिनको शायद हम कभी ना जान पाए हैं, ना कभी जान पाएंगे, वो कहीं ना कहीं गुमनामियों की मिट्टी में दफन हो गए हैं, लेकिन हम जब ये सोचते हैं कि आज़ादी मिली तो इसमें अनगिनत नाम शामिल करना ही होगा। फिलहाल उनमें से एक नाम के बारे में हमने पूछा जिनका नाम आपने बखूबी बता दिया, चंद्रशेखर आज़ाद साहब, बेशक सही है आपका अंदाज़ा, और वही एक ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने 15 साल की एज में ही अलख जगा ली थी और जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए थे बल्कि खुद को गोली मारकर शहीद कर लिया था, और जो कहा था वो करके दिखाया था।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो के मॉर्निंग वाले जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो फिलहाल मुझे लगता है कि भाई आप तो काफ़ी ज़्यादा जानकार हैं और कहीं ना कहीं ऐसे सवाल जो पहुंच जाते हैं आप तक उसका जवाब आप ज़रूर देते हैं। फिलहाल आइए हम बताते हैं कुछ अनोखी बातें जो कि आज़ादी से ही जुड़ी हुई हैं और आपको शायद पता होनी चाहिए। दरअसल वो जिन्होंने विमान उड़ाए और आज़ादी की लड़ाई लड़ी और ख़ास थी कहीं ना कहीं ख़तरनाक इलाकों तक पहुंची, जी हाँ, वो कोई पुरुष नहीं बल्कि महिला थी। कौन थी वो महिला जिन्होंने विमान भी उड़ाए और आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी और युद्ध के बीच ख़तरनाक इलाकों तक पहुंची भी? आइए बताते हैं उनका नाम, उनके बारे में, और आप कहेंगे दिस इज़ आर रियल सुपर हीरो।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

हाँ जी, तो बता दे, देखिए जिन्होंने विमान उड़ाए, आज़ादी की लड़ाई लड़ी और युद्ध के बीच ख़तरनाक इलाकों तक गई, फिर भी बहुत कम लोग जानते हैं इनके नाम को और इनकी कहानी जो है वो बहुत ही असाधारण है। दरअसल हम बात कर रहे हैं ज्ञानवती सेठी पटनायक जी की। ज्ञानवती जी सिर्फ बीजू पटनायक की वाइफ नहीं थी, बल्कि उस दौर में विमान उड़ाना लगभग पूरी तरह पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था और ज्ञानवती भारत की शुरुआती महिला कॉमर्शियल पायलट्स में से एक बनी। इन्होंने हिस्ट्री के सबसे मुश्किल और ख़तरनाक दौर में भी विमान उड़ाए हैं। जी हाँ, दरअसल हम बात करें कि 1919 में लाहौर में पैदा हुई ज्ञानवती जो हैं वो किन्नर्ड कॉलेज से पढ़ाई की और 1937 में कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल किया। सो टेनिस खेलते हुए इनकी मुलाकात बीजू पटनायक से हुई और दोनों ने 1938 में शादी की। इसके बाद ज्ञानवती और उनके कई बेहद जोखिम भरे अभियानों में उनकी को पायलट भी साथ में बनकर रहीं। सो आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन्होंने गुप्त रूप से भी काम किया। जब बीजू पटनायक जेल में थे तो ज्ञानवती उनके गुप्त पत्र जेल तक पहुँचाती थी। सो इन लेटर्स को अंग्रेज़ों की नज़र से बचाने के लिए वह उन्हें अपने बच्चों के जूतों के अंदर छिपा कर ले जाती थी। दौर आया 1947 का, जब ज्ञानवती और बीजू पटनायक ने इंडोनेशिया की आज़ादी की लड़ाई के दौरान वहां के नेताओं को बचाने के लिए एक बेहद ख़तरनाक अभियान चलाया। दोनों जावा पहुंचे और एक अस्थायी हवाई पट्टी पर विमान उतारा और इंडोनेशियाई नेताओं को सुरक्षित भारत ले आए। लेकिन इंडोनेशिया के लिए उनकी मदद यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो दौर आया 1946 से 1949 के बीच का, जब ज्ञानवती कई बार इंडोनेशिया गई। जब वहाँ आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब वो मानवीय मदद और ज़रूरी सामान लेकर वहाँ पहुँच रही थी, लेकिन उनकी दुनिया सिर्फ विमान उड़ाने तक मौजूद नहीं थी, उन्हें विज्ञान में भी गहरी दिलचस्पी थी। सो ये कलिंग फाउंडेशन से जुड़ी रहीं और विज्ञान और वैज्ञानिक सोच को आम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश में मदद करती रहीं। 89 साल की उम्र में इनका निधन हो गया और इसके बाद इनके सम्मान में भुवनेश्वर में उनकी कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई। सो ज्ञानवती सिर्फ एक मशहूर व्यक्ति की पत्नी नहीं, बल्कि एक अग्रणी पायलट, एक स्वतंत्रता सेनानी, मानवतावादी, विज्ञान की समर्थक और सलाहकार थी। सो इनकी पहचान इतनी बड़ी थी कि किसी भी नाम के सहारे को याद करके इनको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और कहते हैं ना कि जब आप मुश्किल दौर में भी कुछ बेहतर कर जाते हैं तो इसलिए दुनिया आपको याद रखती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बस ऐसा ही हुआ ज्ञानवती जी के साथ भी। आई होप कि आपको ये स्टोरी ज़रूर समझ में आई होगी और कहीं ना कहीं आप भी अब ज्ञानवती जी के बारे में खोजने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये बात सही है कि जब कोई ऐसी स्टोरी जो हमको दिल से भा जाती है तो हमको बहुत पसंद आती है। ऐसी ही एक स्टोरी रही आज ज्ञानवती जी की, जिनके बारे में हमने आपको बताया। आई होप कि आपको इनके बारे में जान करके काफ़ी अच्छा लगा होगा और कहीं ना कहीं अब आप भी दिलचस्पी ले रहे हैं इनके बारे में जानने की।

0: क्या बात है, कामयाबिया। सो चलिए भाई, आपने कहा था कि अगर आपने भी कुछ लिखा है तो आप भी भेज सकते हैं और हम उसको बाकी सभी लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। फिलहाल आ चुका है हमारे प्रीति शुक्ल जी की तरफ से फ्रॉम बहराइच, एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून किया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। सो आइए चलिए भाई, लेके चलते हैं आपको और बताते हैं कि हमारी प्रीति जी ने आज बहराइच से इंडिपेंडेंस डे पर क्या लिखा है और हम तक पहुंचाया है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

मेरा भारत देश महान, बेटी हूँ भारत की, मुझे अपने भारत देश पे है बड़ा अभिमान। अपने मुताबिक करती रहती हूँ अपने देश का अति सम्मान। सैनिक लड़ते अपने देश के विरोधियों से जंग, मैं सुलझाती अपने अपनों की समस्याओं का हल। वीर सैनिकों को देती सदा अनंत शुभाशीष, सदा फूले फले और अपने भारत देश को सदा सुरक्षित रख, अपने देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाएं। जय हिंद जय भारत। क्या बात है, बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा। थैंक यू सो मच प्रीति जी फ्रॉम बहराइच। एंड ज्ञानवती जी की स्टोरी आपको काफ़ी इंस्पायरिंग लगी, आशु जी को भी काफ़ी पसंद आई। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। सो चूंकि अब चलने का वक्त आ गया है और हम मॉर्निंग से ही सेलिब्रेट करते जा रहे हैं आज का 15th August यानी 15 अगस्त स्पेशल। सो ये स्पेशल डे ऐसे ही स्पेशल बने रहना चाहिए। लेकिन जाने से पहले एक बार वापस से आप सभी को मुझे स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 92 60 981 976 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
6: राव की गूंज, राव की गूंज, राव की गूंज।
7: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गांव की गूंज।
8: हर दिन अपनी जिंदगी को नया ख्वाब दो, चाहे पूरा हो ना हो आवाज तो दो। एक दिन पूरे हो जाएंगे ख्वाब तुम्हारे, सिर्फ एक शुरुआत तो दो, सिर्फ एक शुरुआत तो दो।
9: क्या बात कही है आपने अंकुर भाई, देखिए ना हम लोगों का ये ख्वाब शहर को गांव से जोड़ने का धीरे धीरे रंग ला रहा है।
10: हाँ शफाली, ये तो बिल्कुल मानी हुई बात है। अगर शुरुआत अच्छी है, मन में सच्ची लगन है, तो मकसद एक ना एक दिन जरूर पूरा होता है।
8: तो फिर देर किस बात की, प्यारे श्रोतागण, मैं अंकुर, किरण, शेफाली और गुड्डू के साथ ले चल रहा हूँ आप सबको एक बार फिर शहर के पक्के मकानों से निकालकर गांव की टेढ़ी मेढ़ी डगरिया पर, बौर से लदे आम की बगिया में, गांव की खेत खलिहानों में। आज का सफर आपको झूमने के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि अपने गांव वालों के साथ हम सजाएंगे कव्वाली की एक खूबसूरत महफिल सिर्फ आपके लिए।
9: अरे रे रे, गांव तो आ गया। अरे वो देखो, गुड्डू अपने दोस्तों के साथ खड़ा है और कुछ गा रहा है।

0: राम राम गुड्डू भाई, बड़ी शिद्दत से गाया है ये कव्वाली आपने, पर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? सब ठीक है ना?
1: आप सबको राम राम। हमारे गांव में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। सैफाली जी, उदासी तो चारों तरफ पसरी है। पुलवामा पर हुए आतंकी हमले से हम सबकी रूह कांप गई है। हमारे कितने जवान सीमा पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। हर पल उनकी शहादत याद करके आंखें नम हो रही हैं।
2: शत शत नमन करते हैं हम अपने इन वीर शहीदों को। भारत माँ की रक्षा करते हुए हर वीर ने अपने माँ का कर्ज उतारा है। अपनी भारत माँ की रक्षा करते हुए वतन पर अपनी जिंदगी होम कर गए हमारे ये वीर जवान।

0: शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज हम महफूज हैं, अपने घरों में शांति से रह रहे हैं, अपने सपने साकार कर पा रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए कि हमारे ये सैनिक पहाड़ हो या पानी, रेगिस्तान की गर्मी हो या सियाचिन की बर्फीली चोटियां, हर जगह चट्टान की तरह खड़े हैं।
1: जो कालों के काल बने उनको एक पुष्प चढ़ा देना, जो कालों के काल बने उनको एक पुष्प चढ़ा देना, भारत के अमर सपूतों के आगे श्रद्धा से शीश झुका देना, भारत के अमर सपूतों के आगे श्रद्धा से शीश झुका देना। इस दुख की घड़ी में हमारे शहीदों के परिवार के साथ पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है। हमारी गांव की गूंज की ये टीम उनकी इस कुर्बानी को जाया नहीं होने देंगी। हम सब बराबर ये समझाएंगे कि जिस साहस और ईमानदारी से हमारे ये वीर सैनिक अपना काम कर रहे हैं, अगर समस्त देशवासी भी उसी जज्बे से काम करें तो हम आतंकवाद पर विजय पा सकेंगे और वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
2: देश पर मर मिटने की हमने भी कसम खाई है, अरे जंग

0: क्या जादू है आप लोगों की आवाज में, नस नस रोमांचित हो गई। किरण दीदी, हम लोग तो हमेशा से शांति प्रिय लोग हैं, जियो और जीने दो पर ही हम विश्वास करते हैं। लेकिन कोई हमारी सराफत को हमारी कमजोरी ना समझे, अगर जरूरत पड़ी तो ईंट से ईंट बजाने की क्षमता हम भी रखते हैं। काश ऐसा कोई काम कर जाऊं मैं, काश ऐसा कोई काम कर जाऊं मैं, नाम जिंदा रहे और मर जाऊं मैं।
1: गुड्डू भाई, चांद कादरी की वो कव्वाली सुना दो जिसको सुनकर सबकी आंखें भर आई थीं।

0: तिरंगा उड़ाना।
1: दिल को छू लेने वाले शब्द हैं। हर किसी के दिल में देशभक्ति की भावना प्रज्वलित हो गई है। बात करते करते कब हम लोग 400 घरों के इस गांव के पुराने पीपल के पेड़ की छांव के नीचे पहुंच गए, पता ही नहीं चला। देखो ना अंकुर, यहाँ तो आजी, काकी, बुआ, दीदी सब मिल गईं।
2: शहर में नहीं है आसान खुद से मिल पाना, बुत कदों में फिर हम क्यों खुदा ढूंढते हैं।
3: बहुत सही बात कही है आपने।
1: किरण दीदी, चलिए एक सुंदर सी कव्वाली के साथ सबको राम राम बोले। शफाली, साबरी ब्रदर्स की कव्वाली जो हम अक्सर गाते हैं, चलो वही कव्वाली सुनाते हैं।
4: तस्कीन दिल के वास्ते

0: मन खुशी से भर उठा कव्वाली की धुन से। पता है आपको, कव्वाली सूफियों का भजन कीर्तन है।
1: शफाली, कव्वाली दरअसल सूफी सिलसिले में खुदा की बिल्कुल वैसी ही इबादत है जैसे हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा के लिए भजन कीर्तन करते हैं।
2: मैं दीवाना फैलाए खड़ा हाथ था, एक खजाना मिला जो अंदर था मेरे। देखा सारा जहां, ढूंढा हर एक जगह, जो खुदा मिलना था वो था मेरे अंदर। कव्वाली का मकसद अपने अंदर के अहंकार को त्याग कर अल्लाह और भगवान के साथ एक आध्यात्मिक मिलन करना है। और देखिए ना शेफाली और किरण जी, आपकी कव्वाली ने सबको झूमने के लिए मजबूर कर दिया।
0: हाँ सच में, सब खेतों से आ गए। रमजान चचा भी हैं तो हरिहर काका भी हैं। आजी और विमला दादी को देखो, अभी आधे घंटे पहले मुंह फुलाकर बैठी थी और अब कव्वाली की धुन में सुध बुध खोकर झूम रही हैं।
1: कव्वाली एक संगीत वाहन है जो भाईचारे को बढ़ाती है। कौमी एकता तो हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है। तभी तो दिवाली में अली है और रमजान में राम है। इन्हीं भावों को व्यक्त करने वाली एक बहुत ही पुरानी कव्वाली हम आपको सुनाते हैं।

0: हम सब लोग झूम उठे। ये छोटा सा गांव अपने में एक पूरी दुनिया समेटे है। स्नेह भरे लोग हैं, मानवता का प्रकाश है। हमारी कोशिश आपको गांव की मिट्टी से जोड़ने की है। उसका एक कारण यह भी है कि धर्मनिरपेक्षता, जो हमारे देश की पहचान है, वो आज भी गांवों में बरकरार है। जब हम गांव में होते हैं तब हर बुजुर्ग हमारी आजी और बाबा होता है, हर घर अपना होता है, हम सब एक होते हैं।
1: फिर शहर आकर हमारी सोच इतनी बदल क्यों जाती है? कोई हिंदू होता है तो कोई मुसलमान, कोई सिख होता है तो कोई ईसाई। क्योंकि हम आज ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए हमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं। हम पढ़े लिखे होकर इस वोट की राजनीति को नहीं समझ पा रहे हैं
2: और हमारी इसी नासमझी का फायदा आतंकवादी उठा रहे हैं। हम और हमारे प्यारे जवान भाई इसकी भारी कीमत चुका रहे हैं। हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हम चाहे हिंदू हैं या मुसलमान हैं तो इसी भारत माँ की संतान

0: भाई आप लोगों ने अपनी कव्वाली से बहुत खूबसूरती से सबको जोड़ने का प्रयत्न किया है, लेकिन हम सफल तभी होंगे जब देश का नागरिक अपने वोट देने के अधिकार का सही उपयोग करेगा। चुनावी मुद्दा इस समय पूरी तरह से गरमाया हुआ है। हर न्यूज चैनल पर इस समय इलेक्शन संबंधी न्यूज ही मिलती है। याद रखें, लालच देकर वोट जो मांगे, भ्रष्टाचार वो करेगा आगे। जो राष्ट्र का उत्थान करे, वोट उसी को डाले। जो राष्ट्र का उत्थान करे, वोट उसी को डाले।
1: हम कई बार सोचते हैं, वोट डालने के चक्कर में पड़कर हम अपनी एक दिन की छुट्टी क्यों वेस्ट करें, घर का कुछ काम कर लें, कहीं घूम आए, हमारे एक वोट से फर्क क्या पड़ता है। इस तरह मात्र 54-55% वोट ही पड़ते हैं। आप लोग हमारी बात अच्छी तरह से समझें। इस तरह विजयी प्रत्याशी को मात्र 20-25% लोगों ने चुना।
2: आप लोग प्लीज इस चुनावी प्रक्रिया को समझिए। मात्र 20-25% वोट पाकर एक विजयी पार्टी तैयार हो जाती है। फिर जिन लोगों ने वोट देकर इनको विजयी बनाया है, पार्टी अगले 5 साल सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने उनको विजयी बनाया।
1: हाँ शेफाली, और हम लोग अगले 5 साल बिना वोट दिए घर पर बैठकर सरकार को, शासन प्रणाली को कोसते रहते हैं। इस बात को जरूर सोचिएगा, अपना वोट ना देकर इन गलत लोगों को हम ही लोग चुनते हैं। आप लोग इस बात को जरूर समझें। अगर हम वाकई में एक सुनहरा भविष्य चाहते हैं, अपना देश खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो हमें वोट देने जरूर जाना चाहिए। जन जन की है ये पुकार, वोट देना हमारा पहला अधिकार। जन जन की है ये पुकार, वोट देना हमारा पहला अधिकार।

हाँ जी हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त हो चला है, 12 बज चुके हैं और 12 बजे होता है आपका अपना स्वास्थ्य संगनी, जिसको हम लेकर आते हैं सेहत सही लाभ कई बैनर के तले। मैं हूँ आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपकी फेवरेट वाली आरजी आ चुकी हैं और भाई गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में रोड साइड चाट के ठेले और उनमें से आती खुशबू जितना ही हमारा दिल लुभाती है, और छोटी सी गलती उतनी ही हमारे पेट में जाकर बूम यानी कि ब्लास्ट करती है। अब आपने भी कई बार देखा होगा कि बाहर का खाने के बाद कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है जिससे पेट में दर्द होना, उल्टी आना, बुखार आना, और हम सोचते हैं हमने ऐसा भी क्या किया है। एक ऐसा दुश्मन जो आपके प्लेट से निकल कर आपके पेट तक जाता है। एक ऐसा विलन जो दिखाई तो नहीं पड़ता है लेकिन बीमार आपको हफ्तों के लिए कर जाता है, जो आपको कमजोर हफ्तों के लिए कर जाता है। आज उसी विलन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इनविजिबल है, दिखाई नहीं पड़ रहा, और जिसको हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। सुनने में काफी खतरनाक लगता है, पॉइजन का वर्ड सुनते ही लगता है भाई किसी ने जहर घोल दिया है। और जब खाना जिसको हम खा रहे हैं एनर्जी के लिए, सोचिए अगर वही हमारे शरीर में जाकर जहर का काम करने लगे तो क्या होता है, तो क्या होता है बताने वाले हैं आज के अपने वाले शो में। तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए आपका अपना शो स्वास्थ्य संगली। मिलते हैं इस वाले ब्रेक के उस पार बताने के लिए कि आफ्टर ऑल क्या है ये फूड पॉइजनिंग, क्यों होती है ये फूड पॉइजनिंग, और इसके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से आप कर सकते हैं इस फूड पॉइजनिंग को ट्रीट। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा

हाल में ही आपने भी कोई खराब खाना खाया है या आप थोड़े से भी अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, मतलब कि थोड़ा सा बीमार बीमार महसूस कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। कल रात तो अच्छे खासे थे, भले चंगे थे, और अचानक से पेट में इतना तेज दर्द क्यों हो रहा है, साथ में उल्टी भी आ रही है, बुखार भी है, कमजोरी भी है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो होशियार हो जाइए क्योंकि ये हो सकता है फूड पॉइजनिंग, जिसके बारे में आज हम करने वाले हैं बात। तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम स्वास्थ्य संगरी में। मैं हूं आपकी आशुनती, लेकर आई हूं सेहत सही लाभ के बैनर के तले आपके लिए इस खूबसूरत सी श्रृंखला को, जिसमें बात होती है आपके सेहत की, आपके अपनों की सेहत की, स्पेशली आपकी आज बात होगी आपके पेट से जुड़ी हुई। क्योंकि भाई खाना खाने का शौक हम भारतीयों से ज्यादा आज तक किसी को नहीं होता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। जब भी हम खाने को देखते हैं, स्पेशली जब हम स्ट्रीट पे निकलते हैं, यानी कि रोड साइड निकलते हैं, और स्ट्रीट स्टॉल इतने सारे होते हैं, उनमें से आ रही इतनी लजीज खुशबू होती है कि हमसे रुका नहीं जाता, और हम सोचते हैं पानी बताशे भी खा लिया जाए, ये भी खा लिया जाए, बर्गर भी खा लिया जाए, चाउमीन भी खा लिया जाए, और क्या ही हो जाता है। एक दिन तो चीट डाइट चलती है ना, और जिस दिन चीट डाइट करते हैं पता चलता है हमारे पेट ने हमारे साथ ही थोड़ी सी चीटिंग कर दी और अब पेट में हो रहा है दर्द। तो अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह से हो रहा है तो भाई वो है फूड पॉइजनिंग, या फिर हो सकती है फूड पॉइजनिंग। लेकिन ये भला है क्या फूड पॉइजनिंग, कहते किसको है? तो भाई अगर किसी खाने के जरिए आपके शरीर में कोई वायरस, कोई टॉक्सिन, कोई बैक्टीरिया अंदर चला गया है जिसने आपको अंदर से बीमार कर दिया है, तो आपको होती है फूड पॉइजनिंग, दूषित भोजन या पेय पदार्थ का सेवन से होती है। हम आपको बता दें कि कोई हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी या फिर कोई टॉक्सिन्स आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं खाने के जरिए, और उसी के बाद आप होते हैं बीमार, आपके पेट में होता है बहुत ज़्यादा दर्द, उल्टियां होना, मतली आना, दस्त होना, पेट में लगातार दर्द होना या फिर बुखार, ये सारे लक्षण शामिल होते हैं जब भी किसी को होती है फूड पॉइजनिंग। ये हल्के से लेकर बहुत गंभीर तक हो सकते हैं। आमतौर पर तो इसे कई लोग घर में ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि वॉमिटिंग यानी कि उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आती है, उल्टियों के साथ साथ लगातार लूज मोशंस भी आते हैं, और जिससे हालत बद से बदतर चली जाती है। स्पेशली अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं और आपको अगर फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो आपकी कंडीशन और भी ज्यादा क्रिटिकल होने का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि भाई एक तो आपका शुगर लेवल बहुत तेजी से डाउन होने लगता है, यानी कि लो होने लगता है, उसमें फिर आपको चक्कर आते हैं, आपकी बॉडी उल्टी भी कर रही है, आपकी बॉडी से लूज मोशन भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी हो रही होती है डिहाइड्रेट, और इस दौरान अगर आपने कहीं ना कहीं अपनी शुगर की दवा भी ले ली है तो मुबारक हो, आप बीमार हैं, साथ ही साथ आप बेहोश भी होने वाले हैं। हालांकि मुबारकबाद जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आपको तुरंत अस्पताल जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप नज़दीकी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं तो ये समस्या और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। जो डायबिटिक के पेशेंट हैं उनसे तो कहा जाता है कि अगर आपको लूज मोशंस और आपको वॉमिटिंग लगातार आ रही हो तो कभी भी अपनी डायबिटिक की दवा ना लें। अगर आप लेते हैं तो शुगर लेवल लो होने की वजह से आप कोमा तक भी जा सकते हैं या फिर आपकी जान भी जा सकती है। और फूड पॉइजनिंग जिसको कई लोग घर पर ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कि यार क्या हुआ है, सिर्फ उल्टियाँ ही तो हो रही है, सिर्फ लूज मोशन ही तो है, पेट में दर्द ही तो है, तो कई लोग सोचते हैं कि पैरासिटामोल ले लेने से हमारी ये सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, और क्या ही हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ होने वाला है नहीं, सिर्फ दवा ले लूंगा घर पे ठीक हो जाएगा। स्पेशली कभी कभार ये ठीक हो भी जाता है, यानी कि 3 से 4 दिन ले लेते हैं, कई कभार ऐसा होता है कि भाई एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त भी लग जाए। तो अगर आपको लगातार एक हफ्ते से ज़्यादा कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसमें उल्टी होना, दस्त होना, पेट में दर्द होना, बुखार आना, तो इन सारे लक्षणों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत होती है। फिलहाल हम आपको और भी बता देते हैं कि कुछ और सिम्टम्स जो फूड पॉइजनिंग को दर्शाते हैं, यानी कि बताते हैं, तो कहते हैं भाई सागर समुद्री बीमारी या फिर उल्टी होने लगे, दस्त आने लगे, पेट में ऐठन होने लगे, भूख में लगातार कमी होने लगती है, हल्का हल्का बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, और कई लोग चक्कर खाकर भी बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी हो चुकी होती है बहुत ज़्यादा कमज़ोर, इसकी वजह से उनकी एनर्जी हो जाती है ख़त्म, और हमको लगता है कि यह नॉर्मल लूज मोशन है, अगर हम मेट्रोजेल खाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, वो मेट्रोजेल से भी ठीक नहीं होता है। और अगर ये दवाई लेने के बाद भी आपने सारे उपचार घर में करके देख लिए हैं, फिर भी अगर ये ठीक नहीं हो रहा है, तो अब आपको किसका इंतजार है, बीमार होने का, बेहोश होने का? क्योंकि अब बीमार तो पहले से ही है भाई, तो बेहोश होने का इंतजार ना करें, नजदीकी जिला अस्पताल में जाकर अपनी जांच करवाएं और पता करें कि कहीं आपको फूड पॉइजनिंग तो नहीं है। अगर फूड पॉइजनिंग है तो कौन सी दवा लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है।
अब आपको बता दे भाई, ये लक्षण तब आते हैं जब आप दूषित भोजन खाने के बाद कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रहते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि अगर आपने आज चाट खा लिया है या आज वो पानी बताशे खा लिए हैं जिसमें कहीं ना कहीं थोड़े से बैक्टीरिया, थोड़े से टॉक्सिन्स शामिल हैं, अगर आपने वो खा लिए और आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला है, भैया होगा होगा, हो सकता है आपकी बॉडी उसको झेल ले जाए और हो सकता है आपकी बॉडी ना झेल पाए, लेकिन उसके अगले ही सेकंड आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू नहीं होती हैं। ये तब शुरू होती है जब कुछ घंटे गुजर चुके होते हैं, कुछ दिन गुजर चुके होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने रात में खाना खाया है तो सुबह तक उसके पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना, कमजोरी होना, ये सारे लक्षण उन्हें आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं। बट अगर आपने पहले ही दिन खाना कुछ भी ऐसा गलत खा लिया है और आपकी बॉडी उससे लड़ने की कोशिश कर रही है तो हल्का हल्का बुखार आना शुरू होता है और कुछ दिनों तक आपके पेट में लगातार दर्द बना रहता है या कुछ दिन बाद आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और अगर आपके पेट में बहुत तेजी से दर्द शुरू हो रहा है, ऐठन हो रही है, तो यहाँ पर आपको संभलने की जरूरत थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के उस पर आते हैं, बताते हैं कि फूड पॉइजनिंग अगर किसी को हो जाए तो उसे क्या कुछ करने की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप फूड पॉइजनिंग के पीरियड के दौरान ले सकते हैं, किन चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्या आप ना खाएं, क्या आप खाएं जिससे आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं इस ब्रेक के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
0: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो कैनोसली 89.6 एफएम, यह गोला शहर की धड़कन पर। सेहत सही लाभ कई बैनर के तरह लेकर आए इस खूबसूरत सी श्रृंखला को, जिसमें बात है आपके सेहत की। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो सबसे ज्यादा किसी को बीमार करता है वो होता है फूड पॉइजनिंग का बैक्टीरिया। भाई, जब भी आप कुछ खाते हैं, पीते हैं, या फिर आप बिना हाथ धोए खा लेते हैं, या फिर बाहर के चाट पकौड़े, समोसे, बर्गर, पिज़्ज़ा, पानी बताशे, जब इनका शौक आपको बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जब ऐसे मौसम में जहाँ बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैला करती हैं, तो उस मौसम में आप हो जाते हैं बीमार और आपको लगता है कि यार आम दस्त ही तो है। बट ऐसा नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है कि ये बीमारी हो जाती है बहुत ज़्यादा जानलेवा। तो हमने ये तो जान लिया कि ये फूड पॉइजनिंग होती क्या है और इसके कुछ आम लक्षण क्या होते हैं, बट अब बात करते हैं क्या इसका कोई इलाज संभव है। जी हाँ, इसका इलाज संभव है। और अगर हम प्रारंभिक चरण की बात करें तो सबसे पहले जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो होता है हाइड्रेट रहना। जब भी कभी भी आपको फूड पॉइजनिंग हो तो सबसे महत्वपूर्ण कदम है खुद को हाइड्रेट रखना। उल्टी और दस्त से शरीर में तरल पदार्थ की काफ़ी मात्रा कम हो जाती है, काफ़ी मात्रा निकल जाती है, आपके बॉडी से बहुत सारा पानी निकल जाता है। साथ ही साथ अगर गर्मी का मौसम चल रहा है तो आपकी बॉडी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी खो रही होती है, क्योंकि आपको पसीना आता है, उस दौरान काफ़ी सारी इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी से निकल जाते हैं। तो अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं इस दौरान भी तो पीना शुरू कर दीजिए। आमतौर पर भी गर्मियों में पानी ज़्यादा पीने की बात की जाती है, ज़्यादा पीना भी चाहिए। और अगर आपको लगातार उल्टी और दस्त आ रहे हैं तो खुद को और भी ज़्यादा हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है। तो लगातार अपने तरल पदार्थों की पूर्ति करते रहिए, क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसमें आप पानी ले सकते हैं, ORL ले सकते हैं, शोरबा ले सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी ड्रिंक्स ले सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट शामिल हो। फॉर एग्जांपल, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, यानी कि नारियल का पानी ले सकते हैं। इसमें आपको हाइड्रेशन भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको मिलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। और एक और ख़ास बात जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब भी आप पानी पिए तो कोशिश करें वो पानी पूर्ण रूप से साफ और स्वच्छ हो, क्योंकि हम जो पानी पीते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम पानी टंकी का पी लेते हैं और इसकी वजह से भी हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। सिर्फ खाने से ही फूड पॉइजनिंग होगी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, कई बार आपके पीने की वजह से भी, जो आप कहीं भी जाकर किसी भी जगह से पानी पी लेते हैं उसकी वजह से भी आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो ध्यान रखें, जब आप पानी पिए तो उसको साफ और स्वच्छ पिए, स्वच्छ बर्तन में पिए पानी, या फिर अगर आप कोई चीज़ बनाकर ढक रखते हैं तो उसको हमेशा ढक कर रखें, बिना ढके उसे ना रखें, ताकि उसमें कोई एक्स्ट्रा बैक्टीरिया ना हो। बासी खाना ना खाएं। गर्मियों में कई बार ऐसा होता है कि हम रात का रखा हुआ खाना खा लेते हैं जो कि नहीं खाना चाहिए। अगर वो खाना स्मेल में भी ठीक है, टेस्ट में भी ठीक है, तो आप उसे एक बार गर्म ज़रूर कर लें खाना खाने से पहले, और अगर वो फ्रिज में रखा है तब तो आप उसको सेफली खा सकते हैं। अदरवाइज़ कोशिश करें कि आप गर्मियों में फ्रेश, ताज़ा बना हुआ खाना खाएं, बाहर के खाने को थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि बाहर के खाने आपको भी नहीं पता होता है कि बाहर जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो कब की हैं, क्या वो सेफ हैं, वो नहीं है। और गर्मियों में बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती है। अगर आप टिक्की की बात करते हैं तो आलू जो होते हैं वो सुबह कहीं ना कहीं उबाले जाते हैं और शाम तक आते आते वो ख़राब होने लग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्मी में होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में होते हैं और इतना टेम्परेचर वो नहीं झेल पाते हैं। तो इसीलिए अगर आप बाहर कोई चीज़ खाने जा रहे हैं तो ये इंश्योर ज़रूर करें कि वो साफ़ हो, सुथरा हो और उससे भी ज़्यादा हाइजीन इसमें मेंटेन तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ वो आपके लिए सेफ़ हो। सुबह का रखा हुआ, कल रात का रखे हुए खाना खाने से बचें और ख़ुद को साफ़ सुथरा खाना, साफ़ सुथरा पानी ज़रूर प्रोवाइड करें। इसी के साथ बात करते हैं कि और क्या कर सकते हैं। तो भैया और कर सकते हैं आप कुछ घरेलू उपचार। जी हाँ, हम आपको बता दें भाई, घरेलू उपचार में कई बार ऐसा होता है कि जब हमें बहुत ज़्यादा लूज मोशंस आ रहे होते हैं तो घर में रखी हुई जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं लूज मोशंस के लिए वो आप ले सकते हैं, लेकिन उन्हें ज़रा ध्यान से लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो भी दिक्कत हो जाती है, तो भाई ज़रा ध्यान से उनका इस्तेमाल करें, उन्हें आप ले सकते हैं ताकि आपके लूज मोशंस कुछ देर के लिए रुक जाए। अगर रुक गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत तभी भी होती है क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अब पूरी तरह से ठीक हैं, फिर भी एक बार खुद को चेक जरूर करा लें कि आगे जाकर के कोई खतरा तो नहीं होने वाला है। इसी के बाद आता है भाई कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो भैया खाना क्या नहीं है वो हम आपको बता देते हैं और क्या खाना है वो भी हम आपको बता देते हैं। जब आप फिर से ठोस खाना खाना शुरू कर दें, क्योंकि भाई जब आपको फूड पॉइजनिंग होती है तो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आपको तरल पदार्थ वाली चीज़ें लेनी है, सूप लेना है, खिचड़ी लेनी है, जो आप आसानी से डाइजेस्ट कर ले जाएँ, यानी कि आसानी से आप पचा ले जाएँ, जिसको पचाने में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े उसमें। और इसके बाद जब आप ठोस खाद्य पदार्थ खाना शुरू कर देते हैं तो उसमें केले, चावल, सेब, टोस्ट, यानी कि जिसको हम ब्रेड आहार कहते हैं, वो शामिल कर सकते हैं। इसमें आप हल्के खाने को शामिल कर सकते हैं, खिचड़ी को, दाल को, चावल को। बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाने से बचे। फिर से एक बार वही आता है कि हर गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा मसालेदार या फिर बहुत ज़्यादा तीखा खट्टा मीठा खाना खाने से बचना चाहिए, बहुत सादा भोजन लेना चाहिए। और आपको गर्मियों के मौसम में बाहर जो सब्ज़ियाँ या फिर जो फल मिलते हैं वो मेनली ऐसे होते हैं जो गर्मियों में बहुत आसानी से पच जाएँ, साथ ही साथ जो आपको हाइड्रेट रखते हैं, जिनमें पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर चाहे आप बात कर ले लौकी की, चाहे आप बात कर ले खीरे की, चाहे आप बात कर ले तरबूज की, या फिर आप बात कर ले खरबूज और तुरई की। ये वो सारी सब्जियां हैं जिनमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये आपको गर्मियों में ज़रूरत होती है हाइड्रेशन की, यानी कि आपको ज़रूरत है खुद को हाइड्रेट रखने की। तो अगर आप इन सब्जियों को शामिल कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट कोशिश करें कि गर्मियों में ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें ना खाएं। अगर आप लौकी भी बना रहे हैं तो उसको सादा बनाएं, उसको कोफ्ते बना के खाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जब आप फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी से जूझ रहे हों या खुद को ठीक कर रहे हों, तब आपको बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। पूड़ियों को थोड़ा साइड कीजिए, कचौड़ियों को थोड़ा साइड कीजिए, रोटी पर आइए, पराठों को थोड़ा साइड कीजिए और तली हुई चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। ठंड आएगी भाई, फिर से आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों में ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से इसको बंद कर देने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खा सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन लिमिट में। हर एक चीज़ अगर लिमिट में रहती है तो भाई डॉक्टर्स भी कहते हैं कि लिमिट में लिया गया हर एक चीज़ बेहतर है। और अगर आप अनलिमिटेड किसी चीज़ को खाना शुरू कर देते हैं तो फिर वो दवाई क्यों ना हो आपके शरीर में जा कर के कहीं ना कहीं वो जहर का ही काम करने वाली है। तो ब्रेड आहार ले सकते हैं जिसमें केले, चावल, सेब, टोस्ट एंड बाकी जो फल आते हैं जो गर्मियों के मौसम में आसानी से उपलब्ध होते हैं, आप उन्हें ले सकते हैं, उन्हें खा सकते हैं। साथ ही साथ हल्का भोजन लेने की ज़रूरत होती है। अब आपको क्या नहीं खाना है वो भी हम आपको बता दें। जब तक आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, यानी कि आप जब तक कम्प्लीटली ओके नहीं हो जाते हैं, आपको नहीं लग जाता कि भाई अब मैं फिट एंड फाइन हूँ, अब मुझे उल्टी नहीं हो रहा है, मुझे कहीं भी दस्त नहीं आ रहे हैं, मुझे पेट में दर्द नहीं हो रही, कमज़ोरी नहीं हो रही, तब तक के लिए आपको कुछ चीज़ों से बचने की जरूरत होती है। और वो चीजें हैं डेयरी उत्पाद, यानी कि वो जो दूध से बनी हुई चीजें हैं। अब और दूध से बनी चीजों का मतलब ये नहीं कि आप दही अवॉइड करेंगे, आप दही ले सकते हैं एक लिमिट में, क्योंकि दही आपके पेट को आराम देता है। बट दूध से बनी बाकी चीजें, कॉफी, दूध, खीर, मिठाई, आइसक्रीम, इन सारी चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि दूध में होता है लैक्टोज, जो कि एक शुगर का ही फॉर्म है, और यह आपके पेट में जाकर आपके पाचन तंत्र को और भी ज्यादा डिस्टर्ब करता है। जो भी लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि जब वो दूध पीते हैं तो उनको ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, पेट में दर्द, ये सारी समस्याएं होती हैं। तो जब भी किसी को फूड पॉइजनिंग होती है तो डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि आप डेयरी से बनी उत्पादों से दूर रहें, तो कुछ दिनों के लिए दूर रहें। भले ही आपको दूध चाहे कितना ही पसंद क्यों ना हो, लेकिन कोशिश करें कि जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक आप डेयरी की बनी चीजें ना खाएं। इसके बाद आते हैं वसा युक्त यानी कि बहुत ज्यादा फैट वाला खाना। फैट किस में होता है, चलिए ये भी बता देते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा बटरी खाना खाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा बटर, क्रीम, घी, तेल का इस्तेमाल हो रहा है, रिफाइंड का इस्तेमाल हो रहा है, फॉर एग्जांपल पूड़ी, छोले, राजमा, इन सारी चीजों को अवॉइड करने की जरूरत है अगर आप फूड पॉइजनिंग से गुजर रहे हैं तो इन सारी चीजों को ना खाएं। दूसरा आता है कि मसालेदार खाना। जी हाँ, बेशक, क्योंकि आपका पाचन तंत्र अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, अगर आप मसालेदार खाना खाते हैं तो ये आपके पेट में जलन के साथ साथ आपकी कंडीशन को और भी ज्यादा वर्स कर सकता है, यानी और भी ज्यादा खराब कर सकता है। तो इन सारी चीजों से बचने की जरूरत है। आप दही का सेवन कर सकते हैं, उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, एंड प्रोबायोटिक्स को कहीं ना कहीं एंड प्रोबायोटिक्स के साथ साथ आप प्रीबायोटिक ले सकते हैं। प्रीबायोटिक आपको केले में मिलेगा ऑफकोर्स, तो आप केला खा सकते हैं, आप दही खा सकते हैं, और ये आपकी सेहत के लिए काफी अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं उन सवालों की जो लोग अक्सर पूछते हैं और अक्सर सोचते हैं कि भाई ये दोनों चीजें तो सेम सेम होती हैं। वो सवाल कौन से हैं बताते हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: हाँ जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का। हम आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में, मैं हूँ आपकी आरचुनती और आप सुन रहे हैं रेडियो कैनसलेट 9.6 FM। यह गोंडा शहर की धड़कन पर प्रोग्राम चल रहा है आपका स्वास्थ्य संगिनी, सेहत सही लाभ कई बैनर के तले लेकर आए हैं इस खूबसूरत सी श्रृंखला को। और आज हम बात कर रहे हैं फूड पॉइजनिंग, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, फूड पॉइजनिंग क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये सारी बातें हमने जानी। और अब बात करते हैं उन सवालों की जिनका इंतजार आई थिंक आपको भी था। तो भाई, वो सवाल क्या है जो लोग अक्सर पूछते हैं? लोगों का अक्सर सवाल होता है कि पेट फ्लू यानी कि स्टमक फ्लू और फूड पॉइजनिंग में अंतर क्या होता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि फूड पॉइजनिंग और पेट का फ्लू यानी कि फूड पॉइजनिंग और स्टमक फ्लू में दोनों में ही मतली आना यानी कि उल्टी आना, दस्त होना, पेट में ऐठन होना जैसी समान चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, समान लक्षण आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से ये काफ़ी अलग होते हैं। जहाँ फूड पॉइजनिंग आपको दूषित भोजन, दूषित खाने या फिर पानी की वजह से होता है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, ये उसी व्यक्ति को बीमार करता है और कमज़ोर करता है, वहीं पर जो स्टमक फ्लू होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, संपर्क के जरिए, दूषित सतहों पर, दूषित भोजन के जरिए, पानी का सेवन करने के जरिए, और अगर आप वॉशरूम ना जाकर कहीं खुले में शौच करते हैं तो उसके ज़रिए ये फ्लू फैलने की आशंका थोड़ी ज्यादा रहती है। लोगों का दूसरा सवाल होता है कि कितने दिनों तक फूड पॉइजनिंग रहती है। तो मैं आपको बता दें, आमतौर पर दूषित भोजन खाने के कुछ घंटों से लेकर कई दिनों के भीतर लक्षण दिखाई दे सकते हैं। आमतौर पर ये 1 से 3 दिन तक चलते हैं। हालांकि कुछ प्रकार के फूड पॉइजनिंग ऐसी भी होती हैं जो 1 सप्ताह से ज़्यादा भी चल सकती हैं या 1 सप्ताह तक भी चल सकती हैं। अगर आपको सिर्फ 1 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाता है, आप देखते हैं कि सिर्फ आपको 1 दिन ही उल्टी हुआ है, बुखार आया है, पेट में दर्द है, ऐठन है, दस्त हो रहे हैं और आपने घर में पैरासीटामोल लेकर या फिर मेट्रोजिल जैसी दवा लेकर खुद को ठीक कर लिया है और उसके बाद आप अगली सुबह प्रॉपर तरीके से ठीक हो गए हैं, तो ये अच्छी बात है। और अगर ये 1 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है या फिर 3 दिन से ही ज़्यादा चल रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की और डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत होती है। तो भाई, ये तो था शो आपका फूड पॉइजनिंग को लेकर के, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो खाने पीने से होती है, दूषित खाना, दूषित पानी की वजह से होती है। अगर आप इन गर्मियों के मौसम में छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, ख्याल क्या रखना है भाई ये भी बता देते हैं, ख्याल रखना है कि आप दूषित भोजन ना करें, घर का बासी खाना ना खाएं, बाहर जाकर चाट पकौड़े खाने से अच्छा है आप घर से खाना पैक करके ले जाएं, बाहर पानी पीने से अच्छा है आप घर से पानी पैक करके ले जाएं। हाँ, माना बैग का वजन थोड़ा बढ़ जाता है, लगता है कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ हम लेकर चल रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बाहर जाकर खा लेंगे, बट भाई इसको लेकर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी चीजें आप घर से पैक कर रहे हैं, कोशिश करें वो बहुत जल्दी खराब होने वाला खाना ना हो, उसमें बहुत तेल मसाला ना हो, बहुत ज्यादा तीखा ना हो, बहुत ज्यादा खट्टा ना हो, जिससे आप उसे लंबे समय तक कैरी कर सकें, उसे लंबे समय तक ले सकें। वो हल्का भोजन हो जिसमें पानी की मात्रा भरपूर हो। साथ ही साथ खुद को हाइड्रेट करते रहिए, लगातार पानी पीते रहिए। अगर आप सफर में सुबह 2 ग्लास पानी पीने के बाद सीधे शाम में ही जाकर 4 ग्लास पानी पीने की कोशिश करते हैं तो ऐसा ना करें। हर घंटे में खुद को 1 ग्लास पानी से जरूर नवाजें, यानी कि खुद को 1 ग्लास पानी जरूर दें। पानी बहुत ज्यादा चिल या बहुत ज्यादा गर्म ना रखें, नॉर्मल पानी पी सकते हैं, नॉर्मल पानी रख सकते हैं। अगर आपको ठंडा पीने का शौक है तो उसे भी थोड़ा टेम्परेचर उसका डाउन होने की जरूरत है, यानी कि आप उसको थोड़ा सा हल्का नॉर्मल करके पी सकते हैं, जिससे आपकी प्यास भी मिटेगी, आप खुद को हाइड्रेट भी कर पाएंगे और बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने से जो आपके दांत जम जाते हैं वो भी नहीं जमेंगे। तो बस छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखने की जरूरत होती है और आप ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से जो आपको कमजोर कर देती हैं हफ्तों के लिए, आपको परेशान कर देती हैं, आप उनसे बच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, गर्मियों में अपना ख्याल रखते रहिए, पानी पीते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आप सुन रहे हैं आपका अपना FM रेडियो 99.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। स्वागत है आप सभी का रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका अपना आरजे अदनान। सो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे एक ऐसी बीमारी की जिसका नाम तो आपने शायद सुना होगा लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। नाम भी अलग और अजीब सा लगता है, नाम है काला अजार। लेकिन आज की शुरुआत मैं कहानी से करना चाहता हूं। टीकन देवी जी, आप तो गांव गांव जाती हैं, क्या आपने कभी कोई ऐसा मामला देखा? वैसे रुकिए रुकिए भाई, मैं तारुफ तो करा दूं। आज हमारे साथ में स्टूडियो मौजूद है हमारी टीकन भाभी। सो कैसी हैं आप?
2: बहुत ठीक हूँ भैया, आप अपना बताइए कैसे हैं आप?
1: बस भाभी बहुत अच्छा हूँ। आप जिस तरह से जानकारियाँ देती हैं उससे मेरा और हमारे गांव वालों का, हमारे सभी श्रोताओं का बहुत भला होता है और हमारा बहुत पैसा बच जाता है बीमारियों के खर्च में। लेकिन आज चूंकि मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप भाभी गांव-गांव जाती हैं, तो क्या आपने कभी कोई ऐसा काला आजार का मामला देखा है?
2: अरे आरजी भैया, देखा ही नहीं, बहुत करीब से देखा है। हमारे पड़ोस में एक औरत थी, नाम था सरोज। पहले तो उसे बस हल्का बुखार आता था, लोग बोले मौसमी बुखार है, ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसका बुखार कम ही नहीं हुआ, उसका वजन गिरने लगा, चेहरा पीला पड़ने लगा, पेट फूलने लगा। हमने कहा सरोज चलो अस्पताल चलते हैं, लेकिन उसके घर वाले बोले अरे ये तो किसी की नजर लग गई है या कोई साया है। महीनों तक इलाज नहीं हुआ, जब अस्पताल पहुंची तब तक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इलाज हुआ, जान तो बच गई, लेकिन बाद में उसके शरीर पर दाने निकल आए, चेहरा खराब हो गया। डॉक्टर बोले ये PKDL है, यानी काला आजार के बाद की बीमारी। आज भी वो घर से कम ही निकलती है, लोग उसे देखकर फुसफुसाते हैं। सोचिए आरजी भैया, अगर समय पर इलाज हो जाता तो आज ये सब ना होता।
1: सच में भाभी ये बहुत दर्दनाक है। दोस्तों ये कोई कहानी नहीं बल्कि ये एक हकीकत है। तो आज हम समझेंगे कि काला आजार क्या होता है और ये कैसे होता है और साथ ही साथ इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। सो टीकन भाभी, सबसे पहले ये बताइए कि काला आजार होता क्या है?
2: देखिए आरजे भैया, काला आजार एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसे हम आम भाषा में भले ही काला आजार कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम विसरल लीशमैनियासिस है। ये बीमारी एक बहुत ही छोटे कीड़े के काटने से फैलती है, जिसे रेत मक्खी या सैंड फ्लाई कहा जाता है। अब ये मक्खी इतनी छोटी होती है कि कई बार हमें दिखती भी नहीं है, और खास बात ये है कि ये ज्यादातर रात के समय काटती है, जब लोग सो रहे होते हैं। जब ये रेत मक्खी किसी इंसान को काटती है तो इसके साथ एक छोटा सा परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये परजीवी धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे लीवर, प्लीहा यानी तिल्ली और खून को नुकसान पहुंचाने लगता है। यही वजह है कि शुरुआत में हमें ये बीमारी साधारण लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को काफी कमजोर कर देती है।
1: अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन टीकन भाभी, इसके लक्षण आखिर हम कैसे पहचान सकते हैं? लोगों को कैसे पता चले कि ये काला आजार है?
2: बहुत अच्छा सवाल है आरजे भैया। देखिए, इसके लक्षण एकदम से तेज नहीं आते, बल्कि धीरे धीरे दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति को लंबे समय तक बुखार बना रहता है, जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। इसके साथ साथ व्यक्ति का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है और वो पहले जैसा काम नहीं कर पाता है। धीरे धीरे पेट भी फूलने लगता है क्योंकि अंदर की तिल्ली और लीवर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा खून की कमी भी हो जाती है जिससे चेहरा पीला पड़ने लगता है और व्यक्ति बहुत ही कमजोर दिखने लगता है। यही वजह है कि कई बार लोग इसे साधारण बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है।
1: मतलब देखने में तो ये सामान्य बुखार जैसा लगता है, लेकिन असल में अंदर से बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, क्यों?
2: बिल्कुल सही समझे आप। और सबसे चिंता की बात तो ये है कि अगर समय पर इसका इलाज ना कराया जाए तो करीब 95% मामलों में ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए लक्षणों को पहचानना और समय पर जांच कराना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो अलग अलग स्थानों पर ज्यादा पाई जाती है। अगर हम इस काला आजार की बात करें तो ये बीमारी किन इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है?
2: भैया, भारत में ये बीमारी खास तौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ज्यादा पाई जाती है। इन राज्यों में करीब 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के खतरे में हैं।
1: इतने सारे लोग जोखिम में हैं? ये तो सच में चिंता का विषय है।
2: हाँ अर्जित भैया, और खास बात ये है कि ये बीमारी ज्यादा उन लोगों को प्रभावित करती है जो कच्चे घरों में रहते हैं, जिन घरों की दीवारों में दरारें होती हैं, जहाँ साफ सफाई की कमी होती है और जहाँ पशु घर के बहुत पास रखे जाते हैं, वहाँ ये रेत मक्खी आसानी से पनपती है और ऐसे वातावरण

0: रह जाए।
1: मुफ्त इलाज, ये तो बहुत राहत की बात है भाभी।
0: बिल्कुल, और अब तो इलाज के लिए बहुत प्रभावी दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, जैसे कि लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, जो जल्दी असर करती है और मरीज को जल्द ठीक होने में मदद करती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि मरीज को पूरा इलाज लेना चाहिए, बीच में दवा छोड़नी नहीं चाहिए, नहीं तो बीमारी दोबारा लौट सकती है।
1: बिल्कुल भाभी, अभी आपने बताया कि लोग समय पर अस्पताल जाएं, लेकिन एक बात बताइए, कई बार लोग सोचते हैं कि जांच में बहुत वक्त लगेगा या बहुत पैसे लगेंगे, तो क्या सच में जांच इतनी मुश्किल होती है?
0: अरे नहीं नहीं आरजे भैया, अब तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रही। पहले के समय में जरूर जांच में थोड़ा समय लगता था, लेकिन अब सरकार ने इतनी सुविधा दे दी है कि गांव के पास ही अब सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत जल्दी काला आजार की जांच हो जाती है। आजकल एक खास तरह का टेस्ट होता है जिसे हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस उंगली से एक छोटा सा नाखून का सैंपल लिया जाता है और करीब 10 मिनट के अंदर ही पता चल जाता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं।
1: सिर्फ 10 मिनट में? ये तो सच में बहुत आसान हो गया।
0: हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि अब किसी को भी जांच कराने में डरने या देरी करने की जरूरत नहीं है। पहले लोग सोचते थे कि शहर जाना पड़ेगा, बड़े अस्पताल में लाइन लगानी पड़ेगी, लेकिन अब ये सुविधाएं गांव के पास ही उपलब्ध हैं।
1: लेकिन टीकन भाभी, क्या यह टेस्ट पूरी तरह भरोसेमंद है?
0: देखिए, ये टेस्ट बहुत हद तक सही परिणाम देते हैं और शुरुआती पहचान के लिए बहुत उपयोगी है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू कर सकते हैं, और अगर किसी केस में डॉक्टर को पुष्टि की जरूरत लगे तो वो आगे की जांच भी करवा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि ये टेस्ट हमें समय पर बीमारी पकड़ने में मदद करता है, जिससे इलाज जल्दी शुरू हो सके और बीमारी गंभीर होने से पहले ही रोक दी जाए।
1: मतलब अब सबसे बड़ी बाधा यानी देर से पता चलना, वो भी काफी हद तक खत्म हो गई है, क्यों?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं तो हमेशा लोगों से यही कहती हूँ कि अगर किसी को 2 हफ्तों से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो रहा हो या कमजोरी महसूस हो रही हो, तो बिना सोचे समझे सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाएं और टेस्ट कराएं। डरने की नहीं, समझदारी दिखाने की जरूरत है।
1: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने, तो क्या आशा दीदी भी इसमें मदद करती हैं?
0: हाँ बिल्कुल, आशा दीदी और दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर ऐसे लक्षण वाले लोगों की पहचान करते हैं, वो लोगों को समझाते हैं, उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने में मदद करते हैं और कई बार खुद टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। अगर किसी को जाने में दिक्कत हो तो आशा दीदी से मदद जरूर लेनी चाहिए, वो आपके सबसे करीब की स्वास्थ्य साथी हैं।
1: ये तो बिल्कुल सही बात कही और बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब अब जानकारी, जांच और इलाज तीनों ही गांव के पास उपलब्ध हैं, क्यों भाभी?
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि अब काला आजार को हराना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, बस जरूरत है कि लोग समय पर कदम उठाएं।
1: बिल्कुल, लोगों के बारे में तो आपने बताया कि लोग समय पर कदम उठाएं, पर साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या सरकार इस बीमारी को खत्म करने के लिए कुछ कर रही है?
0: जी, सरकार इस दिशा में काफी काम कर रही है। एक बड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है इस समय, जिसका नाम है राष्ट्रीय काला आजार उन्मूलन कार्यक्रम, और ये NCVBDC के तहत आता है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य ये है कि हर ब्लॉक में काला आजार के मामले 10,000 लोगों में से एक से भी कम हो जाएं। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने 2023 में ये लक्ष्य हासिल भी कर लिया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1: क्या बात है भाभी, ये तो सच में गर्व की बात है।
0: हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। अभी भी सावधानी बहुत जरूरी है। सरकार हर साल लाखों घरों में स्प्रे करवाती है, करीब 3.5 से 3.8 करोड़ लोगों के घरों में दीवारों पर दवा का छिड़काव किया जाता है, जिससे रेत मक्खियां खत्म हो सके और बीमारी फैलने से रोकी जा सके।
1: तो आम लोग खुद क्या कर सकते हैं भाभी इससे बचने के लिए?
0: बहुत आसान उपाय हैं, जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। सबसे पहले तो घर की दीवारों की दरारों को भरना चाहिए, ताकि मक्खियों को छिपने की जगह ना मिले। घर और आसपास की साफ सफाई बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा पशुओं को घर से थोड़ा दूर ही रखना चाहिए, ताकि मक्खियां इंसानों के पास ना आए। रात में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए।

0: और कोशिश करनी चाहिए कि जमीन पर या खुले में बाहर सोने से बचें। इन छोटे छोटे उपायों से हम काला आजार जैसी गंभीर बीमारी से भी खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: तो टीकन भाभी, एक बात और बताइए, गांव में लोग इस बीमारी को लेकर किस तरह की गलत फहमियां रखते हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग बीमारी से ज्यादा डर और उसके बारे में सुनी सुनाई बातें बहुत करते हैं। इसको लेकर आप क्या मानती हैं?
0: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे भैया, और यही सबसे बड़ी समस्या है। हमारे गांवों में आज भी बहुत लोग कालाजार को भूत प्रेत, साया या किसी बुरी नजर का असर मान लेते हैं। जब किसी को लंबे समय तक बुखार रहता है, शरीर कमजोर हो जाता है और पेट फूल जाता है, तो लोग सीधे डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़ फूंक या ओझा गुनी के पास चले जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, अरे भाई, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक बीमारी है और इसका इलाज भी है। अगर समय पर सही इलाज मिल जाए तो व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने, और शायद इसी वजह से लोग देर कर देते हैं इलाज कराने में।
0: बिल्कुल, और एक और बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग सोचते हैं कि ये बीमारी छूने से फैलती है, इसलिए मरीज से दूरी बना लेते हैं। कुछ लोग तो मरीज को अलग कमरे में रखने लगते हैं या उससे बात तक नहीं करते, लेकिन सच्चाई तो ये है कि काला आजार छूने, साथ बैठने या खाना खाने से नहीं फैलता, ये सिर्फ रेत मक्खी के काटने से फैलता है। इसलिए मरीज से डरने या उसे अलग करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उसे सहारा देने की जरूरत है।
1: क्या बात है भाभी, बिल्कुल अच्छी और सच्ची बात कही आपने। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये बात और जानना चाहूंगा कि और आखिर कौन कौन सी गलत धारणाएं होती हैं लोगों में काला आजार को लेकर।
0: कई लोग ये भी मान लेते हैं कि अगर बुखार अपने आप कम हो गया तो बीमारी ठीक हो गई, जबकि अंदर से बीमारी बनी रहती है और बाद में और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। कुछ लोग दवा शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा आराम मिलता है दवा बीच में ही छोड़ देते हैं। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे बीमारी दोबारा लौट सकती है और जटिल हो सकती है। और एक बात और, कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ गरीब या कमजोर लोगों को ही काला आजार होता है, कि अगर माहौल सही नहीं है और मक्खियां पनप रही हैं तो कोई भी व्यक्ति इसका शिकार हो सकता है।
1: अच्छा, तो आखिर इसका समाधान क्या है? लोग इन गलत फहमियों से आखिर कैसे बाहर आए?
0: समाधान बहुत साफ है भैया, सही जानकारी और जागरूकता। सबसे पहले तो जैसे ही किसी को 2 हफ्तों से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो या पेट फूलने लगे, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं, किसी भी तरह के झाड़ फूंक या देरी से बचे। दूसरी बात, अगर डॉक्टर इलाज शुरू करे तो पूरा कोर्स पूरा करे, चाहे बीच में कितना भी आराम क्यों ना मिल जाए। और तीसरी बात, घर और आसपास की सफाई जरूर रखें, दीवारों की दरारें भरें और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, मरीज का साथ दें, उसे अलग या कमजोर महसूस ना होने दें।
1: बहुत ही जरूरी बात बताई भाभी आपने। लेकिन आपने शुरुआत में एक दुखद कहानी सुनाई थी, क्या कोई ऐसी कहानी भी है जहां जागरूकता ने किसी की जिंदगी बदल दी हो?
0: हाँ बिल्कुल है, और ये कहानी सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। हमारे पास के ही एक गांव में मेरी एक सहेली है, रीना। कुछ साल पहले उसके इलाके में काला आजार के कई मामले सामने आए थे, जिससे पूरा गांव डरा हुआ था। लेकिन रीना ने डरने के बजाय समझदारी दिखाई। उसने पहले से ही अपने घर की दीवारों को ठीक करवाया, दरारें भरवाई और घर के आसपास साफ सफाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने मच्छरदानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आशा दीदी की हर बात को ध्यान से सुना और अपनाया भी। एक दिन उसे भी हल्का बुखार हुआ। पहले तो वो थोड़ी घबरा गई, लेकिन इस बार उसने देर नहीं की, तुरंत स्वास्थ्य केंद्र गई, टेस्ट करवाया और रिपोर्ट नेगेटिव आई। वो हंसते हुए मुझसे बोली, यार टीकन, इस बार मैं डरने नहीं वाली थी, क्योंकि मुझे पता था कि क्या करना है और कहाँ जाना है। आज वही रीना अपने पूरे गांव में लोगों को समझाती है कि डरना नहीं, बल्कि समय पर सही कदम उठाना है।
1: सच में यही तो असली बदलाव है, जब एक व्यक्ति जागरूक होता है और पूरे गांव को जागरूक बना देता है।
0: बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी ताकत भी है, जागरूकता। याद रखिए, काला आजार खतरनाक जरूर है, लेकिन अगर हम समय पर पहचान लें और इलाज करा लें तो इसे पूरी तरह हराया जा सकता है।
1: और यही सबसे बड़ा संदेश है आज के कार्यक्रम का। समय पर जांच और सही इलाज आपकी जिंदगी बचा सकता है।
0: और साथ ही सही जानकारी अपनाइए, गलत फहमियों से दूर रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक बनाइए।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों आज से ही एक कदम बढ़ाइए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जागरूक बनिए।
2: जागरूक बने, सुरक्षित रहे और काला आजार को मिलकर हराए।
1: तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस शो को हम यहीं पर पूरा करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर शपथ लेते हैं।
3: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
4: प्राथमिकता देंगे,
3: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
4: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
3: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
4: साफ सफाई और स्वच्छता का
3: पालन करेंगे
4: ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
3: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे
4: ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
3: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
4: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा
3: तभी भारत समृद्ध बनेगा।
4: सेहत सही तो लाभ कई।
5: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर निधि, जो एक पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं और इस समय वे न्यू कॉन्सेप्ट संस्था से जुड़ी हैं। डॉक्टर अमर निधि के पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, बाल संरक्षण, लाइफ स्किल्स, परिवार नियोजन, HIV/AIDS और सामाजिक व व्यवहारिक परिवर्तन पर व्यापक रूप से काम किया है। उन्होंने समुदाय को जागरूक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण और कार्यक्रम संचालित किए हैं। हमें खुशी है कि डॉक्टर अमर निधि आज हमारे साथ हैं और आज हमारे जरिए वे समुदाय से कुछ बातचीत करेंगी। डॉक्टर अमर निधि, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
6: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, मुझे भी आप सबके साथ जुड़कर बहुत खुशी हो रही है और ये ऐसा महसूस कर रही हूँ, गर्वित महसूस कर रही हूँ कि श्रोताओं को मेरे माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी मैं दे सकूँ जिससे वो लाभ उठा सकें।
5: हमारा पहला सवाल है कि अनीमिया की समस्या काफी व्यापक हो गई है और इसके मुख्य कारण क्या हैं?
6: ये बहुत ही अहम सवाल है। अनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी होना। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व नहीं मिलता तो खून में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। इसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी, कभी किन्हीं कारणों से शरीर में से खून का बह जाना, पेट में कीड़े या कृमि होना या कुछ पुरानी बीमारियां भी अनीमिया का कारण हो सकती हैं।
5: क्या अनीमिया के कुछ भिन्न लक्षण होते हैं, मतलब कैसे पता चलता है कि अनीमिया है?
6: अनीमिया के सामान्य लक्षणों में थकान होना, चक्कर आना, त्वचा या जीभ का पीला होना, हाथ पैरों का ठंडे होना, सांस फूलना और खास कर पढ़ाई जैसे कामों में ध्यान ना लगना शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी को अनीमिया हो और ये लक्षण ना दिखाई दें। इसीलिए अनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन की जांच ही सबसे सही तरीका है।
5: जी, तो क्या अनीमिया को रोकने या अनीमिया से निकलने का कोई तरीका आप बता सकती हैं हमारे श्रोताओं को?
6: जी हाँ, बिल्कुल। अनीमिया को रोकने के लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां या सिरप का सेवन लेना, आयरन वाले आहार, हर 6 महीने में कृमिनाशक दवा का लेना और बीमारी का इलाज, ये सब बहुत मदद करते हैं। गंभीर स्थिति की अनीमिया में डॉक्टर ज्यादा खुराक या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं।
5: तो मैम, अनीमिया सिर्फ लड़कियों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए को ही होता है या फिर पुरुषों में भी अनीमिया पाया जाता है?
6: ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि महिलाओं, खास करके किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का खतरा अधिक होता है, लेकिन पुरुष और बच्चे भी अनीमिया से प्रभावित होते हैं, इसलिए समय समय पर सभी को अनीमिया की जांच करवानी चाहिए।
5: तो मैम, मतलब अनीमिया के बचाव के लिए सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं? कुछ सरकारी योजनाएं या सरकारी कार्यक्रम कुछ उपलब्ध हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं?
6: ये बहुत आपने अहम सवाल पूछा जो श्रोताओं की जानकारी के लिए है कि सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत जीवन के हर चरण के लिए आयरन फोलिक एसिड की खुराक दी जाती है, और इसी के साथ साथ बच्चों और किशोरों में किशोर किशोरियां दोनों शामिल हैं, उनकी जांच, कृमिनाशक दवा और काउंसलिंग भी की जाती है। स्कूलों में साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसे हम विफ्स के नाम से भी जानते हैं, ये कार्यक्रम भी चलाया जाता है।
7: मैम, हमारा अगला सवाल होगा कि आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र से परिवार किस तरह आयरन फोलिक एसिड की गोलियां, कृमिनाशक दवाएं और बच्चों की वृद्धि की निगरानी जैसी सेवाएं ले सकता है?
6: ये आसान है। परिवार जो है वो नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सब सेंटर या पीएचसी में मुफ्त अनीमिया की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर IFA की गोलियां, विटामिन सी की गोलियां और कृमिनाशक गोलियां देती हैं, और घर पर ही बच्चों का वजन और ऊंचाई भी नापती हैं।
5: तो क्या इसका इलाज घर पर ही हो सकता है? मतलब हमारा अगला सवाल यही था कि एनीमिया, मतलब इसके जो इलाज है, उपचार है, वो कैसे कराया जा सकता है? निःशुल्क जांच कहाँ होती है? तो इसके बारे में
6: इसको मैं दो भागों में कवर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये है कि अनीमिया का उपचार किसी भी सरकारी केंद्र पर, स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में उपलब्ध है। एक बार जब सब सेंटर या पीएचसी या आंगनवाड़ी केंद्र से दवा मिलने लगती है, तो उसको बार बार आशा और आंगनवाड़ी इसका वितरण कर सकते हैं। घर जाकर भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगर किसी को अनीमिया की शंका है, वो सबसे नज़दीकी सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी या ज़िला अस्पताल में जाएं, तो वहाँ हीमोग्लोबिन की जांच और मुफ्त इलाज जो है वो डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध है। जो गंभीर रूप से अनीमिया से पीड़ित मरीज होते हैं, उनको आगे रेफर कर दिया जाता है।
5: जी, तो मैम, जैसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ज्यादा अनीमिया पाया जाता है, तो क्या इनके बचाव के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता हमें सरकार से मिलती है? कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनके होता है?
6: जी हाँ, बिल्कुल होता है। ICDS और जो सरकारी मुहिम है पोषण अभियान के तहत, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण, जिसे हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी कहते हैं, उसके साथ साथ मुफ्त आयरन फोलिक एसिड की गोलियां, स्वास्थ्य की जांच और सलाह दी जाती है।
7: मैम, एक जरूरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या जो लोग अधिक मोटापे की समस्या से जूझते हैं, उन्हें भी अनीमिया हो सकता है या उन्हें अनीमिया होने के अधिक चांसेस हैं?
6: थोड़ा सा ये सुनने में अजीब लगता है कि, लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि जो मोटापा है वो अनीमिया से बचाव नहीं करता, बल्कि सूजन की वजह से शरीर में आयरन का उपयोग कम हो जाता है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि मोटे लोगों को भी अनीमिया हो सकता है।
5: तो आजकल की जो बहुत आदतें हैं जंक फूड खाने की लोगों में, तो क्या आज की युवाओं में जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, उनको अनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कैसे बढ़ रही हैं उनमें?
6: आजकल की पीढ़ी के लिए, खास करके युवा की पीढ़ी और जो बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी बात है जो आपने पते की बात पूछी है। जंक फूड में कैलोरी तो बहुत होती है, लेकिन ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन नहीं होते, इसलिए आयरन युक्त और पौष्टिक भोजन की जगह अगर जंक फूड लिया जाए तो खून की कमी का खतरा यानी अनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जंक फूड होता है, जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल्स, मोमोज, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनमें अक्सर मीठा या नमक अधिक मात्रा में होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य नहीं है और वो हमारे स्वास्थ्य को और आगे खराब करता है अनीमिया के साथ साथ। तो इसलिए जंक फूड को, ये तो मेरा कहना उचित नहीं होगा कि बिल्कुल ना लें, लेकिन घर पे बने खाने का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें, इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा।
5: एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए, या मतलब अगर हमें सिम्टम्स लग रहे हैं तो हम खुद से भी ले सकते हैं, और कितनी गोलियां लेनी चाहिए अगर हम लेते हैं तो दिन में?
6: आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का सेवन समुदाय स्तर पर ANM द्वारा वितरित किया जाता है इनको, और जो कि हीमोग्लोबिन की जांच के बाद ही किया जाता है। जो हमारा अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है उसमें गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको 6 महीने गर्भावस्था के दौरान और पहले 6 महीने बच्चे के जन्म के बाद जब वो स्तनपान कराती हैं, 180 और 180 दोनों को मिला के 360 गोलियों का सेवन आयरन फॉलिक एसिड का कराया जाता है। इसके अलावा किशोरियों को और जो और ऐसी महिलाएं हैं जो कि बच्चा या प्रजनन वर्ग में जो आती हैं, जो जो भी माँ बनने की आशंका हो सकती है, उनको सप्ताह में एक बार आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। लेकिन ये एक ज़रूरी बात।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।

क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। ये क्या हो रहा है?
6: हो रहा है वही जो रोज होता है।
5: जी हाँ दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है
6: RJ अंशिका।
5: आप सभी को 15 अगस्त की यानी इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को बहुत बहुत बहुत बहुत ज्यादा वाली शुभकामनाएं।
6: बिल्कुल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को हम दोनों की तरफ से।
5: जी हाँ, जैसा कि अभी आप एक सॉन्ग सुन रहे थे ना, कब बहुत ही प्यारा सा था। तो भाई, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि आज हमारे गोंडा सिटी में भी कल से ही तैयारियां शुरू हो गई थी एंड कल से ही पूरा हमारा गोंडा सिटी जगमग जगमग जगमग कर रहा था। तो भाई, एक दिन तो होता है ना जिसमें हम अपने अपने आप को, अपने उबलते हुए खून को और उबाल सकते हैं और अपने रग रग में बसे खून को ये एक बार मैसेज भेज सकते हैं कि यस, हम लोग हिंदुस्तानी हैं।
6: बिल्कुल, हमारा देश, हमारी धरती माँ हमारे लिए क्या मायने रखती है ये तो वैसे हम रोज महसूस करते हैं, पर आज का दिन कुछ खास है, कुछ खास तौर से हम महसूस करते हैं। तो चलिए कुछ उन्हें याद करते हैं जिनकी कुर्बानियों का सिला है कि आज हम आज़ाद भारत में सांस लेते हैं। हमारे वो क्रांतिकारी जिन्होंने कि अपना लहू बहाकर देश को आज़ादी दिलाई, वो स्तंभ जिनके कंधों पर आज देश आज़ाद खड़ा है, उन्हें याद करते हैं। कुछ उनकी शहादत को और कुछ उनकी वीर बातों को भी याद करेंगे। तो आज बहुत ही प्यारा दिन है, तो इस बहुत ही प्यारे से दिन को सेलिब्रेट करेंगे हम।
5: उसके पहले आइए, आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है
4: सुन सहेली
5: विद RJ समता एंड RJ
6: अंशिका।
5: जी हाँ, और इस प्यारे से आज के दिन को हम सेलिब्रेट पहले जरूर करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए दोपहर में विश कर देते हैं एक साथी के फ्रेम में
6: शुभ दोपहर।
5: तो दोस्तों, आज चार लाइन की कविता मैं बोलूंगी एंड उसके बाद फिर आपको सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं देशभक्ति की चार लाइनें। मैंने सोच के तो मैं नहीं आई थी, लेकिन फिर से दिमाग में आ गई तो मैंने सोचा चलो बताई देते हैं।
6: जी मैम।
5: मिट्टी की खुशबू में बसा है मेरा हिंदुस्तान, मिट्टी की खुशबू में बसा है मेरा हिंदुस्तान, तिरंगे की शान पर कुर्बान है मेरी जान। सरहद पर जो वीर हंसकर जान लुटाते हैं, सरहद पर जो वीर हंसकर जान लुटाते हैं, उनके कारण हम आजादी के गीत गाते हैं। न पूछो जमाने से कि हमारी पहचान क्या है, हम हिंदुस्तानी हैं, यही हमारी शान क्या है। वाह। यहाँ जहाँ तिरंगा लहराए वहीं दिल झुक जाता है, जहाँ तिरंगा लहराए वहीं दिल झुक जाता है, भारत माँ का नाम आते ही सेना गर्व से भर जाता है।
6: वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी लाइन्स मैम, बिल्कुल दिल से निकली हुई और बिल्कुल दिल को छूती। तो आइए अब पढ़ते हैं और कुछ लाइनें मैं भी पढ़ना चाहूंगी।
5: जी जी।
6: तो आज याद करते हैं उन्हें जिनकी शहादत बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। बिस्मिल और अशफाक की यारी जिसने बदली फिजा हमारी, ककोरी के उन वीरों ने सत्ता की नींव हिला डाली, फांसी के फंदे को चूमा गाते गाते वतन का गान, मजहब से ऊपर उठकर दे गए देश को अपनी जान। इनकलाब का नारा देकर जागा सोया हिंदुस्तान। भगत सिंह की गर्जना थर थर कांपा ब्रिटिश महान। असेंबली में बम धमाका बहरों को आवाज सुनाई। हंसते हंसते देश की खातिर अपनी युवा उम्र गवाई। सुखदेव और राजगुरु संग थे, तीनों की वो अटूट कहानी। लाहौर का वो जेल गवाह है, धन्य हुई उनकी जवानी। 23 मार्च के उस काले दिन इतिहास ने नया रुख मोड़ा था। तीनों शेरों ने आजादी का एक नया सवेरा जोड़ा था। इन पांचों के बलिदानों से महकी अपनी भारत माँ। इन पांचों के बलिदानों से महकी अपनी भारत माँ। आज शीश झुकाकर पूरा देश इन्हें नमन कर जाता है। आज शीश झुकाकर पूरा देश इन्हें नमन कर जाता है। नसों में दौड़ता रक्त हमारा इनका ही कर्जदार रहेगा। नसों में दौड़ता रक्त हमारा इनका ही कर्जदार रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा नाम इनका हमेशा अमर रहेगा।
5: मतलब आज के दिन अगर ये पोयम और ये ऐसी कविताएं सुनने को मिल जाए तो दिल बहुत वाकई में एक गर्व से भर हो जाता है। ये आप सभी को पता है क्योंकि कहा जाता है कि जो भी सोशल मीडिया के साधन हैं, जैसे टीवी है, एफएम है, मोबाइल में इंस्टा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जितने भी हमारे सोशल मीडिया को और आगे बढ़ाने वाले स्रोत हैं, आज के दिन जैसे ना पूरी कायनात जो होती है ना, वो सब कुछ जैसे मिलकर के एक मैसेज देती है कि आज के दिन जो है हम स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहेंगे। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम भी हम शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में हम आपको कुछ अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनाएंगे जो कि आज स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित रहेगा। और उसके बाद आपको सभी को पता है कि गेम सेक्शन में तो आपके पसंदीदा गानों को हम चलाएंगे ही, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं
6: आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। कुछ इसी से रिलेटेड है कि अभी आपने सुना कि किस तरीके से सिर्फ चंद उन क्रांतिकारियों ने जिनकी कोई उम्र नहीं थी, भगत सिंह ने जब शहादत दी तो उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 23 साल की थी। तो जहां सब कुछ था, मतलब जहां पूरी लाइफ अपनी जी सकते थे खुशी के साथ, अगर वो इस स्वतंत्रता संग्राम में नहीं होते तो उनके मम्मी पापा उनकी शादी कराना चाहते थे, मतलब एक लाइफ थी। लेकिन उन्होंने क्या चुना? अपनी भारत माँ को चुना। तो ठीक उसी तरीके से आज का मैसेज, आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ यही है कि जहाँ भी चुने और जिसे भी चुने, हमेशा ईमानदारी के साथ चुने। क्योंकि अगर ईमानदार नहीं है इंसान तो फिर कुछ भी नहीं है। सब कुछ चला जाता है, नाम मिट जाता है, लेकिन आपकी ईमानदारी कभी नहीं मिटती है। वो आपका दुश्मन भी होगा ना इंसान, तो वो ये कहेगा अरे यार उनके बारे में बात कर रहे हो, नहीं नहीं वो ऐसे नहीं थे, वो तो बहुत अच्छी और बहुत बहुत नेक दिल, बहुत ईमानदार।
5: और ईमानदारी से कमाया गया जो पैसा होता है ना, वो मेरे ख्याल से कहीं वो वेस्ट भी नहीं होता है।
6: बिल्कुल।
5: और ये भी देखा गया है कि जो बेईमानी से कमाया गया धन होता है ना, तो वो बेईमानी में ही चला जाता है।
6: बिल्कुल सही कहते हैं ना कि अगर जैसे कहा जाता है कि 10 रुपए भी अगर आप किसी जरूरतमंद को नहीं देंगे तो उसके बाद आप डॉक्टर को खुशी से देंगे।
5: हाँ।
6: तो ठीक उसी तरीके से हमेशा ईमानदारी से कमाएं, क्योंकि ईमानदारी का जो नूर चेहरे पे होता है ना, वो देखने वाले की आंखों में चुभता है। जो आपको पसंद नहीं करते हैं उनकी आंखों में वो नूर चुभेगा और वही आपकी असली जीत है। तो हमेशा खुश रहें और अपनी लॉयल्टी को बनाए रखें। इसी प्यारे से मैसेज के साथ चलिए एक सॉन्ग और सुनते हैं। आज इस देश के नाम, उन सभी सैनिकों के नाम जो कि हमारी धरती माँ की रक्षा करते हैं।
5: चलिए तो यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम फिर से आएंगे आपसे रूबरू होने के लिए, क्योंकि आज सैटरडे, आप सभी को पता है सैटरडे मतलब फंडे। तो बस हम यूं गए

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेख बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 88400918123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260971 9761 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता और साथ में है RJ
4: अंशिका।
3: जी हाँ, तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं आज के OTT सीरियल्स को, क्योंकि 2:00 हो रहा है 7 मिनट, तो फटाफट हम अपने प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज गेम है और गेम के सेक्शन में आप सभी को पता है कि हम आज स्वतंत्रता दिवस के दिन में आप सभी के भरपूर सॉन्ग्स को भी हम प्ले करने वाले हैं।
4: बिल्कुल, तो चलिए बढ़ते हैं सीरीज की तरफ, लेकिन आज मैं कुछ नया नहीं लाई, आज कुछ हम पुरानी यादों को याद करें।
3: अच्छा, पुरानी यादों को।
4: बिल्कुल, क्योंकि आज है इंडिपेंडेंस डे, तो आज याद उनकी बनती है कि जिन्होंने दिल पर राज किया। जो मूवीज और सीरीज रिलीज हुई तो मतलब ऐसा था, लग रहा था कि बिल्कुल। और सबसे पहले बात करते हैं शेरशाह की। शेरशाह ऐसी मूवी,
3: शेरशाह मूवी, हाँ,
4: जिसने हर दिल पे राज किया। आप सभी जानते हैं कि ये फिल्म परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ पे रिलेटेड थी। 1999 में करगिल युद्ध में उनके सर्वस्व बलिदान को दिखाया गया इसमें, और बहुत ही खूबसूरती से कि किस तरीके से वो जाते हैं, फिर वो वादा करते हैं अपनी फैमिली से कि नहीं मैं लौट के वापस आऊँगा। और उनकी एक लाइन बहुत अच्छी उस समय चली थी मैम, और उस पर मीम्स भी बहुत सारी बनी थी कि या तो तिरंगा लहरा कर आऊँगा और या तो तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, पर आऊँगा ज़रूर। ये उन्होंने जाते जाते, उनकी एक दोस्त ने उनसे कहा कि अभी तुम क्यों जा रहे हो, और उनकी पोस्टिंग होने में 4 दिन बाकी थे, लेकिन वो 4 दिन पहले ही चले गए, उन्होंने अपनी छुट्टी एक्सटेंड नहीं की। और जब वो जा रहे थे तो उनके दोस्त ने उनसे कहा कि जा रहे हो और वापस कब आओगे, तो उन्होंने ये लाइन कही थी कि या तो तिरंगा लहरा कर आऊँगा और या तो तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, पर आऊँगा ज़रूर। और हुआ वही, जब वो गए तो वहाँ पर उनकी शहादत हुई और फिर वो वापस आए, लेकिन कहते हैं

0: से कि तुम अपने आप को बचाओ। उन्होंने भगत सिंह ने अपने आप को अरेस्ट करवाया था, उन्हें अरेस्ट किया नहीं गया था। अगर वो चाहते तो उनको कभी भी अंग्रेज अरेस्ट नहीं कर पाते, उनमें इतना पावर ही नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुद अपनी गिरफ्तारी दूंगा और इन देश के युवाओं के सामने एक एग्जाम्पल सेट करूंगा कि अगर आप चाहें तो आप सब कुछ बलिदान करके अपना एक ऐसा नाम बना सकते हैं कि लोग अंतकाल तक, जब तक समय चलेगा तब तक आपका नाम लेते रहेंगे। और आज भी कुछ वैसा ही है कि भगत सिंह का नाम हम हमेशा याद करते हैं। और दूसरी आती है, बहुत ही अच्छी थी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। अब सभी
1: मैंने नहीं देखी, मैंने वो तो देखी है शेरशाह, पर मैंने उरी नहीं देखी।
0: हाँ, विक्की कौशल और यामी गौतम की ये फिल्म थी मैम, और इसमें ये दिखाया गया था कि सेना ने किस तरीके से स्ट्राइक की और किस तरीके से मतलब जोश था उनके अंदर। हाँ। लेकिन बहुत सारी ऐसे हालातों का सामना भी करना पड़ा जो बहुत टफ थे। हम बहुत इजी समझते हैं कि अरे हमारे सैनिक बॉर्डर पे रहते हैं ना, हमारी हिफाजत करते हैं, लेकिन बॉर्डर की सिचुएशन क्या होती है, कैसे वहाँ पे रहते हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब इसमें बहुत बेहतरी से दिखाया गया और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया
1: जी।
0: अब लास्ट में आती है उनकी कहानी। कहते हैं ना कि नाम बस नाम रह जाता है, तो कुछ वैसा ही है सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह की कहानी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो हत्याकांड में मारे गए थे, जनरल डायर ने उन्हें गोली मार दी थी, और सरदार उधम सिंह की कहानी को दिखाया गया इस सीरीज में, जिसका नाम ही था सरदार उधम सिंह। और विक्की कौशल जिन्होंने कि उनका रोल प्ले किया था, बहुत ही शानदार उनका रोल प्ले किया था। और चंद्रशेखर आज़ाद को कैसे भूल सकते हैं, उनकी लाइफ पर भी बेहद प्यारी एक मूवी बनी थी जो कि नाम था आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहे। तो बहुत ही प्यारी। इन सबको आज के दिन याद करने का और ये आपको बताने का सिर्फ इतना ही मोटिव है कि कभी नहीं भूलना चाहिए उन्हें, जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान आज़ाद है, क्योंकि वो हैं तभी कल है, और कल है तभी हम और आप भी हैं।
1: एग्जैक्टली। तो अंशिका चलते हैं एक ब्रेक की ओर, लेकिन ब्रेक के पहले आज मैं कुछ सोच के आई थी कि आज ना मैं कुछ मिमिक्रीज भी आपको करके बताऊंगी, यानी हंसी के फव्वारे। तो पहले चैट बॉक्स में आ जाइए और बताइए कि हमारे कितने लिसनर्स आ गए हैं, ताकि मैं अगर ये चुटकुले बताऊं पहुंचाऊं उन तक तो कोई हंसने वाला तो हो।
0: बिल्कुल है, हमारे पास दीपक जी आ चुके हैं जो कि हमें हथियागढ़ गोंडा से सुनते हैं, और इसी के साथ में मोहित जी जो कि हमें मालवीय नगर से सुनते हैं, लिख रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको भी। सबलू सावन जी आ गए हैं जो कि लिख रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको भी। कमल नयन जी आ गए हैं, लिख रहे हैं शुभ दोपहरिया मैम।
1: शुभ दोपहरिया एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस ऑल ऑफ यू, जितने भी लिसनर्स हैं। तो चलिए अब हो जाइए हंसने के लिए तैयार। और सबसे पहले तो मैं अंशिका के माइंड का जो परीक्षण करेंगे कि इनको समझ में आता है ये हंसी के फव्वारे की नहीं।
0: Okay.
1: तो मैं दो सुनाऊंगी अभी और दो फिर बाद में एक ब्रेक के बाद, ठीक है
0: जी मैम।
1: तो पहला है कि पागल ने एक पेपर को बार बार देख रहा था। एक पागल था, एक पागल प्रेमी समझ लो, ठीक है। तो वो एक पेपर को बार बार देख रहा था। तो पहला दूसरा कह रहा है कि ये क्या है, ये क्या है, मतलब उसने बोला ये क्या है
0: पेपर को,
1: पेपर को दूसरे वाले ने बोला ये क्या है।
0: Okay.
1: तो पहला वाला बोल रहा है कि ये लव लेटर है। तो दूसरा बोला कि मगर ये तो खाली है। तो पहला कह रहा है कि आजकल बोलचाल बंद है इसलिए खाली। यानी कुछ लिखाई नहीं हुआ था इसीलिए उसने कहा कि
0: आजकल बोलचाल
1: बंद है। एंड दूसरा है कि एक पत्नी कहती है सुनो मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या हूँ, मतलब पत्नी पूछती है पति से कि मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या हूँ। पति भी बहुत मूड में था और अच्छे से मूड में बोल रहा है कि वाईफाई जैसी हो तुम।
0: वाईफाई
1: होता है ना
0: जी जी,
1: वाईफाई जैसी हो तुम। तो पत्नी मुस्कुराकर बोली मतलब। तो पति ने कहा कि नहीं, उसने पूछा मतलब हर समय तुम्हारे दिल से जुड़ी रहती हूँ, मतलब बहुत ही एट के जैसे बोलते हैं ना
0: जी जी,
1: कि
0: जी।
1: मतलब जैसे वाईफाई होती है तो मतलब हर पल तुम्हारे दिल से जुड़ी रहती हूँ। तो पति ने कहा नहीं, जैसे ही तुम दूर जाती हो मेरी सेटिंग टेंशन वाला खत्म हो जाती है।
0: मतलब अगर
1: मेरी
0: ऐसा
1: सेटिंग खत्म, मेरी टेंशन खत्म,
0: अगर ऐसा रियल में बोल दिया जाए
1: कितना अच्छा हो जाए ना।
0: तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस पुरुष के साथ क्या होगा।
1: पुरुष के साथ वही होगा जो वो पत्नी चाहेगी उसकी। फिलहाल मेरे पास और भी बहुत सारे आज चुटकुले हैं तो वो बताएंगे, क्योंकि आज है इंडिपेंडेंस डे और हंसी खुशी का दिन, तो हम जरूर उस पर बात करेंगे। लेकिन हम इस ब्रेक के बाद आएंगे तो सीधे बात करेंगे कि आज है हरियाली तीज, तो भाई हरियाणा।

0: हम कुछ लेकर के आए हैं आपके लिए, बहुत प्यार भरा एक पैगाम जो कि भोले बाबा और पार्वती जी के ऊपर है, तो उसको भी सुनना है अगर आपको, तो आप सुनते रहे हमारा, हम दोनों का प्रोग्राम एक साथ एक फ्रेम में जो कि हम लेके आते हैं, जिसका नाम है
1: सुन सहेली।
0: स्टे ट्यून्ड।

0: डाउनलोड फ्रॉम apnafm.com।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: डिलीशियस
4: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहाँ आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
4: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
4: हरियाली तीज के बारे में जानने से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों का गेम जो है वो स्टार्ट हम लोगों ने सोच रहे हैं कि कर दें अंशु, और पूरे के पूरे अभी आधे घंटे हैं, तो तब तक हमें लिसनर्स के सॉन्ग भी आते रहेंगे और हम चैट बॉक्स में देने जा रहे हैं एक वर्ड। तो आज कुछ वर्ड्स से हम नहीं खेलेंगे, आज हम आपको एक पूरा पूरा एक जिसे कहते हैं शब्द देंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहला हम आपको शब्द देने जा रहे हैं वो है तिरंगा।
5: तिरंगा,
4: तो पहला वर्ड आप सभी के लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है भाई, आज सभी को पता है, तो पहला वर्ड इज तिरंगा, और तिरंगा से गाने बहुत सारे। आइए अब हम जान लेते हैं हरियाली तीज यानी सावन की हरियाली तीज के बारे में।
5: सावन की हरियाली तीज को जरूर बताते हैं। तो सावन की हरियाली तीज का जो महत्व है वो इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री, जो कि आप सभी जानते हैं माता पार्वती, ने हमारे भोले बाबा यानी कि शिव जी को प्रसन्न किया। ऐसा माना जाता है कि अपने कठोर तपोबल से
4: पार्वती माँ ने शिव भगवान को प्रसन्न किया था।
5: उल्टा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, उल्टी चीजें सीधी भी हो सकती है। तो उन्होंने प्रसन्न किया था, और साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि भगवान शिव जो थे वो बहुत ही उग्र रूप के थे। ऐसा मानते हैं कि वो जितनी जल्दी प्रसन्न होते थे उतनी ही जल्दी गुस्सा भी हो जाते थे। तो माता पार्वती को काफी समय लगा उन्हें प्रसन्न करने में, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उन्हें प्रसन्न कर लिया। और इसी के साथ में एक कहानी है जो कि इससे जुड़ी हुई है, लेकिन उससे पहले हम बताते हैं कि ये मनाया क्यों जाता है। एक कारण तो अभी आपने जान लिया कि माता पार्वती ने हमारे भोले बाबा को प्रसन्न किया, इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। दूसरा है कि इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन ऐसा मानते हैं कि जो भी आप चाहते हैं अपने सुहाग को लेकर के, अपने प्यार को, अपने विश्वास को लेकर के, वो आपको ज़रूर मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भोले बाबा की आराधना करने से आपके, जैसे कहते नहीं जाओ तुम्हारा सुहाग भाग्य अमर रहे, तो वैसा ही होता है कि आज के दिन जरूर मिलता है। और हमेशा सुहागन स्त्रियां इसीलिए आज के दिन व्रत रखती हैं। और आप सभी ने देखा होगा कि सावन में हरी चूड़ी जरूर पहनी जाती है, तो आज ही के दिन वो हरी चूड़ियां पहनी जाती हैं, क्योंकि हरियाली तीज में हरी चूड़ी का बहुत महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक तरीके से प्रकृति का भी उत्सव है, क्योंकि आप देखते हैं कि सावन के महीने में जो हमारी प्रकृति है वो पूरी तरीके से हर तरफ से हरियाली हरियाली और हरियाली होती है, इसलिए आज के दिन ये माना जाता है। और साथ ही साथ में अगर आप इसे मनाना चाहते हैं तो आज के दिन सारी जो सुहाग की चीजें होती है, जैसे मेहंदी हो गया, सिंदूर, चूड़ी, साड़ी और बाकी सारी चीजें शिव और माता पार्वती को एक साथ अर्पित की जाती है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि शिव और पार्वती का अर्धनारीश्वर,
6: हाँ।
5: तो वही माना जाता है कि अगर आधा हिस्सा भगवान शिव है तो आधा हिस्सा माता पार्वती है, और इसीलिए अगर उन दोनों को प्रसन्न करना है आपको तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको एक को नहीं बल्कि दोनों को प्रसन्न करना होगा। और दोनों को जब हम प्रसन्न करेंगे तभी जा करके हमारा काम कहीं ना कहीं होगा। हमेशा सब लोग समझते हैं कि बस माता पार्वती पे जो है वो कर दिया तो हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप दोनों को प्रसन्न करेंगे तभी आपका काम होगा। तो हमेशा जब भी माता पार्वती और भगवान शिव को कुछ भी चढ़ाना चाहिए तो उन्हें एक साथ ही चढ़ाना चाहिए।
6: अच्छा, मेरी आदत है अंशिका कि मैं शाम को जब जल चढ़ाती हूँ तो मैं वही एक चीज़ से अच्छा हुआ कि मुझे ये चीज़ याद आ गई और मुझे ये जानना भी था कि जैसे मैंने बोला कि जल चढ़ाया तो वहीं पर पार्वती माता की भी मूर्ति है
5: जी मैम,
6: पत्थर की बनी हुई, तो मैं थोड़ा सा पहले उन पर चढ़ाती हूँ
5: हाँ।
6: बाबा पे और फिर थोड़ा सा पार्वती माता पे, तो मैं ये जानना भी चाह रही थी कि क्या मतलब ये सही है ना कि मैंने उन पर भी जल चढ़ाया और फिर मैं भोले बाबा पे चढ़ा दी
5: जी मैम।
6: जैसे कि दोनों, जैसे अभी आपने कहा ना कि दोनों एक दूसरे के पूरक, और वाकई में उनके तो प्रेम कहानी की क्या ही बस मिसाल है
5: बिल्कुल मिसाल है, और वैसी कोई मिसाल नहीं है जैसी हमारी माता पार्वती और भगवान शिव। क्योंकि आपने देखा ना कि जैसे कहते नहीं है कि बिल्कुल दो अलग अलग संस्कृतियों का, अलग अलग सभ्यताओं का एक बहुत ही प्यारा सा,
6: दो अलग अलग व्यवहारों का
5: हाँ
6: मेल है। मतलब वो कहा, अभी आपने कहा कि इतने उग्रवादी मतलब उग्र क्या कहते हैं स्वभाव, उसके स्वभाव के, लेकिन भोले बाबा का एक चीज मैं अभी अच्छा मैं खुद देख के आई हूँ उज्जैन से
5: जी।
6: मैं पता नहीं क्यों मेरे मन में ये बात आई तो मैंने कि उनको कहा जाता था कि उनका जो मतलब स्वभाव था वो दो तरीके से था, मतलब दो तरीके से है कि एक उग्र है कि मतलब वो जल्दी से क्रोधित हो जाते हाँ। हैं, और दूसरा उनका प्यार वाला। लेकिन जो रूप मैं देख के आई हूँ अंशिका, मतलब ये उग्र क्रोध कहीं रत्ती भर नहीं दिखाया मुझे। मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कुछ नहीं है, वो सिर्फ प्यार के देवता है, बस मैं ये जानती हूँ, मतलब वो देने के योग, मतलब देने के जिसे कहते हैं ना देवता होते हैं
5: जी,
6: आप ले लो उससे, ले लो उसे। उनकी आंखें जो बता रही थी कि मतलब क्या चाहिए तुम्हें बेटा और बेटी, तो इतनी दूर चल के आई है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम मांगो तो। लेकिन काफी भक्तों के तरीके से मेरी भी आंखों से आंसू भरे थे, और मैं तो सिर्फ उनको देखते ही रह गई, मैं कुछ बोल नहीं पाई, मैं कुछ मांग नहीं पाई। तो वाकई में मैं जब से आई हूँ उज्जैन से ना, मतलब जैसे कहता है ना कि हम किसी के हो के आते हैं, तो एग्जैक्टली मैं किसी की हो के आई
5: बिल्कुल। और भाई जब हम कहते हैं कि हमारे भोले बाबा शिव जी हमारे पिता हैं, तो बेटी को कभी पिता से कुछ मांगना नहीं पड़ता।
6: और पता है वहाँ जा करके हाँ एग्जैक्टली मतलब ये एक रील में भी आया था कि वो पिता ही क्या जो बेटी को उससे मांगना
5: हाँ।
6: वो पिता ही क्या, एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल 100% है। लेकिन आज मैं आपको शिव पार्वती की पार्वती माँ पर एक प्यारी सी चार लाइन की मैं चीज आपको सुनाना चाहती
5: हूँ।
6: वो ये है कि शिव में शक्ति है, शक्ति में शिव का संसार है, इन दोनों के प्रेम में बसा ये सारा संसार है, पार्वती माँ का समर्पण भोले का अटूट विश्वास, पावन प्रेम से रोशन हर एक एहसास, जहाँ शिव है वहाँ पार्वती का साथ है, जहाँ प्रेम में ही जीवन की सच्ची बात है, दो शरीर होकर भी एक आत्मा का रूप है, शिव पार्वती प्रेम की सबसे सुंदर।
5: जी सबलू जी, आजकल अंशिका जी समझदार हो गई हैं, भोले हैं तो जल चढ़ाकर कुमारी लड़की ही जल चढ़ाया करते हैं, क्यों भोलेनाथ से वरदान क्या मांग। अच्छा तो आपसे किसने कहा सबलू जी कि सिर्फ कुमारी लड़कियां ही भोले बाबा को जल चढ़ाती हैं और उनसे मांगती हैं, ये किसने कहा? फिर मिल भी जाता है,
6: कुआरियों की सुनते हैं तो शादीशुदा की,
5: ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं है, हमारे जो पिताश्री हैं वो सबकी सुनते हैं और सबकी पूरी भी करते हैं। तो अगर आप कुंवारे हैं तो आपको कोई मिल जाएगा, अगर पहले से कोई मिला हुआ है तो उसके साथ सुखपूर्वक आपकी बीतेगी, सिंपल है। चलिए मैम गेम स्टार्ट हो गया है और पहला सॉन्ग भी आ गया है,
6: तो पहला गाना भी आ गया है, लेकिन उसके पहले मैंने कहा था कि मैं एक चुटकुला और सुनाऊंगी, तो फिर से चलते हैं चुटकुले की ओर।
5: एक मिनट, तो चलिए बढ़ते हैं हंसी की एक प्यारी सी फुहार की तरफ और करते हैं कुछ हंसी की बात आरजे संता के साथ। आज ये रह गया था,
6: आज सुबह शायरी का टाइम रह गया था ना, तो जैसे नहीं कुछ खाने में एक सब्जी रह जाती है तो मम्मी रख दो बाद में खा लेंगे,
5: तो ये हमने बाद वाला इसको कवर किया
6: है ना, अच्छा लगा, चलो
5: थैंक यू। मुकेम्बो,
6: मैंने चार लाइन की इतनी प्यारी सी पोयम अभी शिव पार्वती माँ पे पढ़ी,
5: उन्होंने ऐसी लाइन लिखी ना कि वो पूरा ध्यान उधर डाइवर्ट कर दिया।
6: सुन लीजिए उसके बाद,
5: बहुत ही प्यारी।
6: और आइकॉन हमें भेजिए, हंसी वाले आइकॉन सब भेजिए। एक पंडित होता है, वो कहता है तुम्हारी कुंडली में धनी धन है, पंडित कहता है कि तुम्हारी कुंडली में धनी धन लिखा है। तो अब क्योंकि एक आदमी उसके पास जाता है हाथ दिखाने के लिए, तो वो कहता है कि वो तो सब ठीक है पंडित जी, लेकिन ये बताइए कि इस धन को बैंक में कैसे ट्रांसफर करें। तुम्हारा माला खाली है अभी, सब हो गया। नेक्स्ट, भोलू एक है, एक इंसान है, वो ये कह रहा है कि यह ऑक्सफोर्ड क्या होता है। भोलू कह रहा है ये तो सिंपल है, ऑक्स का मतलब होता है बैल, फोर्ड का मतलब होता है गाड़ी, यानी ऑक्सफोर्ड का मतलब होता है बैल गाड़ी को कहते हैं। यहाँ भी हमारे कुछ ऐसे गोलू गोलू बैठे रहते हैं जिसको ऑक्सफोर्ड कहते हैं उसको बैल गाड़ी ही समझती है।
5: नहीं ऐसा
6: तो
5: नहीं,
6: आइए सुनते हैं
5: ये वाला
6: पहला गाना किसने भेजा है।
5: सबसे पहला गाना भेजा है प्रीति शुक्ला जी ने, विजय विश्व तिरंगा प्यारा।
6: सबसे पहला गाना भेजा है सबलू जी ने, सारे जहां से अच्छा तिरंगा। अच्छा तिरंगा नहीं था, ओके तिरंगा वर्ड नहीं था।
5: यस,
6: तो सबसे पहला गाना प्रीति जी ने भेजा जी। ओके, तो आइए सुनते हैं सब प्यारे से गाने को, उसके बाद में आऊंगी आपको राशिफल यानी आज का लव।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी करें 7234020202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है
5: RJ अंशिका।
4: तो चलिए फटाफट लव राशि फल शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले एक वर्ड दे देते हैं पहले चैट बॉक्स में, ताकि तब तक आप अपना सॉन्ग लिख करके जल्दी से भेजें। तो नेक्स्ट वर्ड
5: हम आपको देने जा रहे हैं, जो कि हमारा वर्ड होने वाला है तो आप चैट बॉक्स में वेट करें कि आपका नेक्स्ट वर्ड क्या होने वाला है।
4: नेक्स्ट वर्ड मैं बताऊं?
5: बताइए।
4: चोला। नेक्स्ट वर्ड है चोला, तो आप फटाफट लिखें नेक्स्ट वर्ड चोला। और चोले से बहुत ही बढ़िया से स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित बहुत सारे गाने। तो आइए लव राशि फल में सबसे पहला आता है मेष राशि वालों के लिए। प्रेम में उत्साह रहेगा, पुराने मतभेद बातचीत से सुलझ सकते हैं आज। एंड सिंगल लोगों की किसी
5: मुझे कुछ और सुनाई दिया था,
4: सुलग सकते हैं आज,
5: वही सुनाई दिया,
4: सुलग नहीं था सुलझ। सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से बात आगे बढ़ सकती है। वृषभ राशि के लिए है कि रिश्ते में भविष्य और जिम्मेदारियों को लेकर बातचीत हो सकती है, साथी के साथ बात धैर्य से करें और सुने। मिथुन राशि वालों के लिए है कि आज खुलकर अपनी फीलिंग्स बताना अच्छा रहेगा, छोटी सी बातचीत भी रिश्ते में नई गर्माहट ला सकती है। कर्क राशि वालों के लिए है कि भावनाएं थोड़ी गहरी रहेंगी, साथी से प्यार और जो आप में एक उम्मीद होती है उसको आप बना करके रखें, मन की बात छिपाने के बजाय उनसे कहें। सिंह राशि वालों के लिए है लव आज राशि फल ये कि आकर्षण और कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, प्रेम संबंधों में कोई नया चैप्टर शुरू होने का संकेत है, अपनी बात पूरे आत्मविश्वास से रखें। कन्या राशि वालों के लिए है कि आज रिश्ते में स्नेह और विश्वास मजबूत होगा, प्रिय के साथ यानी प्रिया यानी आपका जो कि कोई खास है उनके साथ समय बिताने से इमोशनल बॉन्डिंग आज बढ़ेगी। तुला राशि वालों के लिए है कि रिश्तों में मधुरता बनाए रखने का दिन है, जल्दबाजी में कोई फैसला न ले और साथी की भावनाओं को समझें। वृश्चिक राशि वालों के लिए है आज का दिन कि दिल की बात कहने की जरूरत महसूस होगी आज, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो सीधे शांत तरीके से बात करना बेहतर होगा आज। धनु राशि वालों के लिए है कि आज रोमांस एंड एक्सपेरिमेंट दोनों रहेंगे रहने वाला है, लेकिन जल्दबाजी से बचें, किसी और एक नए व्यक्ति से आकर्षण आज आपका हो सकता है। मकर राशि वालों के लिए है कि साथी की खुशियों में शामिल होने से रिश्ता और मजबूत होगा, मन की बात प्यार और विनम्रता से कहें। कुंभ राशि वालों के लिए है आज का दिन, देखते हैं क्या? कि आज भावात्मक संवाद और रिश्तों में सहजता बनी रहेगी, अगर किसी खास व्यक्ति से दूरी है तो शांत बातचीत स्थिति बेहतर कर सकती है। अपनी बाउंड्रीज का भी ध्यान रखें, ज्यादा ना बात करें, ज्यादा उल्टा सीधा ना बोले, मतलब
5: बाउंड्रीज भी ध्यान रखें।
4: हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट है आज मीन राशि वालों के लिए कि आज मीनिंगफुल मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हो को प्राथमिकता आप दे सकते हैं। भावनात्मक रूप से किसी के करीब आने का अवसर आज आपको मिल सकता है, लेकिन निर्णय दिल और दिमाग दोनों से लें।
5: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी सभी के राशिफल, लेकिन कुंभ राशि ज्यादा अच्छी था।
4: है भी, बड़ा अच्छे से दिया भी गया है। खैर, तो चलें नेक्स्ट सॉन्ग सुन लेते हैं।
5: जी मैम, नेक्स्ट सॉन्ग सभी का है, मतलब सबलू जी ने भी यही गाना डिमांड किया हुआ है, यही गाना कमल नयन जी का भी है और यही आशु जी का भी।
4: मेरा रंग दे बसंती चोला।
5: जी मैम,
4: यस एग्जैक्टली, मैंने यही सोच के ही दिया था। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को एंड नेक्स्ट वर्ड चैट बॉक्स में।
6: मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग

प्यारे गाने हैं कि मन तो हम लोग उसी में बिल्कुल खो गए। तो आइए चलते हैं आज के प्रोग्राम के बिल्कुल एंड की ओर और हमें दे यानी कि मुझे दे इजाजत, अंशिका मिलेंगी अभी आपसे कॉलर ट्यून गोंडा में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9281976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: बल्ली के थे
4: ओ देश मेरे।

0: भूल से बढ़कर। और इससे पहले कि मैं आप सभी का स्वागत करूं और आप सभी से कहूं कि आप सभी का क्वालिटी उन गोना में बहुत बहुत स्वागत है, उससे पहले आज करते हैं शुरुआत कुछ प्यारी लाइंस के साथ और उसी के साथ हम आपका स्वागत भी करेंगे। तो आज की जो लाइंस है ना वो कुछ स्वतंत्रता की याद दिलाती हैं, क्योंकि आज है इंडिपेंडेंस डे। तो आप सभी को सबसे पहले विश योर वेरी वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और कुछ लाइंस तो पेश करना चाहती हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच लाती है हमें हर दम, खींच लाती है हमें हर दम शहादत की उमंग, जान हथेली पर लिए हर कोई इस महफिल में है, अब ना अलह वलवे है ना अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इसी प्यारी सी लाइंस के साथ आप सभी का मोहम्मद मुसीफ जी, सबलू सावन जी और इसी के साथ उस्मान जी, आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी के अपने पसंदीदा शो क्वालिटी उन गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो बढ़ेंगे फरमाइशों की तरफ, बताएंगे कि कौन कौन सी फरमाइशें हैं जो कि आज हमारी झोली में है, सब कुछ बताएंगे। पर उससे पहले पहले आप सभी से फीडबैक ज़रूर चाहूँगी कि आप सभी को ये पोइट्री कैसी लगी। तो आइए बढ़ते हैं, उस्मान खान जी भी हैं जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून आरजे मैम, गुड आफ्टरनून आपको भी, शुभ दोपहरिया लिख रहे हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिख रहे हैं। और इसी के साथ कमल नयन जी हैं, मोहम्मद मुशीद जी हैं जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून डियर अंशिका मैम, गुड आफ्टरनून आपको भी, आप सभी को। तो आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, नहीं पहली फरमाइश की तरफ। और उससे पहले जो भी लिसनर समेत चैट बॉक्स से सुन रहे हैं, जो कि हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, जो रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। तो टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ज़्यादा तरफ, जो कि हमारी पहली फरमाइश मोहम्मद मुजीद जी की है। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर दूं। तो आइए सुनते हैं यह बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और आप सभी बने रहें क्वालिटी उन गोंडा में, क्योंकि आज होने वाली है देशभक्ति गीतों की बहार, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

बिल्कुल हमलों अवरों की खत्म कहानी मेरा रंग दो बसंती चोला, और बसंती चोला जो है वो हमेशा हमारे शहीदों के कहीं ना कहीं लहू से, उनके परिश्रम से रंगा हुआ होता है। और बिल्कुल सही कहा इस गाने में, जो कि एक लाइन थी कि जिल्लत की रोटी से कहीं ना कहीं इज्जत का जो एक कहते हैं ना कि फाका होता है, वो बहुत बेहतर होता है। हमेशा अपनी इज्जत को संभाल कर रखें और अपने देश के नाम कुर्बान होने को हमेशा तैयार रहें, उनकी शहादत को हमेशा याद रखें जो देश के नाम कुर्बान हुए। तो आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है सबिया जी की। आइए सुनते हैं सबिया जी के सॉन्ग को।

छट के नहीं आ रहा नू, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी सभी हाजी ने। अब आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है रेनू जी की। तो आइए सुनते हैं रेनू जी के सॉन्ग को, जो कि उन्हें सुनना था सॉन्ग रेशमी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, रेनू जी की नहीं, ये फरमाइश है सबलू जी की, जो कि सबलू जी को सॉन्ग सुनना था रेशमी सलवार कुर्ता जाली का। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार, तब तक के लिए सुने और इन्जॉय करें, स्टे ट्यून्ड।

बिल्कुल रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, और थोड़ी सी गलत फहमी हो गई थी जो कि ये फरमाइश थी, ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग वो था रेणु तिवारी जी का ना। अब आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है प्रीत जहां की रीत सदा, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की है सबलू जी ने। तो आइए सुनते हैं, सीधे चलते हैं सबलू जी के सॉन्ग की तरफ। आप सभी सुने, इंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग।

बिल्कुल प्रीत, जहाँ की रीत सदा गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश की थी सबलू जी ने। तो भाई अब चलते हैं चैट बॉक्स में, और मोहम्मद मुर्शीद जी लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद अंशिका मैम, यू वेलकम। और साथ में महेंद्र जी जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं लिख रहे हैं, वक्त के साथ घाव भर जाते हैं ऐसा सुना था हमने, पर कुछ अनदेखी चोटें ऐसी हैं जो कभी भरती ही नहीं। हम तो अपनी वफा और कद्र का एहसास कराते थक गए, और एक वो हैं जिनके दिल में हमारे लिए जगह बनती ही नहीं। वाह, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही प्यारी लाइंस आपने लिखी हैं। और साथ में लिखा है गुड आफ्टरनून, नमस्ते अंशिका जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को भी। और बता दूं लिसनर्स कि आज के दिन यानी कि सैटरडे के दिन हम करेंगे फ़न, और फ़न करने का तरीका ये कि हमारे जो भी कॉलर हमें कॉल करना चाहते हैं, नंबर है 6393316429, वो कॉल करें, हम लाइव उनसे जुड़ेंगे, बातें करेंगे, और साथ ही साथ में आज के दिन आपको आपकी कोई प्यारी सी दो लाइन जो कि इंडिपेंडेंस डे पे है वो हमें सुनानी है, और साथ ही साथ में अपनी फरमाइश भी बतानी है। तो हम आपको लाइव करेंगे, आपसे बातें करेंगे, और आपके लाइंस को और आपके फरमाइश को दोनों को ही सुनेंगे, और ज़रूर से उन्हें ऑन एयर करेंगे और आपसे बातें करेंगे। लेकिन उसके लिए फटाफट से फ़ोन उठाएँ, डायल करें 6393316429, और फटाफट से अपनी फरमाइश को और अपनी प्यारी प्यारी लाइंस को हम तक पहुंचाएं। तो आपकी कॉल का वेट हो रहा है यहाँ पे, फटाफट से कॉल करें। तब तक आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ जो कि है धर्मेंद्र मोहन जी की। तो आइए सुनते हैं धर्मेंद्र मोहन जी के सॉन्ग को।

0: आया है।
1: बिल्कुल 15 अगस्त आया है और खुशियां साथ लाया है बहुत ही प्यारा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी धर्मेंद्र मोहन जी ने। अब आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ जो की है उस्मान जी की। तो आइए सुनते हैं उस्मान जी के सॉन्ग को जो की है हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आप सभी बने लिए कॉलर ट्यून गोंडा प्रोग्राम में और आपकी कॉल का है हमें इंतज़ार ताकि आप कॉल करें और फटाफट से अपनी कोई दो लाइन्स हमें सुनाएं और अपनी फरमाइश बताएं। सो कॉल करने के लिए डायल करें 6393316429 और आइए सुनते हैं इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग को।

0: वतन तेरे लिए और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। लेकिन उसी के बीच में हमारे कॉलर की कॉल आ गई है, तो आइए उन्हें कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कॉल किसकी आई है। तो उन्हें हम कनेक्ट करते हैं और उनसे बातें करते हैं। हेलो, नमस्कार जी, आपका नाम? जी सबलू जी,
1: वार्निंग,
0: कैसे हैं आप?
1: फोन इज नॉट कनेक्टेड।
0: जी जी, सो आप दो लाइन सुनाना चाहेंगे? जी हेलो, जी हेलो हेलो हेलो सबलू जी, हेलो हेलो। तो हमारे साथ सबलू जी जुड़े हुए थे और उन्होंने बहुत ही प्यारी सी अभी आपको लाइन सुनाई। कुछ आई थिंक टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से फ़ोन जो है वो कट हो गई, पर कोई बात नहीं, हम फिर से उनसे कनेक्ट होना चाहेंगे और बातें करना चाहेंगे। लेकिन थैंक यू सो मच सबलू जी कि आपने हमें इतनी प्यारी प्यारी इतनी अच्छी सी लाइन सुनाई। और आप अभी सुन रहे थे उस्मान जी के सॉन्ग को, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है रमेश कुमार जी की। तो आइए सुनते हैं रमेश कुमार जी के सॉन्ग को।

देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी रामेश कुमार जी ने, जो कि हमें महाराष्ट्र से सुनते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है निब्बर जी की। तो आइए सुनते हैं निब्बर जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए सुने, एंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून्ड।

0: लिसनर्स, इस सॉन्ग को हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, तो आइए सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं और देखते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, और फिर ही हम आगे चलेंगे और आगे सॉन्ग्स को सुनेंगे। हेलो, नमस्कार जी, आपका नाम?
1: सबलू बोल रहा
0: है। जी सबलू जी, कैसे हैं आप?
1: कुछ टेक्निकल वजह से हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई।
0: जी जी जी, तो आप कुछ लाइन। जी सबलू जी,
1: जब भारत आजाद हुआ था, आजादी का राज हुआ था, वीरों ने कुर्बानी दी थी। जब भारत आजाद हुआ था, भगत सिंह ने फांसी ले ली थी, इंदिरा को जब जनाजा उठा था, इस मिट्टी की खुशबू ऐसी थी, तब खून की आंधी बहती थी, वतन की जज्बा ऐसा था जो सबसे लड़ता जा रहा था, लड़ते लड़ते जाने गई, तब भारत आजाद हुआ था।
0: वाह, बहुत ही प्यारी सी लाइन।
1: तिरंगियों ने ये वतन छोड़ा था, इस देश के रिश्तों का साथ तोड़ा था, फिर भारत दो भागों में बटा था, एक हिस्सा हिंदुस्तान था, दूसरा पाकिस्तान कहलाया था, सरहद के नाम पर रेखा खींची थी जिसे कोई पार न कर पाया, ना जाने कितनी मार रोई थी, ना जाने कितने बच्चे भूखे सोए थे, हम सब साथ रहकर एक ऐसा समय भी काटा था, वीरों ने कुर्बानी दी थी जब भारत हमारा आजाद हुआ था।
0: बहुत ही प्यारी लाइन और बहुत ही प्यारी कविता सबलू जी, और थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए और इतनी प्यारी लाइन्स हमें सुनाने के लिए।
1: जी,
0: थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ सबलू जी, जिन्होंने कि अभी बहुत ही प्यारी सी लाइन्स हमें सुनाई और हमारे साथ वो जुड़े हुए थे, तो थैंक यू सो मच अगेन। तो आइए अब बढ़ते हैं हमारी फरमाइश की तरफ, जो कि सॉन्ग चल रहा था निब्बर जी का, तो आइए सुनते हैं निब्बर जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में।

0: बिल्कुल, देखो वीर जवानों, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी निब्बर जी ने, और आप सभी ने अभी अभी बहुत ही प्यारी सी लाइंस भी सुनी। तो आइए चलते हैं चैट बॉक्स में। ओके, और चैट बॉक्स में धर्मेंद्र मोहन जी, जो कि हमें आवाज़ विकास से सुनते हैं, लिख रहे हैं, गणतंत्र दिवस हम लोगों के लिए आज़ादी का दिवस नहीं है, हम लोगों को देश की उन्नति में कार्य क्षेत्र में योगदान देने के लिए और देश की प्रगति देश के प्रति कुछ कर गुजरने का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है धर्मेंद्र मोहन जी। तो आइए लिसनर्स, अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है कमल नयन जी की। तो आइए सुनते हैं कमल नयन जी के सॉन्ग को। मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार, तब तक के लिए बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून।
1: भारत माता मन मुस्काए, पवन बेनिया डोलावे, मेघ पनिया।

बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी कमल नयन जी ने। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। और हमारी जो भी लिसनर हमारे साथ चैट बॉक्स में बने हुए हैं जो कि है मिश्रा, जो कि कमल नयन जी लिख रहे हैं। थैंक यू अंशिका मैम, यू वेलकम कमल नयन जी। और इसी के साथ मिश्रा जी गोंडा लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो मैं बता दूं कि धर्मेंद्र जी, कमल जी, मिश्रा जी, महेंद्र जी, उस्मान जी, हमारे जितने भी लिसनर्स हमारे साथ चैट बॉक्स में बने हुए हैं, उन सभी से मैं कहना चाहती हूं कि अगर आप भी कुछ लाइंस इंडिपेंडेंस डे के ऊपर लिखना चाहते हैं तो ज़रूर से लिखें और उसे हम तक पहुँचाएँ। हम आपकी लाइन्स को ज़रूर पढ़ेंगे और आज के दिन इंडिपेंडेंस डे को हम साथ मिलकर मनाएंगे, क्योंकि हमारे कुछ लिसनर ऐसे भी हैं जो कि अगर आप चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं तो ज़रूर से बता सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है समरीन जी की। तो आइए सुनते हैं समरीन जी के सॉन्ग को। आप सभी बने रहें आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। और हाँ, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इंडिपेंडेंस डे को लेकर तो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। आप कॉल भी कर सकते हैं और कॉल के साथ साथ चैट बॉक्स में भी ज़रूर लिख सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 6393316429 6393316429 6393316429

0: सो हमारे कॉलर का कॉल आ गया है, तो आइए सॉन्ग को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें ऑन एयर करते हैं और उनसे बातें करते हैं। हेलो, हेलो जी, आपका नाम? जी कमल नयन जी, कैसे हैं आप? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आप कुछ सुनाना चाहते हैं कमल नयन जी? जी जी जरूर।
1: तिरंगा लहरा तो दिल में जुनून होना चाहिए, भारत माता के लिए मर मिटने का जज्बा खून में होना चाहिए, सरहद पर खड़े जवानों को सलाम हमारा है, उनका बलिदान से ही आज हिंदुस्तान हमारा है। ना पूछे इस मिट्टी की कीमत क्या है, इस मिट्टी के कणकण में भारत बसा है, देश की शान में हम अपनी जान लगा देंगे, जरूरत पड़ी तो तिरंगा की खातिर सब कुछ लुटा देंगे, दिल में हिंदुस्तान और हाथ में तिरंगा रहने दो, भारत माँ की जय का नारा हर जुबान पर रहने दो।
0: जी जी, बहुत ही प्यारी लाइंस, थैंक यू सो मच कमल नयन जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कमल नयन जी की, जिन्होंने बहुत ही प्यारी सी लाइंस अभी अभी सुनाई और डेडिकेट किया, जो कि आज हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंस डे को। तो आइए अब बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, नहीं हमारी उसी फरमाइश की तरफ जो कि चल रही थी, जो कि है बहुत ही प्यारा सा गाना लव यू जिंदगी, जो कि फरमाइश है समरीन जी की। तो आइए सुनते हैं समरीन जी के सॉन्ग को।

की ज़िंदगी जो है वो बहुत ही प्यारी है और कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। कहते हैं ना, प्रॉब्लम्स तो हैं सबके साथ, बस नज़रिए की है बात। जब आप अपना नज़रिया बदलते हैं तो आपको हर चीज़ एक नए नज़रिए के साथ दिखाई देने लगती है। तो आइए आप चलते हैं चैट बॉक्स में, और इसी के साथ मैसेज आया है के गुप्ता जी, जो कि हमें तिरंगा कॉम्प्लेक्स से सुनते हैं, लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून अंशिका जी, आपको और पूरे ज्ञानस्थली रेडियो ज्ञानस्थली परिवार को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको भी के गुप्ता जी, आपको भी और आपके परिवार को भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है राम नरेश जी की। सो राम नरेश जी का सॉन्ग भी बड़ा ही प्यारा है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चलकर। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार एक नई फरमाइश के साथ। तब तक के लिए सुने, एंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में, और कॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचाना चाहते हैं और दो लाइंस कुछ भी आज इंडिपेंडेंस डे के ऊपर सुनाना चाहते हैं। तो आपको फटाफट से फ़ोन उठाना है, डायल करना है 6393-316-429, अपनी फरमाइश को और अपनी प्यारी प्यारी लाइंस को हम तक पहुंचा देना है। तो आइए सुनते हैं राम नरेश जी के सॉन्ग को।

बिल्कुल इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी राम नरेश जी ने। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है शेरशाह मूवी से, जो कि सॉन्ग फरमाइश किया है रितेश जी ने, जो कि हमें मालवीय नगर से सुनते हैं। उनकी फरमाइश को हम प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले महेंद्र जी ने, जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं, बहुत ही प्यारी सी लाइन्स लिखी हैं, तो आइए पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा है, असवी आज़ादी की बेला में लहराएगा तिरंगा शान से, गूंज रहा जय हिंद का नारा हर भारतीय के मान से, वीरों की कुर्बानी को हम नमन करें पूरे ध्यान से, हम भी खुशियों में झूमें अपने पूरे दिलो जान से, देश हमारा सबसे प्यारा या बात कहें अभिमान से, सारे जहां से अच्छा अपना भारत देश जहान से। जी ये बहुत ही प्यारी सी लाइन, और इसी के साथ में भाई लड्डू की बात हो रही है, तो लड्डू मुझे ये बताएं कि एक मिले हैं या दो मिले हैं, या आपको कितने मिला करते थे जब आप जाते थे अपने स्कूल में फ्लैग होस्टिंग के लिए, ज़रूर बताइए। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है रितेश जी की, जो कि हमें मालवीय नगर से सुनते हैं। आइए सुनते हैं रितेश जी के सॉन्ग को।

0: तू सारिया नू मार कट के ना वापस आ जाए बस वन पीस च।
1: कोई फिक्र ना कर जानी, मैं तेरे अंदर लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट के आऊंगा।
2: लेकिन आऊंगा जरूर।

0: दोस्त।
1: ओए विकी, तुझे मेरी शादी में आना यार।
2: ओ मेरे जानी, जरूर आऊंगा। तेरे घर से लेके लड़की के घर तक नाश्ते पे जाएंगे। चल टेंशन ना ले, मिलते हैं।

बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग मन भरिया, जो कि शेरशाह मूवी से, जो कि फरमाइश थी रितेश जी की। आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, पर उससे पहले नाजिया अंसारी जी लिख रही हैं, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आपको भी। और कमल नयन जी लिख रहे हैं, मैम पहले स्कूल में एक ही लड्डू मिलता था, बिल्कुल, और अब भी एक ही मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के साथ नाजिया अंसारी जी लिख रही हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद आपको भी। और क्रिकेट लवर ये भी लिख रहे हैं, जय हिंद मैम, जय हिंद आपको भी। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है आई लव माई इंडिया, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, जिसकी की फरमाइश की है शुभम जी ने। तो आइए सुनते हैं शुभम जी के सॉन्ग को।

आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया, बिल्कुल ये मेरा इंडिया। और वही कहते हैं ना कि हम हैं हिंदुस्तानी, दिल है हिंदुस्तानी। तो आइए अब बढ़ते हैं, अगली फरमाइश नहीं कहूँगी इसे, मैं बिल्कुल लास्ट कहूँगी क्योंकि हमारा टाइम जो कि है वो भी हो चुका है आपसे विदा लेने का। तो इसी सॉन्ग के साथ आपसे विदा लेंगे जो कि फरमाइश है सौरभ जी की, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, ये जूता है जापानी। आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इसी सॉन्ग के बिल्कुल मिड में आऊँगी मैं आपको बाय बोलने के लिए। आइए सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं।

बिल्कुल, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, और इसी प्यारे से सॉन्ग के साथ और इसी बात के साथ कि हमेशा हिंदुस्तान जो है वो यूं ही दुनिया एक प्यारी सी दुल्हन रहे और उसके माथे की बिंदिया बनकर चमकता रहे। आप सभी को जाने से पहले, अलविदा लेने से पहले फिर एक बार कहना चाहती हूँ, विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को, और हमारे साथ जो भी लिसनर अभी तक बने हुए थे, महेंद्रनी, नाजिया जी और सारे ही लिसनर जो कि हैं, कमल नयन जी और इसी के साथ में के गुप्ता जी, आप सभी का बहुत बहुत बहुत थैंक यू। मिलूंगी आपसे मंडे को आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम कॉल पसंदीदा प्रोग्राम सुन सहेली में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली को, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं एक सुपर हिट सॉन्ग्स वाला शो ज्ञान स्थली बेस।
2: हम इंडिया है, हम नफरत पे नहीं प्यार पे पलते हैं।

भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कम हैं, हमारी छातियां ज्यादा। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी दो जहानों में, मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहाँ ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहाँ हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो 11.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शाम का टाइम है और आपका अपना फेवरेट वाला शो गोधुली स्टार्ट हो गया है। आप सभी को पता है कि हर बार हर रोज गोधुली में हम गोंडा की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज को लेकर के आते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में जानते हैं और उनके कार्यक्षेत्र के बारे में जानते हैं। लेकिन आज दरअसल जो हमारे साथ मेहमान है वो बेहद खास है। कई बच्चों का, इवन कई हजार कई लाखों बच्चों का सपना होता है वो बनने का। जी हाँ, हम दरअसल आज एक स्पेशल गेस्ट को लेकर के आए हैं अपने रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 FM में। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि आज हमारे साथ हमारी को होस्ट भी मौजूद है। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है मिसेस डॉक्टर हरप्रीत कौर मैम। सबसे पहले तो आपका हम वेलकम करते हैं।
2: थैंक यू अदनान, आज का जो शो है वो बहुत ही खास है। जैसे अभी तुमने इंट्रोड्यूस किया कि आज के हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही खास हैं, तो आज के हमारे मेहमान हैं एसपी गोंडा मिस्टर विनीत जायसवाल। और पूरे स्टूडियो की तरफ से और ज्ञानस्थली कॉलेज की तरफ से मैं डॉक्टर हरप्रीत कौर उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस शो गोधुली में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अदनान।
1: थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि अभी आपको जस्ट पता चल गया है कि हमारे साथ में फाइनली एसपी गोंडा मौजूद हैं, मिस्टर विनीत जायसवाल। सो आइए उनके बारे में आज हम जानेंगे। आखिर बहुत बड़ा सफर होता है, यानी एक सफरनामा होता है यहाँ तक पहुँचने का। बहुत कुछ आता है लाइफ में, बहुत सारी हर्डल्स होती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, सब कुछ बात करेंगे। आखिर कितना मुश्किल होता है एक जिले की सुरक्षा व्यवस्था को चलाना, कितना मुश्किल होता है किसी भी क्रिटिकल केस को सॉल्व करना, और कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है किसी के लिए बेहतर करना, ये सारी बातें आज होंगी। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज अपने बारे में बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी एजुकेशन जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई वो कहाँ की हुई, और सर आप कहाँ के रहने वाले हैं?
3: हाँ देखिए, मेरा नाम विनीत जायसवाल है, मैं 2014 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ। और पैदाइश की अगर बात करें तो आजमगढ़ जिले में मेरी पैदाइश हुई थी। एक्चुअली मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं क्या बनस्पत, वो अभी रिटायर हो चुके हैं जेल डिपार्टमेंट में, एज जेल सुपरिटेंडेंट ही रिटायर्ड। तो क्योंकि वो भी एक ट्रांसफरेबल जॉब है स्टेट गवर्नमेंट की, तो जैसे जैसे उनका ट्रांसफर होता था साथ ही हमारा भी ट्रांसफर होता था। तो कई जिलों में मेरी पढ़ाई हुई है, गोरखपुर, बनारस, कानपुर, तो जहां जहां ट्रांसफर होते रहे मेरी स्कूलिंग हुई। उसके बाद मैंने बीटेक की पढ़ाई की और उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी की, और मूल रूप से मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। और बस उसके बाद तैयारी की मैंने और थर्ड अटेम्प्ट में आई क्लियर आईपीएस एंड आई गॉट यूपी कैडर।
2: सर, एक चीज जो अभी अभी मेरे दिमाग में आई कि आपने कहा कि आपने तैयारी की और थर्ड अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से पास आउट हो गए हैं और वो भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ही मुश्किल होता है इसको क्रैक करने के लिए। तो कोई ऐसा एक कुछ चीज है जो मंत्र जिसको हम कहेंगे कि आप उनको बताएं कि जिसको फॉलो करके उनकी ये जो मुश्किल रास्ता है वो आसान हो जाए?
3: नहीं देखिए, कहने को तो एक बहुत बड़ा सागर है ये, अब इसको गागर में भरना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। फिर भी दो तीन चीजें जो मुझे तैयारी के दिनों में जिन्होंने प्रभावित किया था, फॉर एग्जांपल जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो हमारे जो टीचर थे, मेन जो गुरु थे इस तैयारी के दौरान, उन्होंने पहले ही क्लास में बोर्ड पर आकर एक चीज लिखी थी, सिंपल आप सभी ने सुना होगा, लाइफ इज ब्यूटीफुल। और उसके बाद उन्होंने छोटा सा एक एस्ट्रिक बना दिया था। हम सभी जानते हैं उस एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, हम अखबारों में देखते हैं बड़े बड़े विज्ञापन, सेल 100%, 50%, लेकिन एक छोटा सा एस्ट्रिक नीचे रहता है, उसकी ओर ध्यान कम जाता है। लेकिन वही मेन की होता है, नीचे लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। डेफिनेटली लाइफ इज ब्यूटीफुल बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अगर आप हार्डवर्क करेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, अच्छे से प्लानिंग करेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए लाइफ इज ब्यूटीफुल का वो स्कोप है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वो भी किसी ने बताई ही थी मुझे, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश,
2: वेरी ट्रू।
3: लोगों के पास गोल है, हमें ये करना है लाइफ में, वो बनना है, बट कोई प्लान नहीं है। जब हम छोटे रहते हैं, एग्जांपल मैं भी जब स्कूल में था तो जब कोई पूछता था सेकंड क्लास में क्या बनना है तो पायलट बोल दिया, कभी डॉक्टर से प्रभावित हुए तो डॉक्टर्स बोल दिया। बट लाइफ के एक स्टेज पे जब आप पढ़ाई करते हैं तब डेफिनेटली आपका जो भी गोल है उसके लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए, वरना वो सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग होके रह जाएगा। रास्ता अपने आप तलाश लेंगे। आज के युवा में बहुत पोटेंशियल, स्टूडेंट्स में बहुत काबिलियत है, लेकिन सही समय पर अगर इस चीज को वो जान लें, एहसास कर लें कि हमें एक ठोस प्लान चाहिए, एक कार्य योजना चाहिए जिसपे हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ें, और रिजल्ट पे ध्यान ना दें, सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दें। प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब उस एज में रहते हैं, मैं भी जब था, तो तैयारी के दौरान हमेशा हम सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करते हैं, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, बट प्रोसेस को कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर देते हैं। अगर प्रोसेस हमारा सही है तो नतीजे की हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों नतीजा हमारे फेवर में आएगा। ये बस मुझे एक बात अपने नए जो उम्र के साथी हैं उनसे कहना है।
1: वाह क्या बात है सर। अभी स्टार्टिंग में ही आपने मेंशन किया कि जाहिर सी बात है आपकी पैदाइश आजमगढ़ में हुई और कहीं ना कहीं गोरखपुर में भी आपका अच्छा खासा वक्त बीता है, लेकिन कहते हैं कि माहौल बहुत बड़ी चीज होती है, तो मैं सबसे पहले तो आपकी फैमिली से स्टार्ट करना चाहूंगा कि आप लोग कितने सिबलिंग्स हैं और कैसा माहौल रहा बचपने में, आप कैसे थे, मतलब जैसे बाकी बच्चे होते हैं कुछ शरारती होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो काफी रिजर्व्ड होते हैं, तो आप कैसे थे, किस तरह की प्रवृत्ति थी आपकी?
3: देखिए जैसा कि मैंने बताया, हमारे पिताजी भी सरकारी सेवा में थे और जेल डिपार्टमेंट एक बहुत ही अनुशासित डिपार्टमेंट है, और जेलर की पोस्ट आप समझ ही रहे हैं, हमने पिक्चरों में भी देखा, एक परसेप्शन है कि एक बहुत ही कड़ा रुख रहता है, काफी अनुशासित माहौल रहता है
1: जी।
3: तो डेफिनेटली बहुत ही अनुशासित माहौल में हमारी परवरिश हुई है। हम कुल 5 भाई बहन हैं और मैं सबसे छोटा हूँ, इसलिए वो अनुशासन मुझ पर ज्यादा लागू नहीं हो पाया किन्हीं कारणवश। तो बचपन से स्वभाव में जैसा बच्चों का रहता है कि नटखटपना, ना सुनना, इवन स्कूल में भी अगर मुझे ध्यान है कि मैं बहुत पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता था। दो चीजें हैं, एक तो आपका कैलिबर कितना है, दूसरा आपका इंटरेस्ट कितना है। तो कैलिबर पोर्शन में तो आई वॉज ऑलवेज ओके, अबव एवरेज, लेकिन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो पढ़ाई ना करना, खेल पे ज्यादा ध्यान देना, हालांकि ये बातें आज के जमाने में नए स्टूडेंट्स के लिए कोई बहुत इंस्पिरेशन नहीं है, क्योंकि वो क्या करेंगे कि मेरी बात के मेहनत वाले पॉइंट्स को ना लेकर, शुरू में जो ना पढ़ना है उस पॉइंट को लेकर ले उसका एग्जांपल दे सकते हैं। इवन आई रिमेम्बर 8th क्लास में आई गॉट 16 मार्क्स इन मैथ्स, तो माय प्रिंसिपल कॉल्ड माय फादर कि इनको हम मैथ्स नहीं दे सकते हैं 9th में, 9th में हमको सब्जेक्ट लेना था।
1: ओके
3: तो उस दिन जब पिताजी को ये बोला गया प्रिंसिपल के द्वारा कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और इस तरह से उन्हें एक निराशा भाव से बताया गया, उस दिन मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि मेरी वजह से मेरे फादर को कोई ये कह रहा है कि वो ये कर नहीं पाएगा, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तब मैंने ये फील किया कि मैं लड़कपन में खेल कूद में इग्नोर कर रहा था, प्रिंसिपल मैम ने तो सीरियसली ले लिया। उस दिन के बाद से फिर मैं स्कूल में भी हमेशा फर्स्ट आता था
1: जी,
3: बस थोड़ा सा ध्यान देकर, मतलब लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करने वाला ही मैं भी हूँ, साल भर खेला लास्ट में सिंसियर हो गए। ये भी एक सीख है नई पीढ़ी के लिए, सबको अपना कैलिबर पहचानना होगा, दूसरों को देखकर अपने पढ़ाई का वो जो घंटे हैं वो ना तय करें आप। हो सकता है कोई 4 घंटे पढ़ के कर ले, हो सकता है किसी का कैलिबर 8 घंटे का है, लेकिन तमाम लोगों को देखा है मैंने ग्रुप में दूसरे से प्रभावित होकर, वो लास्ट तक खेल रहा है तो हम भी लास्ट तक खेले, हो सकता है वो लास्ट में कवर कर पाए, हम ना कवर कर पाए, सबको अपना अपना कैलिबर, अपना अपना असेसमेंट रहना चाहिए, उसके हिसाब से ही आगे वो तैयारी करे।
1: ओके तो सर आपने बताया कि काफी अनुशासन में बीता, और जाहिर सी बात है जैसा कि हम जानते हैं घर के जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं उनमें आते आते बड़ा कम हो जाता है, सबसे बड़े पे सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं पेरेंट्स, ऐसा कहा जाता है, मुझे लगता है कि शायद सही भी है। इसके अलावा आपने चूंकि कहा कि जैसे बाकी बच्चे होते थे खेलने कूदने पे ज्यादा ध्यान होता था और लास्ट मोमेंट पे आप पढ़ते थे, लेकिन कैलिबर के मामले आपने कहा कि एवरेज बच्चों से आप हमेशा ज्यादा ही रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने कहा ये सच होता है कि बचपन में हमने

0: ये दीदी वो कैलिबर में और काबिलियत में मुझसे बहुत आगे हैं।
1: ओके।
0: उन्होंने आईआईटी से भी पढ़ाई की है, बाद में उन्होंने एमरी यूनिवर्सिटी से रिसर्च किया है फाइनेंस में। नाउ शी इज वर्किंग इन अ गुड कॉलेज अब्रॉड ऑस्ट्रेलिया में। उनका कैलिबर बहुत था बट इस तरफ उनका रुझान नहीं था। तो रुझान होना भी बहुत जरूरी है। तो हम पांचों बच्चों में मेरी फ्रीक्वेंसी इस तरफ थी, मेरा टेम्परामेंट था, मेरा एप्टीट्यूड था, मेरा एटीट्यूड था। तो पिताजी को भी लगा और मुझे भी लगा कि मुझे इस तरफ जाना है। और कॉलेज टाइम से ही मैंने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में तैयारी शुरू कर दी। और जैसा कि मैंने कहा, सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर कोई कर रहा हो, भले ही उसे सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट न भी देना हो, तो भी मेरा यह सबसे निवेदन रहता कि कुछ न कुछ तैयारी जरूर करे। इस एग्जाम की जो डिमांड है वो सिर्फ इतनी है, एक एवरेज एजुकेटेड इंडियन उसको जितना अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी राजनीति के बारे में, भूगोल के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उतना ही एग्जाम डिमांड करता है। और वो जानना हम सभी भारतीयों के लिए जरूरी है, भले ही हम टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं, डॉक्टर हैं, लेक्चरर हैं या किसी भी फील्ड में हैं। तो इसलिए वो तैयारी भी अपने आप में, जैसा कि मैंने कहा प्रोसेस, वो प्रोसेस भी मेरे लिए बहुत इंजॉयबल था। मैंने बहुत इंजॉय किया वो पूरा पढ़ना, उसको सीखना, देश के बारे में इतना जानना। तो वो पूरी जर्नी भी मेरी बहुत अच्छी रही। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं बहुत संघर्षों भरा मेरा वो समय था, तो बिल्कुल नहीं था। मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत इसमें दूसरों को भी इंक्लूड करने का प्रयास करता था कि वो भी इसमें इंटरेस्ट लें। तो बहुत अच्छी जर्नी रही और इस प्रकार इस तरफ मेरा आना हुआ।
2: सर, अभी आपने कहा कि घर में ही एक यूनिफॉर्म में आपने हमेशा अपने फादर को देखा है और वो कहीं वाइफ्स आपकी उनके साथ मिल गई, तो आपने जब पहली बार यूनिफॉर्म पहनी होगी तो दैट वुड बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, दे नो दैट ईच टाइम दे पुट ऑन देयर यूनिफॉर्म्स दे आर टेकिंग ऑन रिस्क टू प्रोटेक्ट अदर्स। तो डू यू रियली थिंक कि यू आर टेकिंग रिस्क टू प्रोटेक्ट अदर पीपल?
0: नहीं, डेफिनेटली। देखिए, जब हम वर्दी पहनते हैं तो निश्चित तौर पे हम भीड़ से अलग हो जाते हैं। और रही बात यूनिफॉर्म, जैसा कि आपने बताया कि बहुत खास रहा होगा, मुझे आज भी डेट याद है, 1 जनवरी 2015, जब हमने पहली बार ट्रेनिंग में यूनिफॉर्म जब हमारी सिली थी और हमने पहनी थी, उसकी फोटो खींच के भी मैंने घर पे भेजी थी। और रही बात जब वर्दी हम पहनते हैं तो वो एक बहुत ही, आपको ये कह सकता हूँ कि काफी बड़ी जिम्मेदारी वो कंधों पे होती है, वो वर्दी उसका एहसास दिलाती है। जब हम वर्दी पहनते हैं और हमारे कंधे पे अशोक स्तंभ रहता है या आईपीएस लिखा रहता है जिसमें इंडियन शब्द है, अशोक स्तंभ रहता है, तो हमें उस चीज की जिम्मेदारी का एहसास होता है कि एक संवैधानिक शपथ के तहत हम काम कर रहे हैं और जनता की हमसे अपेक्षाएं हैं। आज भी भीड़ में कभी किसी को समस्याएं आती हैं, लोग पुलिस की ओर देखते हैं। एक सामान्य आपराधिक गतिविधि हो, यहाँ तक कि अगर कोई, कई जगह आप इवन गोंडा में भी देखोगे, कई बार वन जो जंगली इलाके हैं उसके पास के गांव में तेंदुआ आ जाता है
2: जी,
0: वो पकड़ना या वो हटाना पुलिस का ना काम है ना हमारे कार्य क्षेत्र में आता है। लेकिन पब्लिक पुलिस को फोन करेगी और पुलिस से अपेक्षा करेगी। और मैंने देखा है हमारे जवान कभी ना नहीं कहते। तमाम आपको इस तरह की खबरें सुनने को मिल जाएंगी, इस तरह के वीडियोस पड़े होंगे, यूट्यूब पे पड़े होंगे, जिसमें जो लोकल पुलिस है वो जान की बाजी लगाकर उसको भगाने का या पकड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अलग से ताकत है या अलग से उसकी कोई उस संबंध में ट्रेनिंग है, लेकिन क्योंकि उसने वो वर्दी पहनी है, उसको इस चीज का एहसास है कि पब्लिक उसे देख रही है उम्मीदों से। उससे ज्यादा ताकतवर लोग हैं लेकिन वो खड़े हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं उस वर्दीधारी से कि वो जाकर उस तेंदुए को पकड़े। ऐसे तमाम हमारे सामने लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती आती है। देखिए, पुलिस इज द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ द सिस्टम। जो पूरा गवर्नमेंट है, स्टेट है, उसका सबसे जो विजिबल अंग है वो पुलिस है, यूनिफॉर्म है। तो आए दिन होता है कि पब्लिक को किसी भी चीज को लेकर अगर ग्रीवियांस है, समस्या है, और वो लॉ एंड ऑर्डर में तब्दील होता है, तो मौके पर सामने पुलिस रहती है। अगर वो पत्थर फेंक रहे हैं, डेफिनेटली वो पुलिस को कोई व्यक्तिगत टारगेट करके नहीं फेंक रहे, वो सिस्टम से नाराज है और सिस्टम का जो विजिबल चेहरा सामने खड़ा है वो पुलिस खड़ी है। तो मैं भी अपने साथियों को भी बार बार इस संबंध में सेंसिटाइज करता हूँ कि जब भी हम ऐसे मौकों पे जाएं, अपना टेम्परामेंट बना के रखें, क्योंकि ये वर्दी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसीलिए हमने ये वर्दी पहनी है। कुछ तो अलग है हमें, तो हम भी अगर वैसे ही बिहेव करें तो फिर हमें और उनमें फर्क नहीं रह जाएगा। तो ये डेफिनेटली है, वर्दी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसका एहसास हम सभी को है और होना भी चाहिए। डेफिनेटली,
1: बेशक सर। तो वापस से वही चलते हैं जहाँ पे आपने कहा था कि आपने तीसरे अटेम्प्ट में फाइनली क्वालिफाइड कर लिया था। तो एक बहुत अहम ये चूंकि सवाल है, इस वक्त हमारे कई सारे ऐसे स्टूडेंट सुन रहे हैं जो एस्पिरेंट हैं आईपीएस के लिए, आईएएस के लिए, आपको सुन रहे हैं। तो अब हम ये जर्नी आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपने कहां से शुरुआत की थी, कैसे सब्जेक्ट्स पे आपने

0: कमांड की, होता क्या है सर कि कुछ वीक सब्जेक्ट्स भी आपके होते हैं और कुछ होते हैं स्ट्रांग, तो स्ट्रांग तो आपके अच्छे से कवर हो जाते हैं, आप उस पे अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन वीक के लिए क्या स्ट्रेटेजी होती है, टाइमिंग पे आप बिलीव करते थे या कितना क्वालिटी स्टडी पे करते थे, और उस दौरान किस तरह से खुद को कूल रखते थे, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो प्लीज इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं।
1: नहीं बिल्कुल, ये भी देखिए एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बट फिर भी मैं प्रयास करूंगा संक्षेप में इसमें बताने का। कोई भी सब्जेक्ट यदि आपको चुनना है या कोई भी एग्जाम क्रैक करना, नॉट ओनली यूपीएससी, क्वेश्चन पेपर्स आर दी की। आप कोई भी एग्जाम देना है, मैं कह रहा हूँ एक्स वाई जेड यूपीएससी कोई भी, आप उनके पिछले 5 या 10 सालों के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, उनको स्टडी करिए, स्टडी देम, नॉट टू टेस्ट योर नॉलेज कि हमें कितना आता है, क्योंकि ये भी एक आर्ट है, बच्चे उसी में उलझ जाते हैं कि हमें तो कुछ आता ही नहीं, ये है ही नहीं उसका उद्देश्य। आप बस क्वेश्चन पेपर को पढ़िए कि क्या क्या चीजें पूछ रहे हैं और किस तरह से पूछ रहे हैं। सेम किताब पूरा इंडिया पढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में किताब है लक्ष्मीकांत, पूरा इंडिया स्टूडेंट सब वही पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए, बट उसी में से आए हुए सवाल कुछ बच्चे कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिन्होंने क्वेश्चंस पढ़े होंगे उनका वो अप्रोच डेवलप होगा कि वो किताब हमें किस अप्रोच से पढ़नी है। हम सेम पेज पढ़ रहे हैं बट जब हमारे दिमाग में वो फ्रेमवर्क रहे, इस फ्रेम में क्वेश्चन बन सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आए थे पहले, इसको इस एंगल से पढ़े, तब आप ज्यादा क्लैरिटी के साथ पढ़ते हैं, तब आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि इस किताब से कोई क्वेश्चन आएगा मैं सॉल्व कर लूंगा। कोई किताबें बाहर से नहीं आ रही, सेम किताब स्टैंडर्ड सभी पढ़ते हैं। इसी तरह से जब हमको अपना सब्जेक्ट चुनना है, सिलेबस ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसके साथ कुछ समय गुजारिए, कुछ दिन गुजारिए, आप बस सिलेबस देखते रहिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए। अपना टेम्परामेंट होता है, कुछ लोग आर्ट्स में अच्छे होते हैं, ह्यूमैनिटीज में अच्छे होते हैं, कुछ लोग का साइंटिफिक बैकग्राउंड होता है वो उसमें अच्छे होते हैं, लेकिन जो भी करें बहुत ही वाइजली करें, सोच समझ के, और दूसरों को देख के तो बिल्कुल ना करें कि इन्होंने, मेरे दोस्त ने ये ले लिया तो मैं भी ये सब्जेक्ट ले लूं। ये एक लंबा सफर है सीखने का, गलती करने का और उससे सीखने का, क्योंकि मेरा थर्ड अटेम्प्ट में हुआ है तो मेरे पास तमाम ऐसी जानकारियां, ऐसे अनुभव हैं जो मैं यंगस्टर्स के साथ केस टू केस बेसिस पे साझा करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि किन किन पॉइंट्स पे मुझे सफलता नहीं मिली। कई लोग जो बहुत अच्छे से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं तो वो दूसरों को वो गाइडेंस नहीं दे पाते हैं कि क्या कमियां रह गई और उन कमियों से हम कैसे उभरे। तो मैं इस मामले में बहुत लकी मानता हूं, मेरे कॉलेज के और तमाम जूनियर्स अभी भी मुझसे इसीलिए जुड़े हैं कि अनुभव थोड़ा मेरे पास ज्यादा है तैयारी का, कि क्या क्या कमियां हम कर देते हैं। वो तो मेरे पास जैसे कोई डॉक्टर है, उसको अनुभव बहुत ज्यादा होता है, आप उसे हल्की सी समस्या बताएंगे वो तुरंत बता देगा अच्छा ये हो रहा है, आप भी खुश हो जाएंगे अरे डॉक्टर साहब ने तो पकड़ लिया। सेम यही कुछ मेरे साथ भी हो गया था, मुझसे कोई यंगस्टर बताया कि सर ये हो रहा है, मैं उसको कहता था कि तुम ये कर रहे हो तो वो खुश हो जाता था, हाँ सर मैं तो ये कर रहा हूँ, तब मैं उसे क्या करेक्ट करना है वो बताता था। तो लंबी जर्नी है इस समय, अलग से इस संबंध में कभी भी हम बात करेंगे, काफी ये बहुत वाइड टॉपिक है।
0: बेशक आपने कहा कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन सबसे अच्छी बात आपकी लगी कि अभी तक जो हमने भी सुना था, ये लोग कहते थे कि पहले अपने को टेस्ट करो, आपने पहले इस चीज को डिनाय कर दिया कि नहीं पहले देखो सिलेबस क्या है, क्योंकि जब हम टेस्ट में आते हैं खुद को करके और उसके बाद जब हम एक निराशा वाली एक फेज में चले जाते हैं तो उस चीज को करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन आपने सही कहा, अगर जो सिलेबस है अगर हमारा उस पे ध्यान होगा तो शायद वो ज्यादा बेस्ट होगा। दूसरी बात आपने कहा कि दूसरे को देख करके कोई भी स्ट्रेटेजी उस तरह से या इस तरह से पढ़ाई का टाइमिंग हम फिक्स नहीं कर सकते, ये हमारी एबिलिटी पे होता है, ये हम कितना ज्यादा चीजों को कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं वो हम ज्यादा बेस्ट जानते हैं। बहुत ही कम शब्दों में आपने बहुत ही अच्छी बातें ऐसे बता दी जो हमारे इस वक्त स्टूडेंट सुन रहे हैं उनके बहुत ज्यादा काम किया, क्योंकि आपने थर्ड अटेम्प्ट में आईपीएस क्लियर कर लिया और ऑफ कोर्स आप सेवा में आ गए, प्रशासनिक सेवा में, और अभी तो आपके ऊपर पूरी जिले की जिम्मेदारी है सुरक्षा व्यवस्था की। पहली जॉब कैसी रही, पहली जॉब कहाँ लगी, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जो ग्लैमर मुझे लगता है बाहर से दिखता है सब कुछ तो वैसा ही नहीं होता होगा, और ये सिर्फ इसी जॉब की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है, इस बात को जानेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले चूंकि वक्त हो गया एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का, सो ब्रेक के उस पार वापस से हम आपसे मिलते हैं, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट के रूप में मौजूद हैं एसपी गोंडा मिस्टर विनीत जायसवाल सर।

0: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। आप सुन रहे हैं रेडियो 11.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में गोधुली प्रोग्राम में स्पेशल गेस्ट मौजूद है डायनेमिक पर्सनैलिटी गोंडा SP मिस्टर विनीत जायसवाल। सर जाने से पहले चूंकि हमने ये कहा था कि आपने अटेंड कर लिया, बात ही बात में भी हम आपके सफर को जान रहे हैं और कहते हैं कि जो देखने में चीजें नजर आती हैं जब आप करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो उस तरह बिल्कुल नहीं होती, लेकिन हाँ ये कि बहुत ज्यादा फर्क होता है और अच्छी भी लग सकती है चीजें, या शायद जो चैलेंजेस आपको आगे से देखने पे पता नहीं चल रहे थे वहां पे जाने के बाद पता चलते हैं। तो मैं स्पेशली आपसे कहना चाहूंगा कि ज्वाइनिंग के बाद का एक्सपीरियंस सर बताइए, और फर्स्ट ज्वाइनिंग आपकी कहाँ हुई और वो जो ड्यूरेशन आपने वहां पे दिया वो कैसा रहा?
1: देखिए, फर्स्ट ज्वाइनिंग जब हमारा जिले की पुलिस से वास्ता पड़ता है वो एक ट्रेनिंग फेज रहता है, उसे डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहते हैं, व्हेन वी आर अटैच्ड टू द डिस्ट्रिक्ट फॉर 6 मंथ्स। उसमें अलग अलग जो भी ब्रांचेज हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, जुडिशरी की, उनसे हमारा अटैचमेंट रहता है, और 3 महीने इंडिपेंडेंट चार्ज एज SHO एक थाने का हम सीखते हैं, क्योंकि आप सभी भी जानते हैं पुलिसिंग का जो बेसिक यूनिट है वो थाना ही है। कंप्लेंट चाहे कितनी भी ऊपर से आए, कितनी भी बड़ी हो, अल्टीमेटली वो थाने स्तर से ही उसका निस्तारण होगा। तो थाने पे जब 3 महीने का अटैचमेंट हुआ तो डेफिनेटली बाहर से काफी लोग इसका ग्लैमर देखते हैं, चार्म देखते हैं, बट जब हम आते हैं असल लाइफ में तो बहुत चुनौतियां होती हैं। संसाधन हमारे पास उतने नहीं हैं, जिस रफ्तार से क्राइम बढ़ रहा है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर और लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं, और टाइम की बहुत कमी है। एक वर्क लाइफ बैलेंस स्पेशली यूनिफॉर्म सर्विस में बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि 24/7 जॉब है। आप कभी भी नहीं कह सकते कि आप ऑफ ड्यूटी हैं, कभी भी नहीं। रात को 2 बजे, रात को 3 बजे, कब कौन सी कॉल आ जाए, बेसिकली आपका आज का दिन कैसा रहेगा जब हम सुबह निकलते हैं तो हमें खुद नहीं पता, क्योंकि वो डिपेंड करेगा आज सोसाइटी कैसे बिहेव करने वाली है, आज कौन सा हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कोई क्राइम करने वाला है, आज कौन सा लुटेरा पैसों के लालच में कोई क्राइम करने वाला है, कौन सा कोई बड़ा एक्सीडेंट मेजर हो जाए। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो डेफिनेटली हमारे उस वर्क लाइफ बैलेंस में इन सभी चीजों का लगातार इंटरफेरेंस रहता है, उससे एक सामंजस्य बिठाना। पुलिसिंग का अपना एक कल्चर है, अपना एक तौर तरीका है, क्योंकि ये जो भी पुलिस के हमारे जवान हैं, हमारे साथी हैं, सब समाज से ही आए हैं, तो जो समाज में कुछ हमें कई बार कमियां देखने को मिलती हैं डेफिनेटली वो साथ में विभाग में भी आएंगी। इनको समय समय पर कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, पिन पॉइंट करना, करेक्शन करना, काउंसलिंग करना, इसमें सुधार करना, ये भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो डेफिनेटली जब पहला चार्ज रहता है, जब हम आए तो बहुत से लॉ एंड ऑर्डर देखे, समाज की देखिए कोई नेगेटिव बात नहीं है, जैसे एक डॉक्टर है, मैंने शुरू में भी एग्जांपल दिया, एक डॉक्टर के पास क्या आएगा एज ए क्लाइंट, कुछ न कुछ बीमारियां आएंगी, शारीरिक जो कमियां हैं वो आएंगी, मतलब एक तरह से शारीरिक जो भी डिजीजेस हैं वो सामने आएंगी
0: जी।
1: पुलिस के पास भी वैसा ही समझ लीजिए, एक समाज के डॉक्टर की तरह हमारे पास भी वही सारी चीजें आएंगी। हम ये सोचे थाने में बैठ कर के कोई प्लेजेंट चीज आएगी, प्लेजेंट चीज कभी नहीं आएगी,
0: बेशक
1: कोई विभत्स क्राइम हुआ हो
0: जी।
1: समाज में जो तरह तरह की ये विसंगतियां देखने को मिलती हैं वही सारी चीजें हमारे सामने आती। इस माहौल में अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना, टेम्परामेंट को बनाए रखना, अपने उस मानवीयता को ना भूलना, क्योंकि ये रोज मर्रा के ये सब चीजें जिनसे हम डील करते हैं उनके बीच में रहते रहते ऐसा ना हो कि हम अपने इमोशंस को भूल जाएं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे हम वो बैलेंस बनाते हैं। तो निश्चित तौर पे काफी अच्छा अनुभव रहा, कई मेजर क्राइम्स हुए जिनको हमने वर्कआउट किया, बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर देखे हमने, समाज कैसे बिहेव करता है जब अलग हम किसी इंसान से बात करते हैं, और वही इंसान जब एक भीड़ का हिस्सा हो तो मॉब कैसे बिहेव करता है, मॉब मेंटेलिटी, क्रिमिनल्स किस हद तक डेयरिंग हो सकते हैं, हमने फायरिंग भी देखी, इनकाउंटर भी देखा, लॉ एंड ऑर्डर में पथराव देखा, फायरिंग देखी, कई क्रूसम मर्डर्स देखे, उसको वर्कआउट किए, तमाम इलिसिट रिलेशनशिप्स, तमाम ऐसी चीजें जो समाज की पहले जिनसे मैं कभी मेरा वास्ता नहीं पड़ा था, डेफिनेटली पड़ा, वो सीखने के लिए भी एक चीज थी। अब यही है हमारा काम, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा जो ग्लैमर पोर्शन के अलावा जो एक बिल्कुल क्रूड काम है वो, इवन जैसे एक्सीडेंट सीन पे भी जाना एक बहुत बड़ी अपने आप में एक चुनौती है। जब कोई सूचना मिलती है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, यू नेवर नो कि वहां क्या देखने को मिल जाए, बॉडी किस हालत में हो, जिस आदमी ने कभी पूरे लाइफ में कोई डेड बॉडी ना देखी हो, वो एक्सीडेंट सीन पे जब जाएगा उसे कुछ नहीं पता कि क्या पता उसमें सर ही ना हो। कई बार तो ऐसा हुआ कि सड़क से उसको उठाना मुश्किल पड़ जाता है, उसके जो बॉडी के जो भी पार्ट्स रहते हैं। तमाम तरीके की चीजें हैं जो मौके पे जाकर ही आपको समझ में आ पाएगा, उसको आप अनुभव कर पाएंगे। तो बिल्कुल अच्छा रहा मेरा वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा आगरा में। मैं एंटरटेनिंग था और वहाँ पे एक मलपुरा थाना है, वहाँ के SHO के रूप में मैंने काम किया, तो बहुत ग्राउंड लेवल पे आपको लोगों को देखने का मौका मिलता है और सीखने को भी बहुत कुछ मिला। उसी दौरान हमारे एक सीनियर अधिकारी ने मुझे एक बात बताई थी जो मैं लाइफ लॉन्ग उसे याद रखता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, जब भी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कोई अच्छी बात बताता है
0: जी,
1: तो उसे मैं लाइफ लॉन्ग याद रखता हूँ। ही वॉज वेरी जूनियर टू मी, जिसने मुझे ये बात बताई। रैंक और ओहदे में वो मुझसे जूनियर था
0: जी,
1: लेकिन उसने मुझे ये बात बताई, मुझे अच्छी लगी। मैं अपने आप आत्मसात करता हूँ और अपने अधीनस्थों को भी बताता हूँ। उन्होंने कहा शुरू में ही कि सर्विस में अभी आपको आगे लंबा अनुभव होगा, बहुत से लोग आपसे मिलेंगे, कई बड़े बड़े लोग आपसे मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे लोग आपको सिफारिशें करेंगे, पैरवी करेंगे, उनकी तो एनीवेज आपको सुनना ही होगा क्योंकि वो अच्छे पदों पे हैं, सिफारिश करेंगे, आप उनको सुनेंगे। करेंगे जो मेरिट पे है वो अलग बात है, लेकिन सुनेंगे। ऐसे लोग की पैरवी अपने आप बड़े लोग करते हैं, लेकिन जब हम थाने पे जाते हैं या ऑफिस में बैठते हैं तो कई ऐसे लोग आते हैं जो अकेले होंगे, निरीह होंगे, गरीब होंगे, उनके पास कोई बहुत क्षमता नहीं होगी। हमें एज अ सर्विस जो हम IPS हमें मिला है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे लोग की पैरवी हम बने, ऐसे लोग की सिफारिश हम करें। ये चीज मैंने उसी दिन से अपने अंदर रखी है और हमेशा मैं ये प्रयास करता हूँ कि जो व्यक्ति अकेला लग रहा हो, निरीह लग रहा हो, उसकी पैरवी एज अ पार्टी बन के मैं करता हूँ। कई बार आगे मुझे करियर में कई समस्याएं भी आई, लोगों को लगता है कि ये पार्टी क्यों बन रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है अगर समाज में, क्योंकि समाज में काफी इम्बैलेंस है, आप देखोगे एक फ्यूडल टाइप का सेमी फ्यूडल सोसाइटी है, कुछ लोग बहुत ताकतवर है
0: बेशक,
1: कुछ लोग बहुत कमजोर है। अगर हम न्यूट्रल अंपायर बन के देखते रहे, फिर वही होगा जो कि बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाएगी
0: जी।
1: हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तमाम लोग इस तरह की बातें करते हैं कि पुलिस को पार्टी नहीं बननी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है बिल्कुल बनना चाहिए। कमजोर के पक्ष में जब तक सिस्टम खड़ा नहीं होगा, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। तो ये जो हमारे उस गुरु ने मुझे ये बात बताई कि ऐसे लोग की पैरवी मैं खुद बनता हूँ। कई बार हमारे थाना प्रभारी या अधिकारियों को ये लगता है कि ये जो फोन सर ने किया है लग रहा है उनका जानने वाला है। मैं उस कंफ्यूजन को दूर भी नहीं करता हूँ। अच्छा हो उसे लगे कि ये मेरा जानने वाला है। ये थ्रू आउट मैं अपने करियर की आपको बात बता रहा हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट की। तो उनको यही लगता है कि सर का जानने वाला, इसलिए सर इतनी प्रभावी पैरवी कर रहे हैं कि इसकी मदद होनी होनी है। मैंने कभी ये कंफ्यूजन आज तक दूर नहीं किया। उसे लगे कि मेरा जानने वाला है, लेकिन उसका काम हो, उसकी मदद हो। जो त्वरित न्याय देने का हम लोगों के पास कानून ने हमें शक्ति दी है, इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो वो एक गुरु मंत्र है जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, जिसका मुझे गर्व है कि मैं ये कुछ न कुछ ऐसा करता हूँ जिससे उसका पालन हो, और लोगों को भी यही सीख देता हूँ।
2: तो सर, ये जो अभी आपने बताया कि आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ये तो आपके एक पर्सनल ट्रेट्स में हो गए। और ये सारी चीजें जो है आम आदमी, क्योंकि हम लोग भी ले मैन की तरह पुलिस में अगर हम जाते हैं तो हम लोग 10 बार सोचते हैं कि हम वहां पर जाएं या ना जाएं, पता नहीं हमारी बात समझी जाएगी कि नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जेन्युइनली सफर कर रहे हैं लेकिन वो पुलिस के पास नहीं जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि जो एक इमेज बनी हुई है पुलिस की, वो सबसे ज्यादा इस रास्ते में रोड़ा बनती है। अभी आपने बात की कि आप अपने लेवल से उसको कवर करते हैं, ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर यही चीज आम आदमी के मन से निकल जाए कि पुलिस जो है अगर हमको कोई प्रॉब्लम है हम जाएंगे तो वो हमको जेन्युइनली सुनेंगे, तो इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़े और प्रयास पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कॉमन आदमी के लिए होने चाहिए।
1: नहीं देखिए, निश्चित तौर पे आपने जो कहा ये समाज की एक कड़वी सच्चाई है और ये परसेप्शन बना हुआ है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये परसेप्शन पूरी तरह से सही है, लेकिन पूरी तरह से गलत भी नहीं है, क्योंकि कई बार अपने व्यक्तिगत अनुभव ना होने के बावजूद हम दूसरों की सुनी सुनाई बातों से, क्योंकि मैं बहुत स्कूलों में जाता हूँ, बच्चों से भी इंटरेक्ट करता हूँ, मूवीज देखकर, दूसरों की बातों को सुनकर एक आम धारणा बनी हुई है, उससे भी लोग हिचकते हैं। अब धीरे धीरे जो डिपार्टमेंट है, जो सीनियर्स हैं, बहुत इस संबंध में संवेदनशील हैं, इस चीज की ओर ध्यान देते हैं। लगातार हम लोगों के द्वारा भी वर्कशॉप की जाती है, बिहेवियरल काउंसलिंग की जाती है। इवन मैंने कई डिस्ट्रिक्ट्स में किया है कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन पे सभी पुलिस कर्मियों को बैठाकर, जितने भी इस तरह के कभी जो प्रकरण संज्ञान में आते हैं कि पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, उसका कोई वीडियो वायरल हुआ, मैं उन्हें खुद बैठा के दिखाता हूँ बार बार कि खुद देखो। क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब, अगर मानिए कई बगल का जनपद है और वो पुलिस वाला है, वो मुझसे अलग नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि यूनिफॉर्म, हम सब एक रूपता है, हम ही वो हैं, वही हम हैं। तो अगर वो कर रहा है तो एक तरह से हम ही कर रहे हैं, तो सोचो क्या ये हमारा व्यवहार उचित है। तो इस तरह से बहुत फर्क पड़ता है। दूसरी बात, धीरे धीरे बहुत से ऐसे सर्विसेज हैं, ऐसे काउंटर चेक मेजर्स आ रहे हैं, इसे डायल 112 की एक सुविधा है। पहले जब ये सेंट्रलाइज नहीं हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तमाम लोग इसको डिस्क्रिप्शन पे रखते थे कि हमें मौके पर जाना है या नहीं जाना। आज 112 पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, हर लेवल पे उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। आप कहीं भी, अगर अभी भी आप 112 पे कॉल करेंगी, कोई समस्या बताएंगी, 100% 112 की गाड़ी यहाँ आएगी ही आएगी, उसे आना पड़ेगा, ये सब ऑटोमेटिक है
2: जी।
1: उसके बाद आपकी जो शिकायत है उस पे उन्होंने क्या कार्रवाई की, वो उनको लिख के, ऐसा नहीं कि मौखिक, उन्हें अपने जो डिवाइस मिला हुआ है उसमें लिख के वो इवेंट क्लोज करना होगा। तो धीरे से एक तरह से उसकी भी इसमें जवाबदेही तय हो गई
2: जी।
1: ऐसे ही थाने लेवल पे आप जाओगे कभी भी, तो सभी ऑफिसर्स के नंबर लिखे होंगे, हर थाने पे वो नंबर डिस्प्ले होते हैं सभी सीनियर ऑफिसर्स पे, स्टार्टिंग फ्रॉम डिप्टी एसपी टू डीजीपी। ये इसीलिए है कि अगर आपको लगे कि थाने पे आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आप सीधे सीनियर ऑफिसर को मिलाइए। और एज सीनियर ऑफिसर इस पूरे डिपार्टमेंट में हमारा सिर्फ यही रोल है कि हम थाने को मॉनिटर करें। हमसे लेकर मुझसे जस्ट नीचे के अधिकारी, हमसे ऊपर के अधिकारी, सबको यही देखना है कि थाने लेवल पे कार्य ठीक से हो। लेकिन कई बार ये होता है कि हमें सही समय पर सही फीडबैक नहीं मिलता। और देखिए, अदरवाइज लेने की बात नहीं है, मैंने देखा है कि जो हमारे ग्रामीण अंचल में लोग रहते हैं वो इन चीजों के प्रति ज्यादा जागरूक है,
2: ये सही,
1: शहरी लोग कम जागरूक है। मैंने कई बार, कई मैं इवन RWA की मीटिंग्स में गया, अब एक बहुत ही फ्रीक्वेंट शिकायत मिलती है कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन में पैसे ले लिए। मैं आपको बताऊं, मैं SPCT था नोएडा में, एक सोसाइटी में मैं वहां गया, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने चौपाल लगाई ऐसे ही पब्लिक से इंटरेक्शन के लिए, कि करीब एक साल पहले मैं एक बार पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए गया और उस मुंशी ने मुझसे 1000 रुपए ले लिए। मैंने उनसे यही कहा कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े पद पे रहे, इतने अच्छे ओहदे पे रहे, अगर सब कुछ अच्छा था, सब कुछ आपके रिकॉर्ड में क्लीन था, आपने क्यों उसे पैसे दिए? और आप तो पढ़े लिखे हैं, आप जान रहे हैं कि सिस्टम क्या होता है, एक डिप्टी SP है, एक SSP है यहाँ के, आपको उन्हें कॉल करना चाहिए था, उसके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए थी, उसको दंड मिलता तो मैसेज सब में जाता और हमें भी इस बात का सुकून रहता कि हमें समय पर फीडबैक मिल गया और हमने कार्रवाई कर दी। लेकिन आपने उस बात को अपने अंदर रखा, इंतजार करते रहे कि कभी कोई SPCT आएगा तो मैं उसको ये बात बताऊंगा। अब उस फीडबैक का मैं कर भी नहीं सकता कुछ। और वही नोएडा में ही तमाम ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, जेवर है, दादरी है, वहां के लोग, बूढ़ी महिलाएं 70 साल की, थाने पे खड़े होकर फोन करती हैं सीधे SPCT को कि साहब हम तहरीर दे रहे हैं, हमारा 2 घंटे से मुकदमा नहीं लिख रहे हैं और मेडिकल नहीं करा रहे। वो मैं बहुत नमन करता हूं उन माताजी को, बिल्कुल रियल टाइम फीडबैक, दूसरे फोन पे SHO, अगर कोई अड़चन है विधिक तो वो भी मुझसे तुरंत पूछे, मैं निस्तारण कराऊं, तत्काल कार्रवाई होगी और यदि उसकी कमी पाई गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये सही समय पर सही निर्णय और सही कार्रवाई का सही प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैंने जो ये एक चीज फील की है, और डेफिनेटली धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं, तमाम कम्युनिटी पुलिसिंग के भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, सरकार भी कई सेवाएं दे रही है, और ये काउंसलिंग की जो ये प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहेगी, और आप लोगों के माध्यम से भी जो फीडबैक आएगा डेफिनेटली इसका भी बहुत अच्छे से संज्ञान लेकर इस पे भी आगे हम कार्रवाई करेंगे।
0: यस सर, एक बहुत अहम सवाल अभी मैम ने किया था कि पुलिसिंग की जो इमेज है उसको लेकर के आपने बताया किस तरह से पूरे सिस्टम में काम हो रहा है और किस तरह से आपका खुद का भी इनिशिएटिव है डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन एक ऐसा सवाल जिसके बिना मुझे लगता है ये बात अधूरी रह जाएगी, एक और पक्ष है जो कि आपका यानी पुलिसिंग का पक्ष है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि लोगों की तरफ से आप किन चीजों को देखते हैं और बताना चाहेंगे कि ये कमियां लोगों में कहाँ आती है, क्योंकि सिर्फ हमको, आपको ही नहीं समझना है कि हमें प्रॉब्लम क्या है, सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, लोगों को भी समझना होगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपके क्या दायरे हैं या कहाँ पे वो लैकिंग हो रही है, प्लीज इस बारे में आप जरूर बताएं।
1: देखिए, जैसा कि मैंने कहा, सोसाइटी बहुत तेजी से बदल रही है, लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, लोग अपने राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में बहुत जागरूक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्य ये है कि अपने कर्तव्यों के प्रति उनका ज्ञान थोड़ा कम है। और उसका सबसे सबसे बिल्कुल जो स्वतः स्पष्ट है वो उदाहरण आपको ट्रैफिक में देखने को मिल जाएगा। आप अभी रोड पर जाइए और आप देखिए कि शायद 99% लोग कोई ट्रैफिक रूल का पालन नहीं कर रहा, उनके द्वारा हेलमेट नहीं लगाया जा रहा, सीट बेल्ट नहीं लगाया जा रहा, गलत जगह गाड़ी पार्क की जा रही है, तमाम मतलब ये सारे नियम हैं, ये सारे उनके कर्तव्य हैं। और उसके बाद यदि ट्रैफिक पुलिस ने या सिविल पुलिस ने चेकिंग लगाई
0: जी
1: और उनका चालान काटा, अब जैसा कि नेगेटिव परसेप्शन वाली बात होती है, डेफिनेटली पुलिस का काम नेगेटिव है, चालान काटेंगे, आपके जेब पे चोट लगेगी, आप बिना गाड़ी के कागजों के जा रहे हैं सिनेमा देखने, पुलिस ने रोका, गाड़ी के कागज नहीं है, गाड़ी सीज होगी, नियम है, MV एक्ट में नियम है, आप पुलिस को अच्छी अच्छी बातें तो कहेंगे नहीं, मन में कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हुए आप चले जाएंगे बुदबुदाते हुए। पुलिस का काम ही ऐसा है। जब सोसाइटी जागरूक नहीं है तो डेफिनेटली, जैसा कि मैंने कहा, अधिकारों के बारे में तो सब जागरूक है कि ये हमारा अधिकार है, कर्तव्यों के बारे में कहीं ना कहीं लैकिंग है। अभी उसके संबंध में भी हम प्रयास करते हैं। आज कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता है ट्रैफिक नियम क्या है? ट्रैफिक अवेयरनेस को तो मैं बिल्कुल एक शैम मानता हूँ, कुछ ऐसा चीज नहीं। सबको पता है कि हमें हेलमेट लगाना है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है, बहाने कई हैं। मैं स्कूलों में जाता हूं तो खासकर यंगस्टर्स को प्रयास करता हूं समझाने का, कैसे कैसे एक्सीडेंट सीन देखने को मिलते हैं जिसमें हेलमेट ना लगाने की वजह से कैसे कितनी कीमती जाने चली जाती हैं। उसके अलावा भी तमाम मामले जो हमारे पास आते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि पुलिस तो उल्टा हमसे पूछने लगती है, जैसे थाने पर हम गए कोई शिकायत लेकर, पुलिस तो उल्टा हमसे 50 सवाल करने लगती है। अगर उसी पुलिस की जगह आप बैठें और आप देखें कि सुबह से शाम तक कैसे कैसे लोग कैसी कैसी शिकायतें लेकर आ रहे हैं, तब आप समझेंगे कि क्यों ये पुलिस 50 सवाल पूछती है। अगर किसी गिल्टी को जो कसूरवार है हम कुछ समय ना पकड़े, हो सकता है कार्रवाई में समय लगे, ये एक सिनेरियो है, और कोई जो बिल्कुल इनोसेंट है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर दें, इन दोनों में से कौन सा सिनेरियो हम प्रेफर करेंगे? डेफिनेटली वो सिनेरियो प्रेफर करेंगे कि जो गिल्टी है भले थोड़े देर में उस पर कार्रवाई हो, लेकिन ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में हड़बड़ी में किसी इनोसेंट के ऊपर हम कार्रवाई कर दें।
0: जी,
1: हमारा कानून भी इसी सिद्धांत पे काम करता है कि भले ही 100 कसूरवार छूट जाएं, लेकिन एक बेकसूर को सजा ना हो, इसी सिद्धांत पे काम करता है। इसलिए पुलिस को कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं, लेकिन डेफिनेटली लोगों का इतना वास्ता उन चीजों से नहीं है तो वो यही फील करेंगे कि आप हमें ही कसूरवार समझ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ सवाल हमें जानकारी के लिए जरूरी होता है ताकि हम पूरे फैक्ट को समझ पाएं।
0: राइट,
1: कई बार मैटर कुछ होता है, लोग उसे कुछ और बना के लाते हैं, उन्हें लगता है कि इतना लिख के देंगे तो इतने पे कार्रवाई नहीं होगी, हम इसको इतना लिख के देते हैं तब भी हमें प्रॉब्लम होती है।
0: जी,
1: वो उनसे पूछिए जो वो आपको पुलिस की तारीफ करके बताएंगे जो गलत फंस रहे थे और पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके समय लेकर और अपनी नेगेटिविटी झेलकर उनको बचाया है। तो ये सारी चीजें हैं जो लोग नहीं समझ पाते हैं, और डेफिनेटली मैं, क्योंकि लोगों का पाला नहीं पड़ता है, अच्छा भी है कि अपना अपना काम चलता रहे, किसी को उस तरह की प्रॉब्लम में ना फंसे कि जरूरत पड़े, हम यही मनाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, धीरे धीरे सब समझेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, लोग अपने अधिकारों के प्रति तो हैं, कर्तव्यों के प्रति भी होंगे जागरूक। प्रयास हमारा है, आपका भी प्रयास इस दिशा में रहेगा।
2: आज के इस प्रोग्राम से एक बात तो सर क्लियर हो गई कि जितने भी लोग आज ये सुनेंगे इस प्रोग्राम को, तो उनके दिमाग में ये आएगा कि खाली पुलिस का ही काम नहीं है, उनका भी कुछ काम है। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है, दोनों हाथ वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं आवाज निकलने के लिए। तो आप अपनी तरफ से आवाज उठाइए और पुलिस आपके साथ है, इस इमेज को खत्म करने के लिए कि पुलिस हमारा साथ नहीं देती है। गवर्नमेंट की तरफ से भी, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत सारी सेमिनार्स को कंडक्ट किया जा रहा है, लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है, और आज इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे लोगों के दिमाग से भी ये बात निकल गई होगी कि अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो हमको ही वो कल्प्रिट बना के कटघरे में खड़ा कर देगी।
0: बेशक, और कहते भी हैं कि भाई एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, सिर्फ एक पहलू पे अगर निगाह डाली जाएगी तो शायद वो सच्चाई नहीं सामने लाएगा। और बड़ी ही अच्छी बात मुझे लगी कि जैसे कि आपने एग्जांपल दिया उनके चाचा का, ऑफ कोर्स ये एंगल्स हम लगा के देखते ही नहीं है, हम सीधा सीधा जो कुछ बताया जा रहा है, जो कुछ भी मिलता है उसके अकॉर्डिंग अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन ये सच है कि कोऑपरेशन से ही होगा, अगर पुलिस हमको कोऑपरेट कर रही है तो हमारा फर्ज बनता है कोऑपरेट करना, क्योंकि वो भी हमारे बीच के ही हैं, जाहिर सी बात है नॉर्मल ह्यूमन लोग होते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। सर, ये बात हुई किस तरह से आप डील करते हैं, किस तरह से केसेस आ जाते हैं और पुलिसिंग की इमेज को लेकर के, अब एक जो बहुत अहम बात है जन सुनवाई, जहां पे हर छोटी मोटी समस्या को सुना जाता है, बहुत सारे केसेस आते हैं, और कहते ही हैं कि जैसे आपने पहले ही बताया था कि कोई अकेला भी आया है तो वो भी अपनी बात कह पाता और डायरेक्ट आप तक वो बातें आती हैं, नहीं हो रहा है हो रहा है, सारी चीजें सामने आ जाती है। इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि अभी वक्त हो गया एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आने वाले हैं, और बहुत अहम सवाल है जन सुनवाई, क्योंकि अक्सर हम पेपर में भी सुनते हैं जन सुनवाई हुई और इसमें इतने में से इतनी समस्याओं का निस्तारण किया गया। सो हमारे श्रोताओं से मेरी गुजारिश है कि इस सवाल का जवाब जरूर सुनिए, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है। मिलेंगे ब्रेक के उस पार, सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं आपके अपने इवनिंग वाले शो गोधली में। आप सुन रहे हैं रेडियो 11.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, मिस्टर विनीत जायसवाल, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SP गोंडा। सर, जाने से पहले अभी हमने आपसे क्वेश्चन किया था, जन सुनवाई एक बहुत ज्यादा नाम ऐसा है जो हम अखबारों में सुनते हैं और ये सुनते हैं कि आपके यहाँ जन सुनवाई होती है। जन सुनवाई में आप किस तरह की ज्यादातर केसेस देखते हैं और जन सुनवाई से लोगों को क्या बेनिफिट हो रहा है, प्लीज इसके बारे में बताएं।
1: देखिए, जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं सभी अपने अपने ऑफिसेज में 10 बजे से बैठ जाते हैं, अवेलेबल रहते हैं पब्लिक के लिए, और गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही प्रायोरिटी वाला विषय है। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, शासन से और सीनियर स्तर से सीनियर ऑफिसर्स को फोन करके चेक किया जाता है कि 10 बजे तक जो ऑफिसर्स हैं अपने ऑफिस में पब्लिक के लिए जन सुनवाई के लिए बैठ गए हैं या नहीं। मतलब इसकी बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग भी ऊपर से होती है। जन सुनवाई का बेसिकली पर्पज ये है कि तमाम ऐसी समस्याएं हैं लोगों की, थाने स्तर पे अगर वो एड्रेस नहीं हो पाई, या उसके ऊपर हमारे सर्किल ऑफिसर्स होते हैं डिप्टी SP रैंक के, अगर वो एड्रेस नहीं कर पाए या एडिशनल SP स्तर तक नहीं हो पाया, तो जो SSP हैं वो अपने ऑफिस में बैठेंगे, पब्लिक के लिए 3-4 घंटे समय देंगे और उनको सुनेंगे। आपके माध्यम से ही मैं सभी को बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कई लोगों में कई बार सुना है ये फीडबैक, लोग सीधे ऑफिसेज में जाने से झिझकते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम भी इस सर्विस में नहीं थे तो हम भी सोचते थे कि किसी बड़े ऑफिस में अगर हम जाएं, क्या पता वहां कोई मिलने ना दे। इतना आप सभी को मैं अश्योर करना चाहता हूँ, यदि ऑफिसर अपने चैम्बर में बैठा है वो इजीली एक्सेसिबल है, आराम से आपको मिलेगा। क्योंकि कई बार काफी लोग इस चीज को मिसयूज भी करते हैं, बाहर कई इस तरह के लोग रहेंगे जो आपको ये कह के कि हम आपको मिलवाएंगे, हो सकता है आपसे कोई लाभ भी ले लें, अनुचित लाभ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ऑफिसर्स जन सुनवाई में उस शिकायत को ज्यादा तवज्जो देता है जिसमें उसे लगता है कि कोई लाग लपेट के नहीं कहा गया, ये व्यक्ति अकेले बिना सिखाए पढ़ाए अपनी दिल की पीड़ा बता रहा है। और जन सुनवाई में ये है कि एक पब्लिक से सीधा संवाद रहता है, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, हमारी लोकल पुलिस कैसे बिहेव कर रही है लोगों की समस्याओं के प्रति, हमें उसका एक पल्स मिलता रहता है। इसलिए जन सुनवाई पब्लिक के लिए भी जितनी इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए है कि एज अ सीनियर ऑफिसर 70 किलोमीटर दूर यहाँ से थाना है खोड़ारे, वहाँ की पुलिस कैसे काम कर रही है, उसका फीडबैक वहाँ की जनता जब हमारे यहाँ आएगी, कोई भी अग्रीव्ड पार्टी ए या बी हो, तो वो हमें देगी, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए भी एक बहुत मददगार फीडबैक मैकेनिज्म साबित होता है। और जन सुनवाई में जो भी लिखित में शिकायतें मिलती हैं उसका फॉलोअप भी होता है, उसपे प्रॉपर टाइम बाउंड इंक्वायरी होती है, उसमें क्या हुआ, सही हुआ, गलत हुआ। कई बार ज्यादातर ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका हल शायद ना हो पाए पुलिस विभाग में, वो रिवेन्यू से संबंधित होती हैं, जमीन संबंधी होती हैं, मेड़ के झगड़े हैं, चकबंदी का विवाद है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो उसमें कम से कम इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स हमारे द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन उसका परमानेंट सोल्यूशन हमारे पास नहीं है, तो संबंधित विभाग को या राजस्व विभाग को हमारे द्वारा रिफर करते हैं। बाकी जो भी पुलिस के मैटर्स हैं उनको वहां पर एड्रेस किया जाता है। तो ये उसका बेसिक पर्पज है कि अगर आपकी सुनवाई लोकल लेवल पर ना हो तो आप कम से कम जिले के SSP से मिलकर अपनी बात रख सकें।
0: जी, तो पहली चीज तो ये क्लियर हुई कि ये कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है कि डायरेक्ट वो अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं अगर उनका लोकल लेवल पे निस्तारण नहीं हो रहा है। एंड दूसरी बात, आपने कहा कि आपके एंड से भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि फिर आपको वो चीजें रियल फीडबैक मिलता रहता है कि आखिर में प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। सर, एक बात आती है FIR की और EFIR, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं आखिर FIR किस कंडीशन में होती है, आखिर FIR होता है क्या है, सो हम चाहेंगे कि इन शॉर्ट प्लीज आप बताएं FIR और EFIR क्या होता है।
1: देखिए, कई ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसको हम लोग IPC में कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, तो जब भी किसी को लगता है कि हमारे साथ कोई घटना हुई है और वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो रिटर्न एप्लीकेशन थाने पर देगा और घटना के संबंध में बताएगा, तो उसकी FIR होनी है। आमतौर पे कई बार ये परसेप्शन रहता है कि FIR लिखने के लिए हमारे थाने की पुलिस थोड़ा रिलक्टेंट है, उसे टाल रही है। ये बात भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है कि कई इस तरह जहां पर आंकड़ों की समीक्षा ज्यादा होती है वहां पर पुलिस ये सब प्रयास करती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आजकल इतने मैकेनिज्म्स हैं कि यदि किसी को FIR लिखानी है और एक स्तर पे उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो सही समय पर वो दूसरी जगह उस चीज को फ्लैग करके वो करा सकता है। और कुछ समय पुलिस डेफिनेटली लेती है, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी आपको बताया, एक बेसिक जांच के लिए कि ये जो बातें वो लिखित में दे रहे हैं, एक बेसिक इंक्वायरी कि ये घटना हुई भी है या नहीं हुई है। कई बार लोग पेशबंदी में कोई मैटर कुछ और होता है, उसे कुछ और दिखाने के लिए, यहाँ तक कि अब देखिए, पब्लिक को हो सकता है इस चीज पे बहुत भरोसा ना हो, लेकिन कई ऐसे मामले आते हैं कि उल्टा किसी को पीट दिया और खुद आ गए पहले कि मैं पहले चला जाऊंगा या पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा तो मेरी कार्रवाई हो जाएगी।
0: बेशक।
1: इसलिए पुलिस थोड़ा समय लगाती है, एक बार स्पॉट विजिट करती है, प्रयास करती है कि दोनों पक्षों को देख लिया जाए, सुन लिया जाए, तब निर्णय पर आती है। और कुछ लोगों का हो सकता है जेन्युइन मामला हो लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा डिले हो जाए तो डेफिनेटली वो इससे डिसेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेसिक इंक्वायरी जरूरी होती है और FIR रजिस्टर करना सबका अधिकार है और अगर आपके साथ कोई क्राइम हुआ है तो वो FIR रजिस्टर होगी। और जैसा कि मैंने कहा, सभी से मेरी अपील रहेगी, अगर किसी को भी लगता है कि थाने लेवल पे FIR नहीं हो रही, आप सीनियर ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बैठे हैं कि वो थाने की वर्किंग को मॉनिटर कर सके, सही समय पर आप उन्हें बताइए, आपकी FIR जरूर होगी और उसमें कार्रवाई भी जरूर होगी।
0: जी बहुत सही बात आपने कही, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि हम थाने गए थे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा टालने का प्रयास हो रहा है, इतनी जल्दी FIR नहीं लिख रही, लेकिन अगर इस एंगल से हम देखें तो बिल्कुल ये बात सही है कि मान लीजिए मेरे साथ कोई क्राइम होता है और करने वाला वहां जाकर के पहले कर लेता है तो फिर इस तरह से तो मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, लेकिन पुलिसिंग की अगर ये जो आपने बताया कि ये इस एंगल से जाते हैं कि नहीं पहले दोनों पक्षों को देख लें, सुन लें, समझ लें एंड इसके बाद फिर कार्रवाई करें, तो ये बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि जो भी श्रोतागण इस बात को सुन रहे हैं आज, उनको इस बात का अंदाजा हो रहा होगा कि आखिर क्यों पुलिस टाइम लगाती है। सर एक जो बहुत बड़ी समस्या शहर में देखने को मिलती है एनक्रोचमेंट की, तो उसके बारे में बताएं थोड़ा सा और उसके सेक्शंस के बारे में।
1: अब देखिए अगर एनक्रोचमेंट के बारे में बात करें तो वो सीधा सीधा पुलिस के परव्यू में नहीं आता
0: जी,
1: और बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल पूछा क्योंकि ये प्रॉब्लम है और बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ पुलिस के पास नहीं है। ये जितने ज्यादा लोगों को ये बात पहुंच जाए मेरे लिए उतना अच्छा है, पुलिस के लिए उतना ही अच्छा है
0: जी,
1: क्योंकि प्रॉब्लम है और पुलिस से ही हमेशा पब्लिक अपेक्षा करती है कि पुलिस ये एनक्रोचमेंट हटवाए। ये वैसे मैं लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये प्योरली एक म्युनिसिपल फंक्शन है, जैसे बड़े शहरों में नगर निगम होता है, हमारे जिले में नगर पालिकाएं हैं या ग्रामीण इलाकों में नगर पंचायतें हैं, ये उनका काम होता है कि वो एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाएं, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव उन्हें हटवाएं और एनक्रोचमेंट की दशा में कुछ फाइन लगाएं। पुलिस को इस क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं है कि वो उन पे पेनल्टी लगाए, ये स्थानीय जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है वो करती है। और जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चलता है उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो, लोग उसको विरोध ना करें, इसके लिए साथ में जितनी भी पुलिस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें उपलब्ध कराई जाती है ताकि वो अपनी कार्रवाई स्मूथली कर सके। लेकिन ये पब्लिक हमेशा, क्योंकि मैंने कहा जैसे आपको बताया शुरू में भी, पुलिस सबसे ज्यादा विजिबल अंग है स्टेट का सिस्टम का, लोग पुलिस से ही अपेक्षा करते हैं कि पुलिस इन्हें हटा दे, तो कहीं ना कहीं कानूनी रूप से कुछ अड़चन है। तो जब भी समय समय पर हम भी प्रयास करते हैं कि प्रशासन से समन्वय बनाकर या नगर पालिका को थोड़ा पुश करके बीच बीच में ये ड्राइव चलवाएं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा और कुछ चीजें देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती हैं, रोड उतने ही हैं, गाड़ियां बढ़ गई हैं, मार्केट एक्सपैंड हो रहे हैं, लोग रोजी रोटी के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी समस्या है जिसकी वजह से ये इंक्रोचमेंट हमें ज्यादा दिखता है।
0: बेशक ये बात बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से रोड पे वाहन बढ़ गए हैं, और अगर मान लीजिए कोई रेहड़ी वाला है, अब उसको उसका भी रोजगार उसी से चलता है, उसके पेट पलता है, उसका उसकी फैमिली चलती है, तो ये सारी बातों का भी ध्यान रखा जाता है। और दूसरी बात आपने सही कहा कि ये काम म्युनिसिपल पार्टी का होता है, यहाँ की अगर हम बात करें गोंडा की तो वो नगर पालिका का काम है। बेशक सर ट्रैफिक का आपने अभी एक मुद्दा उठा था बीच में, और चूंकि जो सबसे मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम गोंडा में बनती जा रही, स्पेशली अगर हम अपने शहर की बात करें तो ट्रैफिक की ही प्रॉब्लम है, अननेसेसरी जाम देखने को मिलता है, हॉर्न लोग ब्लो करते जाते हैं और बहुत सारी ऐसी समस्याएं देखी जाती है कि एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं और लोग फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, इवन इसी में झगड़े भी हो जाते हैं कई लोगों के, तो मैं जानना ही चाहूंगा कि पुलिस को इन सारी चीजों को ट्रैफिक कंट्रोल करने में आखिर किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और पब्लिक की तरफ से उनको क्या अपेक्षाएं हैं।
1: ये ट्रैफिक जैसे जैसे हम और तरक्की करेंगे, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट एक सोशल प्रॉब्लम है वो ट्रैफिक की ही आने वाली है, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है
0: जी।
1: इसके लिए जो एक बेसिक है वो 3E अप्रोच है, 3E हैं इसके, लेकिन उसमें सबसे पहला है इंजीनियरिंग, सेकंड है एजुकेशन, थर्ड है इन्फोर्समेंट। अगर हम इन 3E की बात करें तो जो सबसे पहला मैंने इंजीनियरिंग बताया, अगेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास चौड़ी रोडें हों, पार्किंग्स हों जहाँ पे पार्किंग होनी चाहिए, फ्लाईओवर हो, जैसे तमाम आपने देखा होगा आपके जिले में कई ऐसे क्रॉसिंग्स हैं जो बंद हो जाती हैं और खुलती हैं तो स्वाभाविक है, नेचुरल है कि वहाँ जाम लग जाएगा,
0: लग जाएगा,
1: तो फ्लाईओवर। तो ये जो इंजीनियरिंग वाली अप्रोच है वो पहली चीज है जो कई लोग इग्नोर करते हैं और अगेन सारी चीजें पुलिस पे डालते हैं। दूसरी चीज एजुकेशन, समय समय पर पुलिस लोगों को अवेयर करती है ट्रैफिक रूल्स के बारे में। तीसरी चीज आती है इन्फोर्समेंट, जो बेसिक पुलिस का काम है, ये होल सोल पुलिस का काम है इन्फोर्समेंट। अगर कोई ट्रैफिक रूल वायलेट कर रहा है उसका चालान करना, कहीं पे वन वे करना है उसको इन्फोर्स कराना, नो पार्किंग में अगर गाड़ी जा रही है उसको इन्फोर्स कराना। लेकिन समस्या ये है कि जब तक पहली ई कामयाब नहीं होगा, ये थर्ड ई की आप अपेक्षा ना करें,
0: नहीं कर सकते।
1: अगर शहर में कहीं पार्किंग ही नहीं है और आप लोगों को नो पार्किंग के लिए चालान कर रहे हैं, तो आप खुद समझ रहे हैं, तो ये तो लोगों के साथ एक दोहरी मार होगी।
0: बेशक
1: कोई पार्किंग नहीं है और हम डेली 1000 लोगों का चालान कर रहे हैं नो पार्किंग के लिए, कोई ऑटो स्टैंड नहीं है तो हम ऑटो वालों को चालान कर रहे हैं, क्योंकि लोग हैं, पब्लिक है, वो ऑटो पकड़ेगी पकड़ेगी, ई रिक्शा पकड़ेगी पकड़ेगी।
0: बिल्कुल।
1: अगर हम उन्हें कोई एक जगह स्टैंड नहीं दे पाए, क्योंकि आबादी इतनी बढ़ रही है, शहर में बाकी निर्माण इतने हो रहे हैं, इतना स्पेस अगर शहर में नहीं मिला जहां पे एक ई रिक्शा स्टैंड हो, तो पब्लिक ई रिक्शा तो पकड़ेगी पकड़ेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: फिर वो नजदीकी चौराहे से पकड़ेगी, और जहाँ सप्लाई है, डिमांड है, वहाँ सप्लाई है। तो ये सारे इश्यूज मैं आपको बस एक समस्या की जो जटिलता है वो समझा रहा हूँ।
0: जी जी।
1: लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके प्रति हम सजग नहीं है। अभी पिछले महीने ही खुद कमिश्नर साहब, जो मंडलायुक्त महोदय है इस पूरे मंडल के, वो खुद, मैं, मेरी पूरी टीम, RTO, विभिन्न विभाग जो इससे ताल्लुक रखते हैं,
0: जी,
1: EO, नगर पालिका, सभी लोग खुद पैदल घूम के इस पूरे एरिया को, जो हमारे चोक पॉइंट्स है उन्हें देखा गया है, बस स्टैंड के पास दूर दूर के जो चौराहे हैं, प्रॉपर उनका एक खाका बना है। और बीच में चुनाव आ गया, इसलिए थोड़ी सी वो कार्यवाही अभी हमारी इग्नोर हो गई है, लेकिन जैसे ही हमारे जनपद का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद पूरे जोर शोर से वो जो पूरा खाका हमने प्लान तैयार किया उस पे अमल लाएंगे। और निश्चित तौर पे मैं श्योर कराना चाहता हूँ आपको कि कुछ न कुछ निजात इस पूरे जटिल समस्या से हम जरूर दिलाएंगे। सभी लोग इस प्रति पूरी ईमानदारी के साथ कार्यरत हैं।
0: जी बेशक। और सर, मैंने ये भी आपसे कहा था कि आप क्या अपेक्षा करते हैं लोगों की तरफ से, ट्रैफिक को अगर देखते हुए कहा जाए।
1: जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, इवन स्कूल का बच्चा भी, जो ट्रैफिक रूल्स को न जानता हो। बस इतना ही सभी से निवेदन है कि जो ट्रैफिक रूल्स को आप जानते हैं, कृपया करके उसका पालन करने का प्रयास करें, ताकि आपके साथ साथ ही दूसरों की भी जीवन की सुरक्षा हो सके और आपको भी कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बस ये।
0: बेशक बेशक, बहुत ही जेन्युइन अपील है। और इसके बाद सर, एक चीज ये है कि आप चूंकि पूरी पुलिसिंग को देखते हैं जिले में, और कहीं ना कहीं आप एक कप्तान की भूमिका में हैं, तो एक टीम लीडर का जो एक बहुत बड़ा रोल होता है टीम को लेकर के चलना, उनके साथ आपका बिहेवियर क्या है, उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, तो मैं पर्सनली आपसे जानना चाहूंगा कि मिस्टर विनीत जायसवाल का क्या रिलेशन है अपने ऑफिसर्स के साथ में, अपनी टीम के साथ में, किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, टॉप टू बॉटम कैसे चलता है।
1: देखिए, किसी भी इस लीडरशिप की भूमिका में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। मेरा कम्युनिकेशन मेरी टीम के बिल्कुल, जो हमारे जमीन का सिपाही है, उससे बिल्कुल साफ है। तभी आवश्यकता पड़ती है तो मैं सीधे सिपाही से भी बात करता हूँ, उसकी समस्याएं भी सुनता हूँ, और यदि उसकी वजह से किसी और को समस्या आई हो तो उसके संबंध में भी उससे बात करता हूँ। कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर है, जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो मेरी अपेक्षाएं हैं, डाउन द लाइन सबको बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेटेड है जो हमारी अपेक्षाएं हैं। वो एक फॉर्मल सेटअप हो गया। बाकी जब हम इनफॉर्मली मिलते हैं तो कोई भी अक्रॉस रैंक कोई डिफरेंस नहीं है। हम अक्सर शाम को खेलते हैं पुलिस लाइन में, हमारे सभी जवान, मैं खुद रहता हूँ, हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी, जो भी गेम हो सब साथ में खेलते हैं, एक टीम की तरह खेलते हैं। जो भी तीज त्योहार है हम कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी करते हैं, और उसके बाद कंधे से कंधा मिला के त्योहार भी मनाते हैं। पुलिस का एक बहुत पुरानी परंपरा है, हमारी पुलिस लाइन में होलिका दहन भी होता है, सब लोग साथ पूजा करते हैं। जिस दिन सब लोग होली खेलते हैं उस दिन 24 घंटे पुलिस कड़ी मेहनत से ड्यूटी करती है, हम सब करते हैं साथ खड़े होके, ताकि सब कुछ चैन से बीते, लोग आपस में झगड़े ना, कहीं कोई कानून व्यवस्था की समस्या ना हो, एक्सीडेंट ना हो, ताकि अगले दिन हम अपनी पुलिस की होली खेलते हैं अक्रॉस द रैंक, कहीं कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल अच्छे माहौल में। और डेफिनेटली जब हम इस तरह से साथ में कंधे से कंधा मिला के त्योहारों को भी इंजॉय करते हैं, तो ये पुलिस का एक मनोबल दिखाता है कि हाँ, पुलिस का मनोबल ऊंचा है, वो मेहनत से ड्यूटी भी करेंगे, और फिर जब समय आएगा तो हमारे जो पारंपरिक त्योहार हैं उसको भी हम अच्छे से मनाते हैं। तो बहुत अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी टीम है, हमारे बड़े अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं, यंग ऑफिसर्स हैं, और जो हमारे पुलिस के जवान हैं वो भी काफी अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इवन ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और डेफिनेटली धीरे धीरे जो ये पुलिस की इमेज की बात हो रही है, मेरी बहुत उम्मीदें हैं इस नई पीढ़ी से, जो लोगों की नई समस्याओं को समझती है, और धीरे धीरे यही बदलाव इस पूरे विभाग में लाएंगे।
0: बेशक। तो ये आपने चूंकि पुलिस की इमेज पे भी बात की, और ऑफ कोर्स बताया कि आपके रिलेशंस किस तरह है, एक टीम का कोऑर्डिनेशन किस तरह है। किसी भी शख्स के लिए सर वैल्यूज बहुत बड़ी बात है, और हर इंडिविजुअल की अलग अलग वैल्यूज होती है। मैं जानना चाहूंगा कि मिस्टर विनीत जायसवाल की क्या वैल्यूज है, जिसको वो कहते हैं कि ये मेरे लिए नॉन निगोशिएबल है।
1: नहीं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, अगर वैल्यूज की बात करें तो सिस्टम आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आपकी इंटीग्रिटी, इम्पेकेबल इंटीग्रिटी हो। प्रायः देखने में आया है कि कई ऑफिसर्स हैं सिस्टम में जो बहुत ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, इंटीग्रिटी वाले हैं, लेकिन व्यवहार में उनके थोड़ा एरोगेंस आ जाता है
0: जी,
1: इंटीग्रिटी अच्छी होने की वजह से। मैंने बहुत ही शुरुआती दौर में ही ये बात सीख ली कि अगर इंटीग्रिटी है हम में और ईमानदार है तो उसकी वजह से एरोगेंट होने की आवश्यकता नहीं है। शुरू शुरू में ऐसा मेरे साथ भी होता था, क्योंकि जब आप बहुत ईमानदारी से और बिल्कुल साफ, बिना किसी मोह के, बिना किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के काम कर रहे हो, तो एक अंदर से कड़कपन आ जाता है। लेकिन वो कड़कपन बहुत आवश्यक नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड और अपराइट होने के साथ साथ आप लोगों से मधुर व्यवहार भी कर सकते हैं। ये फिर मैंने धीरे धीरे, जैसे जैसे आई ग्रू अप इन द सर्विस, मैंने सीखा। शुरू में मैं बहुत अकड़ जाता था, ये गलत बात मैं सुन भी नहीं सकता, मैंने बिल्कुल सामने वालों को बिल्कुल खत्म कर दो। एक बार तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं जब अंडर ट्रेनिंग था एक थाने में
0: जी,
1: एक मलपुरा थाना है
0: जी,
1: तो कोई लोकल पॉलिटिशियन था वहां का बड़ा, ही केम और अपना काम कराने के लिए उसे लगा कि ये लोकल रूटीन थाने का है, तो उसने मुझे कुछ इनडायरेक्टली, डायरेक्टली प्रलोभन बहुत रेयर है कि किसी की हिम्मत है कोई आगे से आकर डायरेक्ट कोई प्रलोभन दे दे, इनडायरेक्टली उसने कुछ प्रलोभन देना चाहा
0: जी।
1: मैंने उसको फिर ऐसा दुरुस्त किया कि फिर वो जीवन भर याद रखेगा।
0: ओके।
1: और फिर मुझे इतना उसकी हालत देख के बाद में तरस भी आया। आज धीरे धीरे थोड़ा उसमें परिवर्तन है। लोग देखिए, वो चाहते हैं कि उनका काम हो, उस काम के लिए वो बहुत तरह की सिफारिशें करेंगे, प्रयास करेंगे। मेरा काम ये है कि सबकी बातें सुनना, सबकी बातें सुनना और जो सही है वो करना। और सिस्टम में इतना आपको फ्रीडम है, स्पेशली गवर्नमेंट में, इस गवर्नमेंट में इतनी फ्रीडम है कि अगर सही काम है तो आप बिल्कुल बोल्डली वो काम करिए, सब आपको सपोर्ट करेंगे, बैकअप करेंगे। इसलिए इस सरकार में एक इंटीग्रिटी के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो आप बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा पद नहीं है जो आपसे गलत काम करने का दबाव डाल दे, तो मेरिट पे काम हो। जैसा कि मैंने कहा, इंटीग्रिटी एक नॉन निगोशिएबल चीज है और वो इंसान के साथ रहती है। आज मैं यहाँ हूँ, कल कहीं और रहूंगा, लेकिन जब भी मेरे सीनियर्स या मेरे कलीग्स मेरा नाम लेंगे तो वो जानेंगे कि हाँ, ये एक ऐसा ऑफिसर है। तो बस ये एक जीवन की सफलता है, करियर की सफलता है, अगर हम वो एक रेपुटेशन अपनी बनाने में सफल रहे और उसी की दिशा में लगातार हम प्रयास करते रहते हैं
0: जी। तो चूंकि मैंने वैल्यूज की बात की थी कि भाई जीवन के कुछ मूल्य होते हैं जो हमारे लिए नॉन निगोशिएबल होते हैं, हम कहते हैं इससे हम कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। और ये आपका जो एक हमें अप्रोच नजर आया अभी बातचीत के दौरान, कि एक तो होता है कि आप ईमानदार हैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं या बहुत कड़कपन आपके अंदर आ जाता है और ये जेन्युइनली देखा जाता है, बट आपने कहा नहीं, उसको भी आपने, आपकी इनसाइट आई सामने, आपकी लर्निंग ये रही कि नहीं, इसमें भी लोगों से मधुर व्यवहार किया जा सकता है, लोगों से मिला जुला जा सकता है और अपनी बातों को उस तरह से भी रखा जा सकता है। और मुझे लगता है इसीलिए कहा जाता है कि जीवन पर्यंत सीखना इसी का नाम है, कि आपको उसके अंदर भी बहुत माइन्यूट लेवल पे चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बाद उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सर अब चलने का वक्त हो गया है और ये आज का इस टॉक शो का आखिरी प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि आपको पता है कि आप रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि देवी पाटन मंडल और गोंडा का पहला FM है। और जिस तरह से हमारे शो यहाँ से ब्रॉडकास्ट होते हैं, हम बातचीत करते हैं, कई पर्सनालिटीज को बुलाते हैं और हम श्रोताओं में भी एज ग्रुप को टारगेट करते हैं, बुजुर्गों के लिए अलग प्रोग्राम्स होता है, महिलाओं के लिए अलग, युवाओं के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, इस तरह के बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स हैं, इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM इसको सुनने वाले श्रोताओं के लिए क्या बदलाव ला रहा होगा।
1: देखिए, पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आपकी पूरी टीम को, बहुत ही अच्छा काम आप लोग के द्वारा किया जा रहा है और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गोंडा जैसे डिस्ट्रिक्ट के लिए जो आपने कम्युनिटी रेडियो यहाँ पे शुरू किया है। मैंने भी कई बार आपके शोज सुने हैं, कई लाइव सुने हैं, कई बाद में रिकॉर्डेड आपके सुने हैं। जितनी डाइवर्सिटी आपके शो में है, अलग अलग टॉपिक्स को आप लोग छूते हैं, निश्चित तौर पे जैसे जैसे लोग ज्यादा सुनेंगे उन्हें ज्यादा इसका लाभ मिलेगा, चाहे वो कुछ कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं। कई बार मैंने कुछ ऐसे शोज आपके सुने हैं बिल्कुल करंट टॉपिक्स पे, लोगों को बिल्कुल क्लियर इंसाइट देना, नॉलेज भी है, मनोरंजन भी है, जीवन की कुछ सीखें भी हैं, कुछ हमारी संस्कृति के बारे में भी आपके कार्यक्रम मैंने देखे हैं। निश्चित तौर पे बहुत ही सुनहरा भविष्य आप लोगों का भी है। मेरी तरफ से पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और जैसे जैसे लोग इसके साथ जुड़ेंगे ये गोंडा के लिए एक बहुत ही अच्छी धरोहर बहुत अच्छी विरासत साबित होगी और निश्चित ही दूसरे भी आपसे प्रभावित होंगे और अन्य भी जो यहाँ पे कॉलेजेस हैं वो भी आप लोगों से सीख लेंगे। और ओवरऑल कॉलेज के बारे में भी मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी रेपुटेशन आपकी कॉलेज की है और बहुत एक सोशल वर्क की तरह ये आप लोग कर रहे हैं और निश्चित तौर पे समाज का हर जो श्रेणी है वो आपके इस चीज को सराहना भी करता है।

0: सेवा ही कर रहा है। सो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आपने इतने ज्यादा बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल करके इतना सारा वक्त दिया, और ऑफ कोर्स वक्त आपने लोगों को दिया जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं हमारे श्रोताओं के लिए। और मुझे उम्मीद है कि इनमें से जो यंग एस्पिरेंट्स थे जिनको आईपीएस आईएएस बनना है इन फ्यूचर, उन्होंने आपकी बातों को सुना, उससे बहुत सारी लर्निंग उनकी हुई होगी। और हमारी जो पब्लिक है, जो जनता है जो हमको सुन रही है, उनको आज पुलिसिंग के बारे में पता चला होगा किस तरह से काम करती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, इमेज किस तरह से बनती है, हमारे साइड से क्या क्या लैकनेस है उसको हमें खत्म करने की जरूरत है, किस तरह का कोऑर्डिनेशन हमको पुलिस के साथ में करना चाहिए। ये सारी चीजों पे बहुत ही सहजता और सरलता के साथ में आपने बेबाक होकर के इसका आंसर दिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच।
0: सो आप श्रोताओं से भी हम गुजारिश करेंगे कि अपना फेवरेट वाला एफएम गुंडा एफएम, ऑफ कोर्स रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम सुनते रहिए। कल वापस से मुलाकात होगी इसी शो में किसी नए मेहमान के साथ कुछ नई बातों को लेकर के। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम।

0: देखिए तो।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
4: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे,

0: दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
1: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें एटिस्किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

कुछ नाम किताबों में सुनहरे अक्षरों में लिखे गए, कुछ नाम समय की धूल में कहीं छिप गए, मगर तिरंगा जब भी आसमान में लहराता है, हर नाम बलिदान हमें याद दिलाता है। नमस्कार, राम राम, आदाब, जय हिंद। आप सभी सुन रहे हैं गोंडा मैसेज मसाला, आरजे बीना वाला। आज हर्ष उल्लास का दिन है। आज सिर्फ 15 अगस्त की शाम नहीं है, आज की शाम उन सपनों को याद करने की शाम है, जिनके लिए ना जाने कितने लोगों ने अपना सुख, अपना घर और अपना भविष्य देश के नाम कर दिया था। हम अक्सर कुछ महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम सुनते हैं, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लेकिन आज हम बात करेंगे उन अनसुने और कम चर्चित स्वतंत्रता सेनानियों की, जिनकी कहानी भी उतनी प्रेरणादायक थी जितनी बाकियों की। आज मैं आपको बताऊंगी उन शख्सियत के नाम, जिनके नाम जानना हमारी जिम्मेदारी है। किताबों में नहीं कहीं, कभी चर्चाओं में नहीं, पर हैं, उनका नाम अमर है। एक ऐसा देश हमारा जहां अपने फैसले लेने की स्वतंत्रता नहीं थी, अंग्रेजी शासन के खिलाफ किसी की आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी, आजादी सिर्फ सत्ता बदलने का नाम नहीं था, सम्मान की आजादी, अपने विचार कहने की आजादी, अपने भविष्य का फैसला खुद करने की आजादी, यही थी असली आजादी। जिस उम्र में हम सब मस्ती करते हैं, घूमते टहलते हैं, उस उम्र में हमारे देश के जवान अपने वतन को अपनी प्राण न्योछावर करके चल दिए। तो आज की शाम देश के नाम,

नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है, माँ मेरी देखेगी नाचना जरूर है, जरूर है।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास?
2: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।

0: नमस्कार, आदाब, प्रणाम। हमारे साथ मौजूद हैं वापस से आपके दर्द दिलों को कम करने वाले और आपको आपकी वाली से हम करने वाले डॉक्टर लव। सो डॉक्टर लव, स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मीना जी।
0: और बताइए, आपका आज का दिन कैसा रहा भाई? आज का दिन तो भाई हर किसी के लिए होली दिवाली से भी बढ़कर होना चाहिए, मुझे लगता है।
1: बिल्कुल,
0: बड़े बड़े त्योहार से भी ऊपर होना चाहिए हमारा आज का दिन, क्योंकि भाई ये दिन ना होता तो होली दिवाली ना मनती।
1: सही कहती हैं आप, ये दिन ना होता तो शायद त्योहार नहीं मनता। तो वास्तव में बहुत ही शानदार दिवस है और इस शानदार दिवस की शुभकामनाएं सभी को।
0: आज तो भैया मैंने घर पे भी पूरी सब्जी खीर सेवई ये सब पूरा बनाया मामला।
1: आप हमको ललचवा दें।
0: ललचवाए क्या, स्वतंत्रता दिवस है माने कोनो बड़े त्योहार से कम है। इंसान को बाकायदा मुझे लगता है कि इस पे भी अपने घर की सजावट पता चलनी चाहिए। स्वतंत्रता होली आती है पता चलता है, दिवाली आती है पता चलता है, ईद आती है पता चलता है, बकरीद आती है पता चलता है, वो क्रिसमस आता है वो जीजस वाला जो है वो भी पता चलता है, सब पता चलता है। किंतु स्वतंत्रता दिवस पता चल तो जा है, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो झंडा बच्चों के हाथ में है, मतलब कोई घर नहीं सजाता।
1: हाँ, घर नहीं सजाता, घर को दुल्हन की तरीके से सजा देना चाहिए।
0: दुल्हन तो नहीं, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी कि कुछ एफर्ट्स तो करने चाहिए।
1: नहीं नहीं सही है, मतलब कुछ दिए जलाएं,
0: जो भी हम कर सकते
1: जो भी हम कर सकते
0: क्योंकि मुझे लगता है कि ये त्योहार देश के हर त्योहार से सर्वोपर है।
1: सही है, ये आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली
0: और मिलने में बड़ा संघर्ष भाई। कभी कोई आके राज कर रहा था, कभी कोई आके राज कर रहा था, हम लोग मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसी सत्ता से गुजरे हैं। अगर हम लोग अपना इतिहास पढ़ें तो स्पेशली मध्यकालीन जो हमारा इतिहास है वो बड़ा ही अजीब सा रहा है।
1: अजीब सा रहा है। और जो है बच्चों को ये जरूर बताइए कि हम 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे, लेकिन उनके साथ हमको लगता है ये भी बताना चाहिए कि हम गुलाम क्यों हुए थे।
0: गुलामी क्या थी एक्चुअली में, हमारे जो बहुत एक बड़ी पॉपुलेशन है उसमें भी लोगों को यही नहीं पता है, मतलब जो उस जमाने के थे वो जानते हैं, लेकिन अभी भी ऐसी जो हमारी जेंजीज है, जेन अल्फा है, इनके लिए आज़ादी शब्द मतलब एक वो है, रील डालने का एक मौका और एक मतलब कह सकते हैं कि कुछ नया करने नाचने कूदने का दिन। बट आई डोंट थिंक सो कि उन्हें इसका मतलब भी पता है कि गुलामी क्या थी। भाई आप तभी समझ सकते हैं किसी चीज़ का सोल्यूशन जब आपको प्रॉब्लम पता हो।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगी कि भाई असली में हमारे साथ हो क्या रहा था, तो मुझे लगता
1: शायद आजादी का मार्क्स
0: तो बुक्स इतना सफिशिएंट तो नहीं बता पा रही है।
1: हाँ, नहीं बता पा रही है और ये हम लोग का कर्तव्य है कि बताए।
0: यस यस यस भाई, इंसान घर से निकलने से डरता था। कब किस आदमी को पकड़ के ले जाते थे ब्रिटिशर्स, अपनी फौज में भर्ती कर लेते थे। उन्हें अपनी मर्जी के कपड़े पहनने की आजादी नहीं थी। कुछ क्षेत्रों में तो इतना मतलब इन लोग का ये जो वेस्ट बंगाल वगैरह है इधर, मतलब इन सब का इतना मतलब क्या कह सकते हैं प्रकोप था, जैसे बीमारी का प्रकोप होता है। क्यों
1: डॉक्टर,
0: आप बताइए, आप तो उस जमाने के हैं।
1: नहीं, हम तो उसी जमाने के हैं, आजादी हमारी आंखों के सामने हुई है, हमने सब देखा है। और जान लीजिए हंटर वगैरह बहुत मारते थे, उसे कोड़ा वगैरह मारते थे, बताइए दादा।
0: और मैं अगर जलियांवाले बाग का जो दृश्य थोड़ा सा भी इमेजिन करूँ ना, रूह कांप जाती है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे मतलब एक गोली से बचने के लिए दूसरी मौत के पास जा रहे थे।
1: वास्तव में जो वहाँ दरवाजा था वो छोटा था और जो है वो भगदड़ से गोलियों से लोग कम मरे और भगदड़ से ज्यादा मर गए।
0: अरे ये बताइए, अगर भगदड़ से ना मान लीजिए कि भगदड़ ना हुई होती तो क्या गोली ना चलाते वो?
1: नहीं, वो चलाते ही चलाते,
0: मरना तो कैसे भी था।
1: शहादत हुई है, वो शहीद हुए हैं। वास्तव में वो एक नाक को नम कर देने वाला किस्सा है।
0: इट्स ओके धर्मेंद्र जी, कोई बात नहीं, हम लोग अभी इतना सीरियस ले ही नहीं पाए हैं स्वतंत्रता दिवस को, कभी कभी निकल जाता है गणतंत्रता दिवस ही। इन्होंने मैसेज में कहा कि पहले मैंने गणतंत्रता लिख दिया था, कोई बात नहीं, पर वो कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स या हमारे गार्जियंस का दोष है जो हमें उस हद तक समझाया ही नहीं गया। हम कभी दिवाली को होली नहीं लिखते।
1: सही बात।
0: पर स्वतंत्रता के साथ हो जाता है कॉम्प्रोमाइज़।
1: नहीं, हो भी जाता है कहीं कहीं, टू वर्ड इज ह्यूमन, मतलब
0: हाँ हाँ बाकी यार मैं भी, मैं तो होली पे बोल देती हूँ दिवाली हैप्पी होली, जब मुझे विश करना होता तो मेरे मुंह से दिवाली पे होली और होली से दिवाली विश होता है।
1: हाँ वैसे दिवाली में अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाए तो लोग कहते हैं होली है। मतलब एक अंग्रेज आया था इंडिया में एक बार, तो उसने अपनी पुस्तक में लिखा, उसने
0: नहीं ऐसा नहीं है, कुछ अंग्रेजों ने मतलब हमारे देश में कुछ अच्छी चीजें भी की, इतनी अच्छी की कि जिनको हमें याद करना चाहिए। एक अंग्रेज था, उसका नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा, वो हमारे इधर राजस्थान में आया था, और राजस्थान के ऐसी बहुत सारी पहचान थी जो राजस्थान के ही लोगों को नहीं पता थी, वो उसकी किताब में लिखने के बाद, मैं नाम भी मुझे किताब का भी नहीं याद आ रहा है और उस अंग्रेज का भी नहीं याद आ रहा है, वो अच्छे पोस्ट पे भी उसका,
1: तो उनसे हम चाहे तो डिसिप्लिन सीख सकते हैं, अनुशासन सीख सकते हैं, मतलब
0: अब सीखे चाहे जो, लेकिन हम उनसे चालाकी भी सीख सकते हैं, उनसे गद्दारी भी सीख सकते हैं,
1: ये तो बात सही है, लेकिन मतलब जो अच्छी चीजें थी जो
0: लेकिन मैं स्वतंत्रता दिवस के दिन उनको अच्छा तो नहीं कहूंगी,
1: बिल्कुल नहीं अच्छा कहेंगे,
0: लेकिन एक बात और मैं कहूंगी कि भाई देखो एक बात तो ये है कि हमारे दादा परदादा की खेत की मेड़ के लिए हो गई दुश्मनी, दादा परदादा मर गए, ना आप खेती कर रहे हो ना मैं खेती कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि हमें आपस में दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात।
0: कोई अंग्रेज हमारे देश में आता है तो अभी भी कुछ लोग बहुत अजीब सा ट्रीट करते हैं उनके साथ, तो वो नहीं होना चाहिए भाई, उनके पता नहीं कौन पुरखे थे या नहीं थे, लेकिन हम अभी भी उनके लिए, देखिए सोच का एक डायमेंशन होता है जिसको हमें मेंटेन रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात।
0: किसी भी डायमेंशन में एक ही सोच को दौड़ा देना इट्स नॉट जस्टिफाइड,
1: से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल सही।
0: तुम्हारे साथ हैं सोनिया, हमारे साथ हैं क्रिकेट लवर, देश लवर भी आ जाते तो बढ़िया लगता, हमारे साथ हैं केके जी, केके जी ने बहुत सारी शुभकामनाएं दी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और भाई आज़ादी का दिन सच में सबसे खास है, और आप लोग बताइए, वैसे अगर मैं लड़कों से पूछूं तो लड़के कहेंगे कि हमें बीवी से आज़ादी कब मिलेगी,
1: स्वतंत्रता दिवस पर ये प्रमुख विषय होना चाहिए कि बीबी की मांग से कैसे पाए छुटकारा,
0: ये तो मांग भरने के पहले सोचना चाहिए था,
1: मतलब असली में लड़के जब मांग भरते हैं तो खुश,
0: मांग भरने का ही मतलब है कि अब हर डिमांड पूरी करने की जिम्मेदारी
1: जिंदगी भर मांग भरनी है,
0: तो कोई ये ना बिल्कुल भी कहे,
1: इसलिए अगर किसी ने अभी तक नहीं भरी है तो वो
0: ना भरे, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं वो ना बने,
1: ना भरे,
0: कुछ लोग तो 30 बार भर के 31वीं की तैयारी कर रहे हैं, इतना उनके पास पैसा है
1: भाई, इतना तो भाई पैसा है और इतना टाइम है और इतना टैलेंट है, मैनेजमेंट है।
0: अच्छा ये बताइए
1: जी,
0: मातंगिनी हाजरा को जानते हैं?
1: ना नहीं जानते हैं।
0: यही है आजादी, यही है आजादी, इन्होंने आजादी के बारे में पढ़ा होगा। तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, एक ऐसी महिला की जिनकी उम्र रही होगी उस समय 73 वर्ष, नाम था मातंगिनी हाजरा। भारत छोड़ो आंदोलन जब था तो उस समय उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रदर्शन में भाग लिया था, जैसे कहते हैं ना लीड करना, प्रदर्शनकारियों को लीड करना, वो काम उन्होंने किया था। और देखिए एक कॉल आ रहा है, देखते पहले कौन है फिर इनके बारे में हम बताते हैं, क्योंकि हमारे डॉक्टर लव को भी नहीं पता इनके बारे में, सावित्री बाई फूले इनके बारे में कुछ पढ़ा होगा।
2: वार्निंग, फोन इज नॉट कनेक्टेड। किड
0: डिस्कनेक्ट हो गया कॉल, मुझे लग रहा है। तो चलिए हम अपनी कहानी को पूरा करते हैं, तो इनके बारे में मैं बताऊं तो इन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था, और गोलीबारी होने के दौरान इन्हें गोली लगी थी, गोली लगने के बाद भी ये देश के नारे लगा रही थी,
1: क्या बात।
0: और इनकी कहानी जो है वो ये बताती है कि देशभक्ति के लिए आपको 20-22 साल का होना जरूरी नहीं है, आप 73 साल की उम्र में भी अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं।
1: निभा सकते हैं, बिल्कुल सही है। एज इज जस्ट नंबर।
0: हेलो हेलो
3: हेलो, गुड इवनिंग मनोज जी।
0: हेलो गुड इवनिंग, आपकी बात आरजे बीना और डॉक्टर लव से हो रही है जनाब, आपका शुभ नाम?
3: जी मैडम जी, मैं संदीप बात कर रहा हूँ पटेल नगर से।
0: संदीप जी स्वागत है आपका, कैसे हैं संदीप जी? पहले ये बताइए बहुत सारी शुभकामनाएं
3: आपको लोगों की। मैडम जी आप
0: तो डॉक्टर लव से क्या सवाल करना चाहते हैं संदीप जी?
3: अरे सर तो मेरे जो है गुरु के गुरु ही हैं, उनसे सवाल हम लोग क्या करें?
0: अरे गुरु है इसीलिए तो सवाल करेंगे। गुरु कहते हैं ना कि जिस गुरु तस चेला, मांगे गुरु तमामे ढेला। सो गुरु और चेला का वही है कि गुरु आपको आपके राह दिखाएगा, तो सवाल कीजिए, ये राह दिखाने के लिए तैयार बैठे।
3: मैडम जी मेरे पास तो कोई खास सवाल है नहीं, मगर सर की प्रोग्राम सुन रहा था तो मैंने कहा सर से चलो बात कर लेते हैं।
0: अरे वाह क्या बात है, तो फिर आप आगे भी बने रहिए डॉक्टर लव, थोड़ा अपनी आवाज़ सुना देंगे।
1: जी हाँ संदीप जी नमस्कार।
3: नमस्ते सर कैसे हैं सर
1: जी? और स्वतंत्रता दिवस की बहुत ढेर सारी
3: शुभकामनाएं आपको भी सर, आपको भी और पूरे जो है गोंडा वालों को और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सबको भी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि सबकी मतलब वैसे ही देशभक्ति वाले दिन मुझे लगता है किसी के अंदर कोई सवाल ही नहीं रह जाता। अच्छा डॉक्टर लव ये बताइए, जब आप 23 साल के थे आप क्या करते थे?
1: हम जब 23 साल के थे हम क्या करते थे उस समय? तो हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे।
0: शादी हो गई थी। 23 साल की उम्र में शादी हुई थी?
1: मेरी पहली शादी 18 साल की उम्र में हुई थी।
0: अरे तो एक तो आपकी 8 में भी हुई होगी, और बताइए।
1: हाँ तो वो ही तो जब हम 18 साल के थे तो जैसे हमको ये पता चला कि इतनी उम्र होनी चाहिए तो हम समझ नहीं पाए लड़के की या लड़के की, हमने कहा चलो 18 कोई तो है।
0: तो मतलब आप बीवी के बनाए हुए पराठे चट कर रहे
1: हैं? एकदम मतलब
0: खाने का मन कर रहा है इसी बात पे,
1: कुछ खाने का मन कर रहा है।
0: तो चलिए देखते हैं किसी का कॉल आ गया, तो सुनते हैं अगली आवाज किसकी है। हेलो नमस्कार
4: जी। नमस्कार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जनाब, आपका नाम जानना चाहते हैं।
4: ये पहचानिए, आवाज से तो पहचान गई होंगी।
0: मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मुशीब जी लग रहे हैं।
4: जी हाँ भारी आवाज है ना इसलिए।
0: बारह बंकी वाले
4: जी। और बताइए आप लोग कैसे?
0: दो पहचान है आपकी, एक तो आप फोन बहुत कम करते हैं और जब करते हैं तो शनिवार को अक्सर करते हैं, तो इस वजह से मैं और पहचान जाती
4: हूँ। जी।
0: तो कैसे हैं मुशीर जी, क्या हाल है
4: आप? नहीं टाइम थोड़ा कम मिलता है ना। हाँ हाल चाल बढ़िया है, टाइम थोड़ा कम मिलता है इसलिए ज्यादा कॉल नहीं कर पाते हैं।
0: ये बात तो
4: सही, और कोई बात नहीं है।
0: ये बताइए डॉक्टर साहब को आप क्या कहना चाहेंगे आज, क्या सवाल करना चाहेंगे?
4: डॉक्टर साहब से बस यही कहना चाह रहे हैं कि आज का जो दिन था उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं उनके लिए। और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो इसका कुछ उपाय बताएं, कुछ गर्मी कम हो जाए।
0: देखिए सबसे पहला कारण तो ये है कि देश में जो है डायबिटिक पेशेंट्स बढ़ गए हैं, तो उस वजह से घरों में रोटियां ज्यादा बनने लगी हैं, चावल लोग कम खाने लगे हैं। एक कारण डॉक्टर लव ने अभी जल्दी ही बताया कि मतलब इनके क्या कहते हैं क्लिनिक पे एक पेशेंट आए अपनी पत्नी के साथ, तो बोले मेरी पत्नी बहुत नाराज रहती
4: अच्छा।
0: है ये है वो है और कहती है गर्मी बहुत है गर्मी तुम्हारे वजह से है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा
4: अच्छा।
0: आपकी वजह से क्यों गर्मी है? बोले कि सर मैं हूँ डायबिटिक और मैं चावल खाता नहीं हूँ, रोटी बनती है और इस वजह से उनको गर्मी लगती है, किचन भी बहुत गर्म होती है, तो आधी गर्मी तो मध्य देश में रोटियाँ बनने की वजह से हो गई है। क्यों डॉक्टर?
4: ये तो बात सही है। और डॉक्टर लव साहब को जो एक हम मशवरा देना चाहेंगे, ये जो शुगर के पेशेंट आते हैं इनके पास उसकी एक बेहतरीन दवाई हम बता दें ताकि ये जो है इनके पास जो पेशेंट आए वो ठीक हो जाएं। जामुन होता है, जामुन की जो गुठली होती है तो गुठली को सुखा ले, सुखा के उसका पाउडर बना के निहार में जो है एक चम्मच रोजाना इस्तेमाल करें ऊपर वाले ने चाहा तो जो शुगर के पेशेंट है वो परमानेंट के लिए ठीक हो जाएंगे 3 महीने के अंदर।
0: आप तो सीधे कहते हैं कि आप गुठली लीजिए और गुठली की बना लीजिए एक माला और वो पहन के घूमिए, आपकी अच्छा। शुगर कम हो जाएगी।
4: हाँ वो भी ठीक है, अच्छी बात है, माला तो पहनना चाहिए,
1: माला पहनना चाहिए और माला पहनना नहीं चाहिए।
0: तो बारिश का बता दीजिए कुछ डॉक्टर।
4: बारिश अच्छा डॉक्टर साहब बताएंगे, बताइए डॉक्टर साहब बारिश का।
1: अब हम जो है वो लग्गी मंगवाए थे पिछली बार इंग्लैंड से, तो खुदिहाल दिए थे
4: कर लीजिए
1: लंदन से, फिर हमने आर्डर दे दिया है।
4: हाँ इधर
1: आकाश में खुदिहाल
4: जी जी बताइए,
1: बारिश हो जाएगी। भैया अगर डायरेक्ट वहाँ जा रहा हो, उम्मीद हो आपको कोई भर्ती वगैरह हो तो उसके माध्यम से संदेश दिया जाए।
4: हाँ।
1: किसी का टिकट
0: कटने ये तो बहुत गलत बात बता दी आपने। अच्छा ये बताइए मुशीफ जी, कोई जा रहा है मान लीजिए बहुत सीरियस मामला है उसका, उससे जाके कहेंगे भैया जा रहे हो तो ऊपर जाना, भगवान से बारिश के लिए बात कर लेना, बेचारा ना जाना मतलब उसको जाना भी होगा तो वो नहीं जाएगा, कहेगा हाँ हाँ मैं जाऊं ऊपर, मतलब इनको बारिश के लिए, यहाँ मेरी जान निकल रही है और इनको बारिश की पड़ी है, मतलब मुझे तो नहीं लगता।
4: नहीं ऊपर जाने वाला तो वैसे भी थोड़ा सा सस्पेंस में रहता है कि अब पता नहीं स्वर्ग मिलेगा कि नर्क मिलेगी, क्या होगा, ये तो आदमी के कर्म के ऊपर होता है कैसे वो काम करता है
0: तलने वाला भी।
4: लेकिन हाँ जो दुआ जो है वो दुआ तो करनी चाहिए ताकि जो है सभी लोग सुखी रहे, मतलब बारिश के लिए हो या और भी चीजों के लिए है, दुआ करनी चाहिए परमेश्वर से, दुआ करनी चाहिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मांगने से मिलता है ज्यादा और नहीं मांगो तो मिलेगा लेकिन वो कम मिलेगा वो कुछ पता नहीं।
0: वैसे आप कहते हैं, वैसे हमारे यहाँ एक वो है कहावत, मांग क्या है, मांगे मिले ना भीख,
1: बिन मांगे मिलती
0: नहीं। मांगे मिले
1: ना भी, कुछ होता है सर आगे क्या होता है डॉक्टर?
0: आगे जो
4: होता है वो आगे देखा
1: जाएगा। आगे, आगे सही बात है, आगे क्या होगा?
4: लेकिन एक एकदम सही बात ही है कि अगर आप परमेश्वर से कुछ मांगेंगे तो आपको जरूर देगा, और नहीं मांगेंगे देगा लेकिन कब देगा ये कुछ पता नहीं।
1: संपर्क में हो कोई जिसकी मतलब टिकट जिसका कंफर्म हो चुका हो तो तुरंत उससे बात। हम लोग चल रहे हैं मिशन, वैसे मिशन पर चल रहे हैं और
4: ये सही। वैसे तो ऊपर वाले ने चाहा तो रात में जो है बारिश होगी
1: होगी, निश्चिंत रहिए आप,
0: निश्चिंत रहिए आपकी दुआएं हैं हम लोग की भी दुआएं साथ में लगेंगी और देश के हर जवान की दुआ लगेगी तो बारिश जरूर होगी क्योंकि आजादी मिली है भाई आज हमें, क्या कहना। बहुत
4: जी जी जी, हम तो सभी के लिए दुआएं करते हैं और जो है और करते रहेंगे हमेशा।
0: हम तो दुआ एक ही करेंगे कि आप फोन कर लिया करें टाइम से।
4: अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, टाइम निकाल के कॉल कर लिया करेंगे
0: डेफिनेटली। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके कॉल से, हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली।
4: ओके थैंक यू थैंक यू।
0: तो भाई मुशीफ जी से बात हो गई है और चलिए देखते हैं अगला कॉल किसका आता है। देखिए कॉल तो आता जाता रहेगा लेकिन बात जो थी स्वतंत्रता दिवस पे रुकी थी, फिर वहीं से शुरू कर देते हैं। क्यों डॉक्टर साहब
1: जी,
0: एक जन थी हमारी असम के तरफ की कनक लता बरुआ, ये एक युवा स्वतंत्रता सेनानी थी, इनके बारे में बताऊंगी लेकिन इस कॉल के बाद।
5: हेलो हेलो हेलो, आवाज आपकी कट रही है मैम, नहीं आ रही।
1: हेलो
0: हेलो हेलो हेलो, नेटवर्क इशू होने के कारण हम वार्तालाप नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। हेलो
5: हेलो
0: नमस्कार,
5: नमस्ते मैम, नमस्ते।
0: आपका शुभ नाम, स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।
5: आपको आपको भी शुभकामनाएं। मौजूद राकेश कुमार शुक्ला मेरा नाम है सर।
0: जी जी, राकेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
5: जी गोंडा से बात कर रहे हैं फिलहाल।
0: अच्छा, गोंडा शहर से बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर लव से क्या सवाल करना चाहते हैं?
5: डॉक्टर लव से बस यही सवाल करना चाहते थे। बोले कि हमारी 18 साल उम्र में एज में हमारी शादी हो गई थी और हमारा तो 9 साल के उम्र में शादी हो गई थी।
0: बड़ा दर्द है आपके जीवन में तब तो।
5: हम तो 9 साल के उम्र में शादी हो गई थी, बाल रूम में हम कुछ जानते भी नहीं क्या होना चाहिए।
1: मतलब आपके हिसाब से आपके साथ न्याय हुआ है कि अन्याय हुआ है?
5: अब ये तो ऊपर वाले जाने, राम जी जाने, हम क्या बताते
0: हैं? जान सकते हैं न्याय अन्याय आपके साथ हुआ आप बता ही नहीं रहे।
5: अब वही अन्याय हुआ है जी कि अब हम कुछ जब होश हमारे तो हम कुछ दूसरे दिशा में भरमर करना चाहते थे। अच्छा। उसके पहले कुछ हमारे सामने दूसरी मुसीबत आ गई।
1: ये तो दोनों को जब आपको होश आया मतलब मोहब्बत क्या होती है, दुख आपके जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश कर चुका था।
5: हाँ, हमारा लाइन और लेंथ दोनों ही आ गई थी, आज भी है।
1: नहीं तो कोई
5: आज भी है डॉक्टर साहब, लेकिन बस यही है कि राम जी की और बजरंग बली की कृपा से हम कितना ही दूर भाग जाएं लेकिन वो अपने पास से हमको छोड़ते नहीं है। समझ लो कि हम उनको नहीं छोड़ते।
1: ये बात तो सही है, लेकिन आपका विवाह 9 साल की उम्र में हुआ और हमारे
5: डॉक्टर
1: विवाह 6 साल की उम्र में हुआ।
5: आपका दर्शन भी चाहते हैं और हनुमान जी के राम जी की कृपा से
1: जी
5: लखनऊ रोड पे नकहा बसंत एक पड़ता है
1: जी,
5: उसी पे मतलब मूर्ति बनवा रहे हैं श्री बालाजी की
1: जी,
5: कुछ लोग वहीं पे सेवक दास में खाली लगे हुए हैं।
1: सेवा करना
5: हमारा शुरू से काम है। कोई बूढ़ बुजुर्ग है उसकी भी फ्री सेवा, कोई कुछ लेना देना नहीं। अब कोई अथाह जैसे कोई मतलब जानवर है अनबोल पास, उसका भी सेवा हमारा शुरू से।
1: आप परमानंद के कार्य में साधु भरा शरीर आपने बहुत बढ़िया काम किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमको हमसे बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
5: डॉक्टर साहब आपसे बात करके हमको भी कुछ राहत मिला है आज।
0: डॉक्टर लव की आवाज़ किसी जादू से कम नहीं, ये केवल अपनी आवाज़ से ही लोगों के दिल को जीत लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब एक शाम जब पेट्रियोटिज्म से जुड़ी है तो गीत सुनना तो बनता ही है। तो चलिए सुनते एक प्यारा सा देशभक्ति गीत जो आपको जोड़ देगा आपके देश की धड़कन के साथ, क्योंकि आप सुन रहे हैं गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बजाते रहो।

0: सैकड़ों मेहमान और 500 से ज्यादा स्टाफ होटल में फंसे हुए हैं।
1: आसमां में कितने परिंदे या मुसाफिर या है शहर के, ढूंढते हैं सब अपना मकान।
2: Get through this, we must stick together.

0: Wow. It's almost as big as an orange.
1: Bihan, 8 दिन के अंदर अंदर तुम पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हो. एक बेहतरीन टीम तैयार करो. I wish you all the best.
2: Thank you very much, sir.

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9260 9817961 9817। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
6: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।
7: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
8: डिलीशियस
9: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
8: और क्या क्या है खास?
9: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
8: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
10: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो

0: ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए

0: साहब, आज की शाम स्वतंत्रता वाली और एक नाम छेड़ा था और आप तब से कह रहे हैं बताइए बताइए बताइए, तो मैंने कहा बता ही दूं कि कनकलता जी बरुआ जो कि एक युवा स्वतंत्रता सेनानी थी, मैंने आपसे पूछा भी था कि 23 साल की उम्र में आप क्या करते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था तो वो भी स्वतंत्रता का जो जुलूस था, ऐसा नहीं है कि जब आंदोलन होते थे तो उसमें किसी को शहीद नहीं किया जाता था, भले आंदोलन करता हीरो बन के आगे चलता रहे लेकिन पीछे जो अंग्रेज होते थे जिसको भी थोड़ा दबा पाते थे उसको मौत के घाट या फिर जेल में डाल दिया करते थे। उनकी उम्र बहुत कम थी उस समय, लेकिन देश के प्रति जो उनका साहस था वो बेहतरीन था। और युवा स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी है, उस समय मतलब लड़कियों को बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिलते थे, एक तो अशिक्षा ही एक बहुत बड़ा कारण था कि मौका ना मिल पाता था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया आसाम से। हेलो,
1: नमस्कार, शुभ संध्या मैम।
0: शुभ संध्या, स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं सबलू जी, कैसे हैं आप?
1: मैं काफी अच्छा हूँ आज तो, हद से ज्यादा प्रोग्राम में आप देखने को मिला है, बच्चा लोग काफी अच्छा अच्छा रंगारंग प्रोग्राम दिखाया उसमें भी।
0: हाँ, आज तो आपको झंडा रोहण करने का मौका मिला है, आपने बताया था कि आप ही के स्कूल में जहाँ पढ़ते थे, बहुत बड़ी बात है। अरे वाह, क्या बात है। तो डॉक्टर लव से क्या सवाल करना चाहेंगे?
1: मैं तो सवाल नहीं करूंगा क्योंकि एक इंटरटेनमेंट नहीं कहकर एक कविता ही आपके माध्यम से कहकर निकल चलेंगे।
0: क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन, शुक्रिया, स्वागत है।
1: और डॉक्टर लव सर को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार है।
2: जी नमस्कार आपको,
1: कैसे हैं सर?
2: जी एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।
1: आप तो डॉक्टर कम प्यार का डॉक्टर ज्यादा है, इधर उधर बात से इंसान को खुला देते हैं, फिर भी जो भी बात करते हैं दिल को भा जाता है, आपका एक बात करने का एक तरीका ही अलग है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो एक छोटी सी कविता है जीना जी।
0: जी स्वागत।
1: एक सॉन्ग आया हुआ था जिसे गाए हुए थे पंकज उदास जी, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, इसी टाइप में हम कविता जुड़े हुए हैं। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर यह पैगाम लिखा है, ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर यह पैगाम लिखा है, वो परदेश जाने वाले लौट के फिर आने वाले, सात समुंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून रिश्ते के तोड़ गया तू, आंखों में आंसू छोड़ गया तू, कम खाते हैं कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं, सुनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई, कांटे बन गई
2: बात की
1: बात की कलिया, कहते हैं सावन की झूले भूल गया तू, कभी हम नहीं भूले, तेरे बिना अब आई दिवाली, दीप नहीं जले है खाली, तेरे बिन जब आई होली फिचकारी तो छुटी है गोली, पीपल की सुना पनघट सुना, घर संतान है बना नमूना, फसल कटी आई बैसाखी, तेरा आना रह गया बाकी, पहले जब तू खत लिखता था कागज का चेहरा दिखता था, बंद हुआ ये मेल भी, अब तो खत्म हुआ खेल भी,

0: डोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे हैं नैना, मैं तो बापू हूँ मेरा क्या कहना। तेरी माँ का हाल बुरा है, तेरी बीवी कहती है सेवा सूरज से लगती है। तूने पैसा बहुत है कमाया, पैसे ने देश तुम्हारा छुराया। पंछी पिंजरा तोड़ कर आजा, देश पराया छोड़ कर आजा। आज उम्र बहुत छोटी है, अपने घर आजा, अपने घर आजा।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: एकदम परदेश में रहने वालों के लिए संजीवनी।
0: तो छूटना चाहेंगे, नमस्कार
2: जी। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने देश की माटी को इतना प्यार दिया और ये एहसास हम सभी के दिल में जगाया। मानसून का ये प्यारी सी गजल पंकज दास की आवाज़ में।
1: क्या बात है। तो इस गज़ल को सुन के दिल वाकई में भाव विभोर हो गया। और जो लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं उनके दिल में ऐसे ही ख्याल आते होंगे। अब बात करना चाहूँगी बेगम हसरत महल की, जो कि अवध की आवाज़ बनी। ये बात उस वीरांगना की है जो अवध के इतिहास में अपने स्वर्णिम अक्षरों से नाम लिखवा चुकी हैं। 1857 का जो विद्रोह था उस दौरान अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष के महत्वपूर्ण मोड़ पर उन्होंने लखनऊ में प्रतिरोध करके नेतृत्व किया था। उनकी कहानी खास इसलिए है क्योंकि ये बताती है कि 1857 का संघर्ष केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा, बेगम हजरत महल ने भी उसमें बेहतरीन भूमिका निभाई। आज हम लखनऊ, अवध, उत्तर प्रदेश की धरती की बात करते हैं तो हम उन आवाज़ों को भी याद करते हैं जिन्होंने हमारे आसपास होते हुए देश को आज़ादी दिलाने के लिए हर वो कर्म किए जो मुझे लगता है कि एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। माटी अवध की गवाही देती है, हर कण वीरांगना की कहानी कहती है। ये माटी, ये धरती खाली बलिदान से नहीं है, आज़ादी मिली लाखों अरमान से नहीं है। तो चलिए आगे भी बताऊंगी आपको एक और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, पर उससे पहले क्यों ना हम चले कि एक गाना सुन लें। क्यों डॉक्टर लव
2: जी? बिल्कुल बिल्कुल, सुन लिया जाए।

इस खूबसूरत से गीत से हम लोग समझ सकते हैं देश की आज़ादी कितनी ज़्यादा कीमती रही उस ज़माने के लिए। 1960 की फिल्म जिसका नाम है काबुलीवाला, 1961 में रिलीज़ हुई और इसमें लीड एक्टर बलराज साहनी थे और मन्ना डे की आवाज़ में। ये गाना ना सिर्फ एक गाना है बल्कि हम सभी के लिए भावना है। महज आज़ादी के कुछ ही वर्षों बाद ये फिल्म रिलीज़ हुई होगी तो मुझे लगता है कि ये गाना आज़ादी मिलने की खुशी की और उसके गम, उसके दौरान जो

0: हमने संघर्ष किया उसको महसूस कराता हो, क्यों डॉक्टर लव?
1: जी निसंदेह।
0: और मुझे लगता है अब समय है लिसनर से विदाई लेने का, और लिसनर सब सुनेंगे अपनी पसंद के गाने अपने आरजे सिंबल के साथ। तो चलिए हम लोग लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं अगले शनिवार को, करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए सुनना ना भूले अपना फेवरेट वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM, ये है
1: गुना शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे थे आरजे बीना के साथ शो गुना मैसे मसाला, आरजे बीना वाला डॉक्टर लव स्पेशल।

नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों, सलोनी रात के इस खूबसूरत मोड़ पर आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन पर आपकी अपनी पसंदीदा दोस्त हम नवा आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में आप सभी आ चुके हैं। सो देश के कोने कोने में आज स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया है दोस्तों। तिरंगे की शान में हर दिल झूमा होगा, हर दिल नाचा होगा, हर दिल कूदा होगा। लेकिन अब वक्त हो चला है इस आजादी के जश्न को सुरों से सजाने का और आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने का, यानी आपके अपने फरमाइशी की महफिल में आप सभी एकत्रित हो चुके हैं और जज्बात, तराने, गीत, महफिल, खुशियाँ, ये सब अब मुस्कुराएंगे। सो जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत। क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल।

हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आज के इस खास दिन पर, स्वतंत्रता दिवस पर, आप सभी प्यारे श्रोताओं के नाम एक खास शायरी है। तिरंगे की बुलंदी में हर हिंदुस्तानी का ख्वाब सजाएंगे, तिरंगे की बुलंदी में हर हिंदुस्तानी का ख्वाब सजाएंगे, अपनी सादगी और मीठी आवाज से हर दिल में नया साज बजाएंगे। आजादी के इस पावन पर्व पर मोहब्बत के नगमे बांटने आए हैं आज सिंपल सी अंदाज में, आपके हर फरमाइश को मुस्कुरा कर निभाने आए हैं। सो वेलकम इन योर शो अनिल वर्मा जी सैदापुर से, अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से, मोहित मालवे नगर गोंडा से, महेंद्र राजस्थान से, इम्तियाज अहमद गोंडा से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, रौनक तिवारी गोंडा से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, कार्तिक कश्यप गोंडा से, सोनिया तिवारी गोंडा से, रितेश साहू गोंडा से, राजेश सिंह जी मालवे नगर गोंडा से, आलोक राजपूत गोंडा से, शशि सिंह जी गोंडा से, राजू सीतापुर से, निधि कश्यप सीतापुर से, अंश कश्यप गोंडा से, ओ माय गॉड सुरेश कुमार जी चौक से, निबर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, आप सभी का स्वागत है आपके इंडिपेंडेंस डे वाली फरमाइशी की महफिल में। सो देरी किस बात का है, देरी किस बात की है दोस्तों। जज्बातों का पिटारा तो खुल चुका है, फरमाइशों का भी पिटारा खुल चुका है, बस देरी है सुनने का और आनंद लेने की। जी हाँ दोस्तों, पहली फरमाइश हमारे पास में है महेंद्र की राजस्थान से, और राजस्थान से महेंद्र को सुनना है गाना इट्स हैपेंस ओनली इन इंडिया, जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया। सो एंजॉय करते हैं ये पैट्रियोटिक सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ महेंद्र की फरमाइश पर, ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी लेकिन रियलिटी चेक करवाने वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: कन्हैया कहीं होता है भैया।
1: हमने एंजॉय किया ये पैट्रियोटिक सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ किसकी फरमाइश पर, महेंद्र की फरमाइश पर, जो कि है राजस्थान से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, लेकिन इसके पहले महेंद्र का कहना है दोस्तों, कागज की कश्ती से समंदर पार नहीं होते। सही कहा आपने, कागज की कश्ती से समंदर पार नहीं होते, सिर्फ दिखावे से गहरे इकरार नहीं होते, जो महसूस हो दिल की सीधी सादगी से, सच्चे रिश्ते कभी अल्फाजों के मोहताज नहीं होते। वाह क्या खूब कहा है आपने। अब इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है गाना है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ और भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। सो एंजॉय करते हैं ये एक और बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला पैट्रियोटिक सॉन्ग, लेकिन इस बार हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नव्या फ्रॉम गोंडा, और सबलू सावंत जी मुंबई से आपका स्वागत है। स्टे ट्यून्ड।

का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। ये तो बहुत ही सच्ची बात है। हम भारतीय बहुत प्रेमी होते हैं, हम दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं, और ये कितनी अच्छी बात है ना। दिल को हमेशा नर्म रखना चाहिए, दिखावा भले करें कि हम बहुत सख्त हैं, ये दिल पिघलता नहीं है, लेकिन दिल को पिघलना तो चाहिए। जो दिल पिघला नहीं फिर वो दिल दिल कहाँ, क्यों जुगल किशोर वर्मा जी। सो हमने इंजॉय किया है हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम लोग एक दूसरे के जज्बातों को और एक दूसरे के फरमाइशी गीतों को जरूर इंजॉय करेंगे, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। विजय पाल यादव जी ललुआ लखीमपुर खीरी से आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है, और इनका कहना है, आदरणीय बहन सिंपल जी नमस्कार, आपको स्वतंत्रता दिवस एवं हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं विजयपाल जी। सो एंजॉय कर लेते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में फिर से इंडिपेंडेंस डे वाले प्लेलिस्ट से, और ये पैट्रियोटिक सॉन्ग है आशु मिश्रा जी की फरमाइश, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, और दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा, ये बहुत ही प्यारा सा कर्मा का पैट्रियोटिक सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। आहा, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। कृति केवल और मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा। स्टे ट्यून्ड।

दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा पैट्रियोटिक सॉन्ग, सिर्फ और सिर्फ हमारी आशा मिश्रा जी की फरमाइश पे, जो की है लखनऊ से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो उस्मान खान जी, आपका स्वागत है। माही स्टे ट्यून एंड वेलकम इन योर शो। मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा की तरफ से आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए इस पावन अवसर पर हम देश की एकता, अखंडता और तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने का संकल्प लें। हमारे वीर स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान को शत शत नमन। तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारी पहचान है। जय हिंद और वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा जी। और आपके लिए चंद शब्द कहना चाहूंगी कि आंखों में देश का सपना, दिल में स्वाभिमान रखते हैं। आंखों में देश का सपना, दिल में स्वाभिमान रखते हैं। गोंडा से मिश्रा ऑप्टिकल वाले तिरंगे की शान रखते हैं। आजादी के इस पावन पर्व पर दिल से दिया है जो पैगाम, आपकी सच्ची देशभक्ति को आरजे सिंपल का शत शत प्रणाम। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली इंडिपेंडेंस डे वाली प्लेलिस्ट से सुपर डुपर हिट वाली फरमाइश। जी हाँ दोस्तों, रौनक तिवारी को गोंडा से सुनना है देशभक्ति वाला गाना, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन ए वतन। ओ माय गॉड, सो फरमाइशें तो आप सभी ने भेज दी, लेकिन दोस्तों आज मुझे सुबह से स्वतंत्रता दिवस वाला लड्डू खाने को नहीं मिला, तो लड्डू कौन भेज रहा है मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। फिलहाल इंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना। ओहो

मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। हमारे आज की इस आजादी के सुरूर को हम खत्म नहीं होने देंगे, कम नहीं होने देंगे। ये सुरूर बढ़ना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए सीधे सीधे 9:30 बजे तक। मैं तो ये कह रही हूँ कि बाहर ये गजल की भी महफिल में आज गजलों में भी वो शुमार होना चाहिए आजादी वाला, आजादी के सुरूर वाला। सो हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा और इस गाने को सुनने के बाद में तो ये एहसास जरूर हो जाता है दोस्तों कि हम कितने खुशनसीब हैं कि हमने इस आजाद मुल्क में जन्म लिया। मैं बहुत खुशनसीब हूँ दोस्तों। मेरा तो ये मानना है कि मैंने तो जैसे भगवान ने एकदम परफेक्ट मतलब अपने पास से भेजने के लिए मेरे लिए तो एकदम परफेक्ट डिसाइड किया था कि हाँ इस लड़की के साथ ये करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि मुझसे पूछ के डिसाइड किया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान ने मेरे साथ सब परफेक्ट किया है। मैं मतलब परफेक्ट देश में आई हूँ, मैं परफेक्ट देश में आके मैं परफेक्ट सिटी में आई हूँ, परफेक्ट सिटी में आने के बाद में परफेक्ट प्लेस पे भी मेरा बर्थ हुआ है। परफेक्ट प्लेस पे बर्थ होने के बाद में अगर ये देखा जाए तो मेरा बहुत ही अच्छे घर में जैसा चाहिए उस हिसाब से, जिस हिसाब से मेरे परिवार वाले झेल रहे हैं मुझे, उस हिसाब से दोस्तों पूरा देश मुझे नहीं झेल सकता। तो उस हिसाब से ना तो मेरा एकदम परफेक्ट परिवार में भी जन्म हुआ है। मतलब लाइक एवरीथिंग इज परफेक्ट इन माय लाइफ अगर भगवान के हिसाब से देखा जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। फरमाइशों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों और बढ़ेंगे अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइशी गीत जो हमारे पास में है वो है अनिल वर्मा जी की तरफ से, जो की है सैदापुर से। और अनिल वर्मा जी को सैदापुर से सुनना है गाना छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलके नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। ऑब्वियसली दौर नया हो चाहे पुराना हो, हम हिंदुस्तानी हर एक चीज के हिसाब से एडजस्ट होना जानते हैं। इसीलिए हम लोगों के लिए कामयाबी की सीढ़ियां बहुत दूर नहीं होती हैं और कामयाबी की मंजिल भी बहुत दूर नहीं होती है, बस ठान लेने की जिद होती है। सो एंजॉय कर लेते हैं अनिल वर्मा जी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। और मेरे लिए तो चैट बॉक्स में ढेर सारे लड्डू देसी घी के आ चुके हैं, क्या आप लोगों को भी चाहिए? हिस्सा लगा सकती हूँ ढेर सारा है। स्टे ट्यून्ड।

नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हमने एंजॉय किया है ये पैट्रियोटिक सॉन्ग। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, क्या चले अगली फरमाइशी गीत की तरफ। आजादी की रात है दोस्तों, आए हाय हम अपना जन्मदिन कितने अच्छे से मनाते हैं ना, ये तो फिर भी आजादी की रात है दोस्तों, कितनी बड़ी बात है ना दोस्तों। ये जो हम जो कुछ भी जो जितने भी राइट्स हमारे पास में है वो है ना, ये भी ना होते तो क्या होता। मेरी जैसी लड़की जो मतलब गलत अपने साथ हो रहा हो चाहे दूसरे के साथ हो रहा हो, गलत गलत है, कैसे भी गलत है, वो कैसे सरवाइव करती है ना अगर हम आजाद नहीं होते तो। मुझे तो ऐसा लगता है कि सोच भी ऐसी नहीं होती तब तो, कि क्या गलत है क्या सही है, जो गलत है वो भी सही है, जो सही है वो भी सही है, सब सही है ना दोस्तों। कभी कभी अगर सोचें, कभी कभी तो सोचें तो सच में ये दिन हमें सच में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, सिर्फ तिरंगा लहरा के, दो चार पैट्रियोटिक गाने सुन के सुना के, दो चार लड्डू बांट के खा के, सफेद कपड़े पहन के, भगवा कुछ लगा, मतलब लाइक प्रिटेंड करने से, फेक प्रिटेंड करने से अच्छा है सच में एक बार बस आंख बंद करके वो एहसास ही कर लें कि जो है आजादी के बाद हमारे पास वो नहीं होता तो ओह माय गॉड। और अभी भी हम बोलते हैं कि नहीं ऐसा है हमारा संविधान, वैसा है हमारा संविधान। अरे मैंने भी उठा के नहीं देखा, बहुतों ने नहीं उठा के देखा होगा, एक बार संविधान उठा के तो देखो। संविधान कभी किसी के साथ जो सही है उसके साथ तो गलत नहीं होने देगा। इफ यू आर 100% राइट तो नो वन कैन बीट यू, है ना। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, और हमें चलना चाहिए एकदम एनर्जी की तरफ, वाइब्स की तरफ, खुशियों की तरफ। ये फ्लैशबैक में लेके जाने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन दोस्तों अब जहन में आ गई बात, और मेरे से क्या है ना, बिना पचवाला के बातें पचती नहीं है, तो पचवाला तो मैं यहाँ खा नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैंने बातें डाइजेस्ट करनी यहाँ छोड़ दी है। जो मुंह में आएगा वो मैं बोल देती हूँ आप लोग से, अपने है ना समझेंगे, अच्छा लगेगा तो भी समझेंगे, बुरा लगेगा शायद तो भी समझेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सब बहुत समझते हैं मुझे। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। सो जय हो का ये पैट्रियोटिक सॉन्ग एंजॉय करते हैं सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन, स्टे ट्यून्ड, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नाजिया अंसारी और माही।

हमने एंजॉय किया है ये गाना जय हो का सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर, जो कि है आवाज विकास गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन इसके पहले बहुत ही प्यारी सी बात कही है अनिल शास्त्री जी ने। शुभ संध्या सिंपल जी, ये सेलिब्रेशन का नहीं श्रद्धांजलि का समय है उन क्रांतिकारियों के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है इस देश के लिए। पहले उनको श्रद्धांजलि दे, उसके बाद आप खुशियां भी कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम खुश रहें शायद वो भी यही चाहते हैं ना, हम सेलिब्रेट करें इस दिन को, शायद वो भी यही चाहते हैं ना। आपने बहुत ही गहरी और सच्ची बात कही है, जश्न तो बस एक जरिया है खुशी जताने का, असली नमन तो उन वीरों के बलिदान को दोहराने का है। आपकी इस बात का पूरा सम्मान करते हुए आरजे सिंपल और रेडियो परिवार के ओर से देश के सभी महान क्रांतिकारियों और अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी कुर्बानी हमेशा हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। शत शत नमन उन सभी अमर शहीदों को, उन सभी महान क्रांतिकारियों को। एंड थैंक यू सो मच अनिल शास्त्री जी अपना ओपिनियन रखने के लिए। अब इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। कार्तिक कश्यप को गोंडा से सुनना है गाना पैट्रियोटिक वाला, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, वंदे मातरम। सो इंजॉय करते हैं वंदे मातरम सिर्फ और सिर्फ कार्तिक कश्यप की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो सोनिया तिवारी।

वंदे मातरम, हमने एंजॉय किया है ये पैट्रियोटिक सॉन्ग। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है सोनिया तिवारी की। उनको सुनना है गाना जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करते हैं मोहम्मद रफी जी की आवाज में सिकंदर आजम का ये बहुत ही खूबसूरत सा पैट्रियोटिक सॉन्ग, सिर्फ और सिर्फ सोनिया तिवारी की फरमाइश।

भारत देश है मेरा। मोहम्मद रफी जी की आवाज में सिकंदर आजम का ये ओल्ड इज गोल्ड वाला पैट्रियोटिक सॉन्ग हमने एंजॉय किया है सोनिया तिवारी की फरमाइश पर। चलिए चलते हैं, बढ़ते हमारे आज के अगले आज़ादी वाले फरमाइशी गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूँगी आप सभी से दोस्तों कि इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज़ की दुनिया में, जहाँ हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सो एंजॉय करते हैं रितेश साहू की फरमाइश और ये है गोंडा से, इनको सुनना है देशभक्ति वाला नगमा ए मेरे वतन के लोगों। सो एंजॉय करते हैं लता मंगेशकर जी की बहुत ही दर्द भरी सी आवाज़ में ये बहुत ही दर्द भरा सा देशभक्ति वाला नगमा। मिलते हैं सीधे 9 बजे। जिन लोगों ने अभी तक पेट पूजा नहीं की है फटाफट से पेट पूजा कर लेना। मिलते हैं सीधे 9 बजे। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
2: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
2: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।
2: एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
2: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया।
2: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
3: आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली विरासत का स्मरण किया गया। इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। सेना के बैंड ने वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह करगिल के ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लातविया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवे नजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन ने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजो ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माउमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इसराइल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि इसराइली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
5: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

एंजॉय किया। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का आपके अपने फरमाइशी की महफिल में आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और हाँ दोस्तों, आज है आजादी की रात, तो आजादी की रात में हम सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं हमारी देशभक्ति गीतों का। सो अगली फरमाइश जो हमारे पास में है वो मालवे नगर से राजेश सिंह जी की है, और मालवे नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है गाना ऐ वतन ऐ वतन। सो एंजॉय करते हैं मोहम्मद रफी जी की आवाज में एक बार फिर से ये देशभक्ति वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

वतन हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा पैट्रियोटिक सॉन्ग मोहम्मद रफी जी की आवाज में मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। बढ़ेंगे हमारे आज के अगले फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं कुछ कहना चाहूंगी। सोहन लाल द्विवेदी का कहना है कि उठो धरा के अमर पुत्रों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नया प्राण भरो। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई, युग युग के मुरझे फूलों में नई नई मुस्कान भरो। युग युग के मुरझे फूलों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर पुत्रों, पुनः नया निर्माण करो। सो ये लाइंस थी सोहन लाल द्विवेदी की। बढ़ते अगली फरमाइशी गीत की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है आलोक राजपूत की गोंडा से। उनको सुनना है गाना तेरी मिट्टी में मिल जावा। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा केसरी पिक्चर का, विपराग की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ आलोक राजपूत की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा पैट्रियोटिक सॉन्ग बी प्राक की दर्द भरी आवाज में आलोक राजपूत की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ दोस्तों। अगली फरमाइश हमारे पास में है राजू की सीतापुर से और उत्कर्ष कश्यप की गोंडा से। इनको सुनना है गाना संदेश से आते हैं। सो एंजॉय करते हैं बॉर्डर पिक्चर का ये बहुत ही खूबसूरत सा पैट्रियोटिक सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ उत्कर्ष कश्यप और राजू जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

घर सुना सुना है। बॉर्डर का ये पैट्रियोटिक सॉन्ग हमने एंजॉय किया है। बढ़ते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है सबलू सावंत की, बोरीवली मुंबई से, लेकिन फिलहाल वो अभी इस वक्त इस समय अपने गांव पर है अपने परिवार के साथ।

तो आपके परिवार की तरफ से और सबलू सामंत जी आपकी तरफ से ये फरमाइश प्ले की जा रही है, वो देश हमारा है। कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाज़ में हम इंजॉय करेंगे ये पैट्रियोटिक सॉन्ग।

आपने इंजॉय किया कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा पैट्रियोटिक सॉन्ग सबलू सावंत जी की फरमाइश पर जो की है बिहार से। बढ़ते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की। मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है गाना जलवा तेरा जलवा। सो एंजॉय करते हैं हिंदुस्तान की कसम का ये बहुत ही खूबसूरत सा पैट्रियोटिक सॉन्ग। इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। सो दोस्तों अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समुन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को बिल्कुल भी नहीं मिस करना है क्योंकि शायद कल संडे फंडे को आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल आप सभी के बीच रहे तो ये शायद अभी शायद ही है। सो लेट्स सी कल क्या होता है, शायद मिलते हैं कल। तब तक के लिए टाटा, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अनूप मिश्रा जी आपका स्वागत है और आपको भी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो एंजॉय करते हैं मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा और अनूप मिश्रा की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नाम। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
5: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
5: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल 72 34 020 202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
6: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335484। अब बारी है आपकी।

0: जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 9.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और आज स्वतंत्रता का ये पावन दिवस, स्वतंत्रता दिवस का ये पावन दिन हमारे समक्ष है, तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत अच्छे दिन पे ये 15 अगस्त है, आज शनिवार है। आज तो आई गजलें हमारी हैं और गीत आपके हैं, तो आज उम्मीद किया सकती है कि आज के जो गीत होंगे वो देशभक्ति गीत होंगे। परंतु अगर आपको नहीं याद है तो जी हाँ, जो आप चाहें। मोहसिना अंसारी ये हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग शुभ संध्या आपको भी। और मनीष शर्मा जी आ चुके हैं जी, नमस्कार जी। मिश्रा ऑप्टिकल्स जी हैं गोंडा से, मनोज सर जी गुड इवनिंग और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी। मिश्रा ऑप्टिकल्स की तरफ से समस्त गोंडा वासियों, पूरे भारत वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए इस पावन पर्व पर अपने देश को एकता, अखंडता और तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ाने का संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जी, इससे पहले कि हम बात करें, हमारे पास कोई कॉल आ चुकी है, देखते हैं भाई कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ।
1: हेलो
0: दादा, चल स्पर्श।
1: अरे खुश रहिए, कैसे हैं?
0: जी जैसे आप रख लें,
1: जैसे समझ लें,
0: मतलब जैसे आप रखेंगे वैसे ही हम रहेंगे।
1: भाई हम तो रखेंगे आपको भी हमेशा, हमारे सर से भी ऊपर रहें।
0: अरे नहीं, मतलब आपका आशीर्वाद जैसा काम करेगा, और वो फिलहाल तो काम कर रहा है।
1: जिसको सर से ऊपर कर दिया तो आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा।
0: जी जी,
1: आप पहुँचे कि नहीं पहुँचे?
0: जी मैं स्टूडियो से बोल रहा हूँ, और आपकी प्रतीक्षा है कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत आप करने वाले हैं, फिलहाल आप ऑन एयर हैं।
1: अच्छा, चलिए धन्यवाद
0: जी दादा।
1: तो बताइए मैं कौन सा गाना आज सुनाऊं?
0: अब आज 15 अगस्त दादा, आप जो कुछ भी गाए।
1: हम भी स्वतंत्र हैं इसलिए हम कुछ भी गा सकते हैं।
0: जी
1: तो मैं एक्चुअली रियल बताएं, आज मेरी थोड़ी रिलैक्सेशन था, आज मैं छुट्टी थी, तो 10 बजे के बाद मैं पूरा रिलैक्स था
0: जी।
1: कोई ऐसा मैंने सोचा भी नहीं। शाम को हमें मिस्टर टीएन शुक्ला तेजनारायण जी ने
0: जी
1: अभी थोड़ी देर पहले याद दिलाया कि भैया शनिवार है
0: जी दादा,
1: तो उन्होंने कहा भाई तुम आज, हमने कहा आप तो कहे, अरे हमें कुछ घर के कुछ लोग आए हुए हैं, तो हमने कहा अच्छा भाई देखते हैं, तो मैंने लगा दिया आपको फोन।
0: जी हाँ, तो हम आपसे सुनते हैं।
1: तो मैं भाई कोई पुराना गाना ही सुना दूंगा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक भक्त का गाना तो नहीं है ये
0: जी,
1: लेकिन देश प्रेमी का एक गाना है, एक आध मुखड़ा ही सुना पाऊंगा।
0: जी दादा,
1: तो मैं सोच रहा हूँ कि गाई।
0: जी बिल्कुल।
1: नफरत की लाठी छोड़ो।
0: आहा, क्या बात है, क्या संदेश है, बहुत प्यारा गीत आपने चुना।
1: तो मैं कोशिश कर रहा हूँ।
0: जी दादा,
1: कमियों के लिए बाकी जो श्रोतागण है, अगर कोई कमी होगी तो क्षमा चाहूंगा।
0: जी
1: नफरत की लाठी छोड़ो, लालच का खंजर छोड़ो, जिसके पीछे मत दौड़ो।

कर देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देखो धरती है हम सबकी,

0: हैं तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला अपने घर से निकालेगा, दीवाने ये होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। धन्यवाद सर, पूरा याद नहीं है।
1: क्या बात है दादा, कितनी मधुरता के साथ और कितने संयोजन के साथ आपने ये गीत गाया। हमको लगता है बहुत दिन के बाद आपने इसे सुना भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत खूब गाया।
0: नहीं, इसको तो मैं रियल बता दूं आपसे कि मैंने बहुत जमाने के बाद
1: जी,
0: और चुपके पूरा गाना नहीं याद है।
1: हाँ, लेकिन आपने जो धुन पकड़ी और जो ठहराव, क्या बात है, मतलब दिन बना दिया आपने वास्तव में। और इससे बड़ा संदेश हो ही नहीं सकता कि हम लोग आपस में प्रेम सौहार्द और अखंडता पूर्वक रहे, शायद इससे बड़े सौहार्द।
0: एक्चुअल क्या है, हाँ सर, एक्चुअल क्या है ना कि बस जो शहीदों ने, जो क्रांतिकारी, जो एक्चुअल शहीद थे, जो उन्होंने देश के लिए किया ना, हम उनको सिर्फ एक दिन के लिए याद न करें।
1: जी जी,
0: हमें उनको अपने हर वक्त हर टाइम अपने दिल में रखेंगे तो ये हमारा देश तरक्की करेगा।
1: क्या बात कही है आपने, क्या संदेश दिया।
0: और इसके क्रांतिकारियों के लिए कोई एक दिन नहीं होता
1: जी, बिल्कुल,
0: सब दिन 364 दिन उन्हीं के लिए होता है कि जो करके गए हैं वही हमारे लिए आज की डेट में हम मतलब टोटल अपना फंडामेंटल राइट हुआ जो भी हुआ, और जिसको बोलते हैं कि लोकतांत्रिक रूप से स्वतंत्र है, तो लोकतांत्रिक रूप से स्वतंत्र नहीं हुए कि दूसरे को हम कुछ भी कह सकते।
1: जी जी,
0: तो भाई हमारी बात,
1: भाई बहुत प्यारी लगी, आपकी बात भी बहुत प्यारी लगी, और गीत के माध्यम से जो आपने संदेश दिया वो तो लाजवाब लगा। बहुत प्यारी बात और बहुत प्यारा संदेश और बहुत प्यारा गीत आपका।
0: कोशिश किया हूँ
1: जी, और तो क्या वो भी है जिनके बिना आप अधूरे हैं।
0: अब हम देखना पड़ेगा किचन में है कि कहाँ है, उसको देखना पड़ेगा
1: जी,
0: तो मैं तो कमरे
1: नहीं।
0: लेकिन तब तक मैं एक छोटा सा आपको बहुत अपना दिल की बातें सुना सकता हूँ
1: जी,
0: अगर आपका इजाजत हो तो।
1: जी जी,
0: नहीं नहीं, रियल बोलिएगा, नहीं तो अगर कोई लाइन पे हो तो पहले उनको सुनाइए।
1: कभी अनरियल बोला ही नहीं मैं,
0: वो तो मुझे मालूम है
1: जी दादा।
0: तो मैं एक थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ अब अपने दिल की बातें बोलने का
1: जी।
0: दिल मतलब कि जहाँ पे कहीं आपके पहलू में आके,
1: क्या बात,
0: तो थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है सर। हेलो
1: जी, हाँ दादा, मैं सुन रहा हूँ।
0: हाँ, तो फिर मैं मतलब वही देख रहा था, मेरी आवाज आ रही कि नहीं है।
1: जी जी जी,
0: आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए, दास्ताने गम सुना के रो दिए, आपके पहलू में आके रो

गए घबरा के हम मंजिल के पास, झुकाया सर झुका कर रो दिए आपके पहले।

0: के रो दिए आपके पहलू बैके रो दिए। शाम जब आंसू बहाती आ गई, शाम जब आंसू बहाती आ गई, हर तरफ गम की उदासी छा गई, दीप दिल के दीप यादों के जला के रो दिए आपके पहलू में आके रो दिए आपके पहलू में आके रो दिए। दास्ताने गम सुना के रो दिए आपके पहलू बयाके रो दिए आपके पहलू बया।
1: थैंक यू सर।
2: क्या आवाज फट रही है? दो गीत तो दोनों एक से बढ़कर एक।
1: नहीं, इसमें कुछ आवाज हमारी फट रही थी।
2: हाँ, हाई पिच पर गाना भी है वो।
1: जी,
2: क्या बात है, क्या गीत चुना आपने।
1: थैंक यू।
2: और भाई हमारे साथ अनूप मिश्रा जी हैं, उससे बेहतर कौन समझ सकता है आज के दिन का महत्व। उनके पिताजी मतलब हमेशा यादों में रहेंगे, क्योंकि वो एक फौजी दो लड़ाइयों में उन्होंने हिस्सा लिया था, तो अनूप जी तो बहुत बेहतर समझते होंगे। भाई सबसे पहले आपको शुभ संध्या, और लिखते हैं कि दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक जान में जान है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अनूप मिश्रा, ग्लोबल फायर सेफ्टी। क्या बात है। और लिखा है
1: भाई, सभी
2: बहुत खूब,
1: सभी धन्यवाद, सभी लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मतलब स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: जी हाँ, और हमारे अनूप मिश्रा जी के पिताजी जो है वो सेना में ही रहे।
1: अच्छा,
2: युद्ध भी लड़े। जी हाँ, और सविता शास्त्री जी आ चुकी हैं जी, स्पर्श आपको और शुभ संध्या जी, जी और वो आ चुकी हैं, कहिए तो हम उनसे भी कुछ सुन लेते हैं। हेलो,
1: मैं देख रहा हूँ, बता रही हैं कि उनका कुछ मतलब जो गला वाला मतलब कुछ है दिक्कत।
2: अच्छा अच्छा,
1: हाँ मतलब उनका जो नहीं जुबान में क्या होता है छाला वाला पड़ गया।
2: ओह, मतलब
1: मैं कि मेरी आवाज अब फंसने लगी है।
2: हाँ, ये बात है, ये बात
1: भाई, मेरी आवाज को लग रहा होगा कि अब फंस रही है।
2: जी हल्की सी, वो मौसम का असर है।
1: अरे बारिश हो ही नहीं रही है महाराज, बरसा दो आप।
2: ठीक है, अब कोशिश करते हैं।
1: चलिए ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभ रात्रि।
2: जी चरण स्पर्श आपको, एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।
1: ओके, बहुत खुश, बहुत खुश आपको भी।
2: जी हाँ भाई, तो ये हमारे साथ अनिल बनर्जी जी थे, और आज का दिन तो भाई अनूप मिश्रा जी के लिए बहुत खास है, और हम चाहेंगे भाई उनसे कि कोई देशभक्ति का प्यारा गीत आप में से जो लोग ए मेरे प्यारे वतन, क्या बात है, काबुली वाला फिल्म, या कोई भी, हम आपसे प्रार्थना ये ज़रूर करेंगे कि अगर आपके पास देशभक्ति के गीत हों तो आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। किस कदर खुश नसीब है वो लोग लहू जिनका वतन के काम आता है। तो और ये भी कहा गया कि ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। मतलब कहीं ना कहीं हम ये त्यौहार इसलिए मना पा रहे हैं क्योंकि वास्तव में किसी का सुहाग किसी का भाई किसी की राखी, सरहद पर है और हम यहाँ इस पावन पर्व को मना पा रहे हैं। तो वास्तव में सबसे पहला नमन तो देश के उन जवानों को है जो सरहद पर खड़े हुए हैं, माइनस के टेम्परेचर में भी अपने आप को रख करके अपने देश की हिफाजत करते हैं। और हम लोग भी, मुझे लगता है कि अपने अपने तरीके से अगर हम लोग अपना अपना काम करें ना, तो शायद देशभक्ति यहाँ से भी हो सकती है। फिलहाल मेरे पास कोई कॉल आ चुकी है, देखते हैं कौन है हमारे साथ, बात करते हैं उसे। हेलो हेलो, जी हाँ, ये फ़ोन स्वतः आया और स्वतः ही डिस्कनेक्ट हो गया। तो जी आइए, आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत वतन पर, और इसके पश्चात हम चाहेंगे कि आपसे एक गीत सुने देशभक्ति पर। अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो जो आपको आता है वो, क्योंकि कार्यक्रम है सैटरडे स्पेशल गजलें हमारी, गीत आपके, सुनते रहिए और रेडियो गणेशलिटी 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये वतन पर प्यारा सा गीत हमको पसंद है, आपको सुनाते हैं।
3: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की

जी हाँ, वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। और कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मेरे साथ धर्मेंद्र मोहन जी हैं, आवास विकास मनुष्य जी, शुभ संध्या, जय जवान जय किसान। और क्या बात है, इसी नारे को आगे बढ़ाया था भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो हमारे बीच अब नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। उनकी जब बात यहाँ पर आ गई तो उनकी एक कविता मुझको याद आ गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक अच्छे कवि भी रहे। उन्होंने लिखा कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। अब उन्हीं की तरह 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है, जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई, कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। इंसान जहां बेचा जाता ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम आह भर रह जाता और काफिर पीसा जाता है, क्यों हुक्म जदों के महफल में गमगीन दिया जल जाता है, क्यों भूखों को गोली नंगों को हथियार पहनाया जाता है, छत्र पख्तून के पंखों पर गिलमित पर गमगीन गुमानी की साया, बस इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊँ मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, झिलमिल से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे, उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। जी हाँ, सिक्के के दो पहलू हैं। आज़ादी अपने बच्चों को, आने वाली पुश्तों को ये ज़रूर बताइए कि हम 15 अगस्त को हमारे देश ने आज़ादी पाई थी, लेकिन उनको ये भी बताइए कि आखिर में किन कारणों से हम गुलाम हुए। हमको लगता है कि अगर वो कारण भविष्य में कभी फिर आ गए तो पुनः हम गुलाम हो सकते हैं। आवश्यकता है इस बात की कि हम जिस कारण से गुलाम हुए थे उन कारणों पर विचार करें और देखें कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कारण कहीं फिर पनप रहे हैं, उनको कैसे अच्छा किया जाए। हमारे गोंडा के एक कवि रामनाथ सिंह अदम गोंडवी, उनको कहा जाता था, उन्होंने कहा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उन्होंने भी लिखा था कि काजू भुनी प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में, और कभी लिखा कि कक्कुई कई सजादी है, कुछ समझ ना हमरे आवा है। बच्चा कहता है अपने काका से, उसके पिताजी काका उसको सुनाते हैं आज़ादी के किस्से, तो बच्चा कहता है कि कक्कू मतलब काका चाचा, ये कई सजादी है, कुछ समझ ना हमरे आवा है, हमरे घर में आवे बुखार, दुई गोलिक लिए तरस जई हैं,
हमरे घर माँ आवे बुखार, दुई गोलिक लिए तरस जई हैं, मंत्री के कुकुर छीक दे सीएम तक बंगलब जुट जई हैं, वह महलन माँ अंडा फोरे हमरे घर छप्पर छावा है, कक्कुई कई सजा दी है, कुछ समझ न हमरे आवा है। लड़कऊ पढ़त है कालिज माँ, लड़कऊ पढ़त है कालिज माँ, तन पेट काट पैसा देई, लड़कऊ पढ़त है कालिज माँ, तन पेट काट पैसा देई, हम सोच सोच कुप्पा होई गेन, बेटवा हमार अफसर हुई, मूल स्ट्राइक के चक्कर माँ, जेलन के रोटी खावा है, कक्कुई कई सजा दी है, कुछ समझ न हमरे आवा है। बिटिया जब पढ़ी गई इंटर तक, वो बोली हम सर्विस करबे, बिटिया जब पढ़ी गए इंटर तक, वो बोली हम सर्विस करबे, जब बात ब्याहिने को आई, वो बोली लव मैरिज करबे, ये आज़ादी के रंग ढंग, कुछ हमरे समझ ना आवा है, कक्कुई कई सजा दी है, कुछ समझ ना हमरे आवा है। तो आज़ादी तो है, मिली है, किंतु मुझे कभी कभी लगता है कि दो हिंदुस्तान है, एक हिंदुस्तान अमीरों का है और एक हिंदुस्तान गरीबों का है। और अगर हम बात करें शहीदों की, तो उनका भी जिक्र करना बनता है। खैर, ये तो वो काम है जो हम कर सकते हैं। एक सैनिक ने, जो युद्ध में था, उसने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी और कलम साथ में नहीं थी, तो अपने खून से चिट्ठी लिखी अपनी माँ को। मैं आपको उस वीर की, उस सैनिक की चिट्ठी सुनाता हूँ। उसने अपनी चिट्ठी में लिखा कि माँ, तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता को शत्रु भी कायल हुआ है, रक्त की होली रचाए, रक्त की होली रचाए, मैं प्लेकर दिख रहा हूँ, माँ उसी शोणित, शोणित मतलब खून, माँ उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ। युद्ध था भीषण, युद्ध था भीषण, मगर ना इंच भी पीछे हटा हूँ। और अब सैनिकों का दर्द देखिएगा, युद्ध था भीषण, मगर ना इंच भी पीछे हटा हूँ, माँ तुम्हारी थी कसम, मैं आज इंचों में कटा हूँ। एक एक टुकड़ा शरीर का काट लिया गया। कह रहे हैं शत्रु भी, कह रहे हैं शत्रु भी, मैं जिस तरह शहीदा हुआ हूँ, शहीद हुआ हूँ, कह रहे हैं शत्रु भी, मैं जिस तरह शहीदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूँ। ये न समझो माँ कि मैं चिर नींद लेने जा रहा हूँ, फिर तुम्हारी गोद में मैं जन्म लेने आ रहा हूँ। सिपाही ने कहा, ये मत समझिएगा कि हम मृत्यु के पास जा रहे हैं, नहीं, मृत्यु के पास एक बाद एक नई सुबह होगी, एक नया जन्म होगा, और आपके ही कोख से मैं फिर जन्मूंगा, और फिर जहाँ तक संभव हो पाएगा अपने देश की सेवा करूँगा, और कुर्बान होने पर हिचकिचाहट नहीं होगी। जब बात देश के सैनिकों की चल गई है, तो उसी युद्ध की बात एक और होती है। तो खैर, सैनिक ने लिखा, आपने सुना होगा कि कुछ सैनिक थे जिनके सर काट कर भेजे गए थे,
इस मौके पर उनका भी जिक्र करना बनता है। जब सर काट कर भेजे गए तो सब लोग विलाप करने लगे, रोने लगे। तो जो सैनिक की बहन थी उसने कुछ कहा। अब देखिए, अभी तक सैनिक ने कहा है और अब सैनिक की बहन कह रही है।

सैनिक शहीद हो गया, गला कटा हुआ है, और उसकी पत्नी विलाप कर रही है। बहन कहती है कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, दादी का दुलार भूला।

न भूल गया, आते आते रण थल शीश छोड़ आया है। जा रहा था तो माँ का आशीर्वाद नहीं लिया, भूलने की आदत है, आज युद्ध भूमि में अपनी गर्दन भूल आया है। ये हमारे देश की माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, जो बच्चों को इस लायक बनाती हैं। तो प्रणाम है ऐसी सभी माताओं को, ऐसी बहनों को जो जन्म देती हैं ऐसे शूरवीर बालकों को, जिनके दम पर इतिहास लिखा जाता है, इतिहास रचा जाता है। जी हाँ, बात थोड़ी सी लंबी हो गई, क्षमा कीजिएगा हमको। अब चलिए चलते हैं और आपको सुनाते हैं प्यारा सा गीत, और फिर मिलते हैं आपसे इस संगीत में अंतराल के उस पार। फिलहाल मैं चाहूँगा कि अगर आप कोई देशभक्ति गीत अगर आज गाना चाहते हैं तो आज के इस पावन पर्व पर ज़रूर गाएँ। फिलहाल सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: प्यारी बातें पहले देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो
1: नमस्कार।
0: अरे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आवाज मेरी पहचानी है
1: सर। मैं
0: जी जी मैंने कहा कि ये पहचानी हुई आवाज है और नेटवर्क आपका साथ दे दे भगवान से प्रार्थना है। जी
1: और पूरा साथ देगा, हम फुल नेटवर्क में बैठे हुए हैं इस समय।
0: बस बस बस
1: जी
0: तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।
1: आपको भी सर और आपकी पूरी टीम को, समस्त जनपद वासियों और समस्त प्रदेश वासियों और देश वासियों को और बाकी जहां भी प्रवासी भारतीय भी हमें सुन रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं।
0: जी तो शुरू करते हैं।
1: शुरू करते हैं सर और मैं आपको सुनाता हूँ शहीद मूवी का गाना। मनोज कुमार जी के ऊपर फिल्माया गया गाना है ये, ऐ वतन ऐ वतन हमको तेरी कसम।
0: अरे क्या क्या बात है, क्या बात है।
1: मैं शुरू करूँ सर?
0: जी जी निसंदेह।
1: ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। पूरी चीज है तेरे कदमों पे हम, लेकर अपने सरों चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक वार का सामना। झुक सकेगा ना वो सर फरोशों का सर, चाहे हो खून तलवार का सामना, चाहे हो खून तलवार का सामना। सर पे बांधे कफन हम तो हंसते हुए, मौत को भी गले से लगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, तेरी पूरी

0: फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से, नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन तेरी जानिब उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी सामने, ठोकरों से उसे हम अजाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राह में जान लुटा जाएंगे। भूलता चीज है तेरे कदमों से हम बे अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन जय हिंद।
1: क्या बात है, जय हिंद भाई। आप कहा जाता है ऑल इज वेल इफ इंस वेल, अंत भला तो सब भला। तो आपने कार्यक्रम में आकर, वास्तव में हम कहते ही हैं कि सौ चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी। अब आप आ गए हैं तो ये रात बनेगी, और आपने इस रात को खास बना दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: थैंक यू सर। अगर आप 2 मिनट का मौका दें तो संदेशे आते हैं का जो अंतिम स्टैंजा है, गुजरने वाली हवा बता।
1: जी
2: एक मिनट सर, मैं शुरू करूं सर?
1: जी
0: ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गांव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं तो

पैरों को छूके तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा मेरी माँ को मेरा सलाम दे, उसे जाके तू ये पयाम दे। मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में किसी की छाँव में कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया

0: आऊंगा,
1: क्या बात है, आऊंगा और एकदम छा जाऊंगा। बिल्कुल आप छा गए भाई, आपने देशभक्ति का गाना बहुत खाया, बहुत खूब। और संजय ने लिखा है भाई बहुत अच्छा नूप जी जी, आते रहा कीजिए, आपसे महफिल की रौनक बढ़ जाती है।
0: थैंक यू सर
1: जी। अच्छा, एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम आपको। या दोस्तों, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि अब आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान, आसमान वाले ने चाहा। तो कल रविवार है, 1 बजे मिलेंगे आपसे, ठीक 1 बजे ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM में। तब तक सुनते रहिए रेडियो कनेक्टली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
2: से एक ही सपना बार बार आता है, मैं बहुत लंबा रास्ता चल रही हूँ, चारों ओर धुंध है, पीछे से कोई छोटा सा बच्चा बार बार मुझे माँ कहकर बुला रहा है। मैं मुड़ना चाहती हूँ लेकिन मुड़ नहीं पाती। माँ जी का चेहरा गंभीर हो जाता है, वो आरती का हाथ पकड़ लेती है, कहती है आज से बहू ऐसे सपनों को यहीं छोड़ दो, भगवान तेरे घर आने वाले हैं, उन्हें ऐसी अशुभ बातें पसंद नहीं है। उसी समय हवा का एक तेज झोंका आता है, बरामदे में टंगी छोटी सी चांदी की घंटी अपने आप एक बार बजती है, टन। दोनों एक साथ उसकी ओर देखते हैं, हवा अचानक रुक जाती है, आरती बहुत देर तक उसे देखती है, फिर कहती है अम्मा पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बहुत दूर बुला रहा है। प्यारे श्रोतागण, क्या ये केवल उसका एक वहम था या आने वाले समय की दस्तक? उस समय न आरती जानती थी न नीरज कि 24 घंटे के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, जिस दिन हमारी दुनिया बदलने वाली होती है उस दिन सब कुछ सुंदर लगता है। दूसरे दिन आरती रसोई में खीर बना रही थी, दादी कहती हैं क्या बात है आज बहू? आरती कहती है हमारे नन्हे मेहमान की फरमाइश है। दोनों हंसती हैं। नीरज अंदर आता है, अरे भाई क्या चल रहा है? आरती बोली कुछ नहीं, आज जल्दी घर आना, हम साथ खाना खाएंगे और एक सरप्राइज भी है आपके लिए। नीरज कहता है ठीक है। नीरज ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है, आरती उसके माथे पर टीका लगाती है, फिर पता नहीं क्यों धीरे से कहती है नीरज अगर मैं कभी पहले चली जाऊं तो मेरे बच्चे को अकेला मत छोड़ना। नीरज तुरंत रोक देता है, ऐसी बातें मत करो आरती, हम हमेशा साथ रहेंगे। आरती हल्के से मुस्कुराती है। शाम के समय तेज बारिश हो रही थी, अचानक आरती दर्द से नीचे झुक जाती है और कहती है अम्मा दर्द हो रहा है। माँ जी भी घबरा जाती है। नीरज दौड़ते हुए कार निकालता है, तेज बारिश हो रही है, कार तेजी से दौड़ती है अस्पताल की ओर, आरती पीछे लेटी है, माँ उसका हाथ कस कर पकड़ लेती है, नीरज भी बार बार पीछे देखता है। आरती घबराओ मत, बस पहुँच गए। आरती कहती है अगर मैं बच्चे को गोद न ले पाऊँ तो उससे कहना उसकी माँ उसको बहुत प्यार करती है। नीरज की आवाज भर्रा जाती है, आरती कुछ नहीं होगा तुमको, तुम उसे गोदी लोगी। अस्पताल आ जाता है, कार रुकती है, स्ट्रेचर आता है, चारों तरफ भागदौड़ है, नर्स चिल्लाती है जल्दी पेशेंट की हालत बिगड़ रही है, ऑपरेशन थिएटर। आरती को अंदर ले जाया जाता है, नीरज का हाथ आरती के हाथ से छूट जाता है और दरवाजा धीरे धीरे बंद हो जाता है। वो दरवाजा सिर्फ एक ऑपरेशन थिएटर का नहीं था, उसके उस पार एक माँ अपने सबसे बड़ा निर्णय लेने वाली थी और घड़ी धीरे धीरे उस समय की ओर बढ़ रही थी जो आने वाले वर्षों में ठीक 2:13 की ओर जा रही थी। एक ऐसा समय जो अगले 7 वर्षों तक हर रात किसी को वापस लेकर आने वाला था। अस्पताल में दूर लड़ाइयां चल रही थी। एक डॉक्टर जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी ओर एक माँ अपने बच्चे के लिए बराबर प्रार्थना कर रही थी। डॉक्टर मेहरा ने पूछा, ब्लड प्रेशर कितना है? नर्स बोली, 60/40 सर, बीपी लगातार गिर रहा है। डॉक्टर मेहरा बोले, 1 यूनिट और ब्लड, जल्दी जल्दी। आरती आधी बेहोशी में है, उसकी पलकों के कोने भीगे हुए हैं, वो बहुत मुश्किल से बोल पाती है। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा ठीक है। अरे आप घबराइए मत, हम आपको और बच्चे को दोनों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप झूठ अच्छा नहीं बोल पाते, मैं समझ रही हूँ। डॉक्टर मेहरा कुछ नहीं कहते, उनकी आंखें मॉनिटर पे टिक जाती है। आरती धीरे से उनका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है, डॉक्टर साहब, अगर ऐसा समय आ जाए कि आपको मुझ में और मेरे बच्चे में किसी एक को चुनना पड़े, तो आप प्लीज मेरे बच्चे को बिना सोचे बचाइएगा। डॉक्टर मेहरा चौंक जाते हैं, अरे ऐसी बातें मत सोचिए। आरती कहती है, नहीं डॉक्टर, मुझे सच पता है, मैं माँ हूँ, मुझे महसूस हो रहा है, आप वादा कीजिए आप उसे बचाएंगे चाहे मुझे जान देना पड़े। डॉक्टर बेहरा की आंखें भर आती है, वे कुछ पल चुप रहते हैं, फिर बहुत भारी मन से कहते हैं, मैं वादा करता हूँ। आरती ने संतोष से आंखें बंद कर लिया, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ जाती है। नीरज ऑपरेशन थिएटर के बाहर टहल रहा था, बार बार दरवाजे की ओर देखता। माँ जी माला फेर रही थी। नीरज कहता है, माँ कुछ होगा तो नहीं? आज सुबह ही तो वो हंस रही थी, खीर बना रही थी, मुझसे लड़ भी रही थी, इतनी जल्दी इतना सब कैसे बदल सकता है? माँ जी कुछ उत्तर नहीं देती, सिर्फ माला फेरती रहती हैं। भगवान पे भरोसा करो बेटा। तब तक नर्स अंदर घबरा के डॉक्टर मेहरा से कहती है, सर हमें तुरंत निर्णय लेना होगा। डॉक्टर मेहरा की आंखें बंद हो जाती हैं, सिर्फ 2 सेकंड, लेकिन उन 2 सेकंड में एक परिवार का भविष्य तय करना है। उन्हें आरती का वादा याद आता है, उनकी आंखें, उनकी आवाज सब धीरे से कहते हैं, बच्चे को बचाइए। ऑपरेशन थिएटर में कुछ क्षण सन्नाटा छा जाता है और फिर पूरा कमरा एक नवजात शिशु के रोने की आवाज से गूंज जाता है। आरती बहुत धीरे से आंखें खोलती है, उसे अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, उसके होंठों पे मुस्कान आ जाती है। रो रहा है डॉक्टर साहब? हाँ, बहुत जोर से, लेकिन बिल्कुल स्वस्थ है। आरती की आंखें बंद होने लगती है, वो अचानक डॉक्टर का हाथ पकड़ लेती है, इतनी मजबूती से कि डॉक्टर साहब भी चौंक जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने मेरा वादा निभाया। डॉक्टर मेहरा का सर झुक जाता है। आरती सब समझ जाती है, लेकिन वो रोती नहीं, वो मुस्कुराती है, इतनी शांत मुस्कान। डॉक्टर मेहरा जीवन भर उसे भूल नहीं पाते। आरती ने कहा, डॉक्टर साहब रोइए मत, आपने कोई गलती नहीं की। अगर माँ और बच्चे में कभी चुनाव करना पड़े तो हर माँ अपने बच्चे को ही चुनेगी। आज आपने भी वही किया जो मैं करती। डॉक्टर मेहता फूट फूट कर रो पड़ते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको नहीं बचा पाया। अरे नहीं डॉक्टर साहब, आपने मुझे नहीं खोया, आपने तो मेरी पूरी दुनिया बचा ली। एक वादा कीजिए, अगर कभी मेरा बेटा पूछे मेरी माँ कहाँ है, तो उससे ये मत कहिएगा कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। उससे कहिएगा उसकी माँ ने उसे चुना था। और अगर कभी रात के 2:13 पर उसे मेरी जरूरत पड़े तो भगवान से कहिएगा मुझे बस थोड़ी देर के लिए उसे भेज दे। डॉक्टर मेहरा का गला भर जाता है। वे दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। मैं वादा करता हूँ आरती, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। घड़ी धीरे धीरे 2:13 बजाती है। उसी क्षण आरती अपने बच्चे की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, मेरा लाल, तेरी माँ जा रही है, लेकिन हर रात 2:13 पर वो तेरे पास आएगी। मॉनिटर पे एक लगातार बीप चल रही है। बाहर बिजली तेजी से कड़क रही है। बारिश बहुत तेज हो गई है। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर मेहरा बाहर आते हैं। उनकी बाहों में एक नवजात शिशु है, लेकिन उसकी आंखों में 7 का दुख। डॉक्टर मेहरा रूंधे गले से कहते हैं, नीरज जी, आपका बेटा बिल्कुल स्वस्थ है। नीरज मुस्कुरा देता है, मगर अगले ही पल पूछता है, और आरती? डॉक्टर मेहरा कुछ नहीं कह पाते, बस सिर धीरे से सर झुका देते हैं। नीरज की मुस्कान उसी पल हमेशा के लिए टूट जाती है। प्यारे श्रोतागण, जल्दी मिलेंगे आपसे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: प्यारे श्रोतागण, आरती की चिता की आग अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी और उसी घर में एक नन्ही सी जान अपनी माँ को ढूंढ रहा था। कभी कभी पहली रात सबसे लंबी होती है और खास तौर पे जब माँ साथ ना हो। नीरज घर में एंटर करता है अपने बच्चे को गोद में लिए। उसकी चाल में थकान है और एक खालीपन। माँ दरवाजे पे खड़ी है, हाथ में थाली जिसमें दीपक जल रहा है, लेकिन आज कोई स्वागत नहीं, कोई मुस्कान नहीं, कोई मंगल ध्वनि नहीं। आज उसी घर में आरती की तस्वीर सजी है। तस्वीर के सामने फूल रखे हैं। माँ धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं। वो दीपक तस्वीर के सामने रखती हैं, बहुत सावधानी से, जैसे जरा सी भी चूक से सब बिखर जाएगा। कुछ पल वो तस्वीर को देखती रहती है, फिर उनकी आवाज टूटती है। भर्राए स्वर में कहती हैं, बहू तू दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, सोचा था एक दिन माँ बनकर इस घर को हंसी से भर देगी, लेकिन तू तो अपनी सारी हंसी यहाँ छोड़कर चली गई। कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। नीरज वहीं खड़ा है, वो तस्वीर को देखना चाहता है, लेकिन इतना दर्द है कि वो देख ही नहीं पाता। उसकी नजरें बार बार झुक जाती है। रात गहरी हो गई। नवजात बच्चा लगातार रोता है। थोड़ी देर के लिए चुप होता है, फिर रोने लगता है। दादी माँ बच्चे को गोद में लेती हैं, धीरे धीरे झुलाती हैं, दूध पिलाने की कोशिश करती हैं, लोरी भी गुनगुनाती हैं, लेकिन बच्चा चुप ही नहीं होता। उसका रोना जैसे किसी को पुकार रहा हो। नीरज कमरे में टहल रहा है, धीरे फिर तेज फिर रुक के। वो बेचैन है, उसकी सांसें भारी हैं। कुछ देर बाद वो रुकता है और कहता है, माँ, इसने शायद अपनी माँ की खुशबू पहचान ली है। इसे कैसे समझाऊं कि जिसे ये ढूंढ रहा है वो। नीरज आगे नहीं बोल पाता, उसकी आवाज रुक जाती है। कुछ पल वो बस बच्चे को देखता रहता है, फिर धीरे से उसे गोद में लेता है, सीने में लगाता है और रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तेरी माँ को नहीं बचा पाया। कमरे में सिर्फ बच्चे का रोना, माँ की और नीरज की सिसकियाँ रह जाती है। 2:12 हो गए। कमरे में एक अजीब सी शांति उतरने लगती है, जैसे हवा भी ठहर गई हो। बच्चा अभी भी रो रहा है, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। धीरे धीरे 2:13, चांदी की घंटी धीरे से बजती है। पूरे कमरे में मोगरे की खुशबू फैलने लगती है और बच्चा चुप हो जाता है, जैसे किसी ने उसे गोद में ले लिया हो। दादी चौंक जाती है, पूछती है, अरे नीरज ये क्या है, क्या तुमने घंटी बजाई है। पालना भी धीरे धीरे हिलने लगता है। माँ जी फुसफुसा के कहती हैं, हे राम। नीरज बहुत सावधानी से पालने के पास जाता है, अंदर झांकता है। उसका बेटा आरव अब रो नहीं रहा था, ऐसा लगता था जैसे मुस्कुरा रहा है। उसकी छोटी सी मुट्ठी धीरे धीरे खुलती है और फिर बंद हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी का हाथ उसने कस के पकड़ रखा है। और फिर कमरे में धीरे धीरे एक लोरी सुनाई दे जाती है, सो जा मेरे लाल, माँ यही है। आवाज बहुत हल्की है, लेकिन एक अजीब सी गर्माहट। माँ जी रोते हुए कहती हैं, बहू तू आ गई। नीरज भी कुछ नहीं देख पाता, लेकिन उसके कंधे पर एक हल्का सा स्पर्श महसूस होता है। वो पूछता है, आरती क्या सचमुच तुम हो। जैसे ही वो बोलता है, लोरी धीरे धीरे थमने लगती है। मोगरे की खुशबू भी हल्की पड़ने लगती है। पालना धीरे धीरे रुक जाता है और फिर कमरे में वही सन्नाटा। माँ और बेटे दोनों ही अभी इसी अनुभव में डूबे हुए थे कि दरवाजे के बाहर जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। धड़ाम धड़ाम, नीरज ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुसीबत में है। वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है, लेकिन किसी ने धीरे से उसके कान में कहा, बहुत ही परिचित आवाज, मत खोलो। नीरज का शरीर एकदम सख्त हो जाता है, उसकी सांसें रुक जाती है। वो ये आवाज पहचानता है, अरे ये तो आरती की आवाज है। वो तुरंत हाथ पीछे खींच लेता है, धीरे से शांत स्वर में कहता है, आरती अगर ये तुम्हारी चेतावनी थी तो मैं समझ गया, मैं अब बिना तुम्हारी बातें सुने कोई दरवाजा नहीं खोलूंगा। प्यारे श्रोतागण, उस रात नीरज ने दरवाजा नहीं खोला और कभी कभी एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। उसे ये पता नहीं था कि अगर उसने वो दरवाजा खोला होता तो शायद उसका बेटा 7 साल का होने से पहले ही अपने पिता को खो देता, क्योंकि उस दस्तक के पीछे कौन था ये सच अभी आना बाकी था। सुबह हो गई, लेकिन उस घर में किसी को नींद नहीं आई। तभी पड़ोसी के रमेश जी का फोन आता है और वो पूछते हैं, नीरज भैया आपने दरवाजा तो नहीं खोला ना? नीरज कहता है, नहीं नहीं, क्यों, क्या हुआ? अरे आपके दरवाजे पर रात की आंधी की वजह से 11,000 वोल्ट का तार दरवाजे पे गिर गया था। अगर कोई बाहर निकलता तो दादी के हाथ से तो लोटा गिर जाता है। नीरज भी एकदम स्तब्ध रह जाता है। उसे याद आई आरती की आवाज, दरवाजा मत खोलना। वो आरती की तस्वीर की तरफ देखता है और फिर कहता है, आरती तुमने हमें बचा लिया। कुछ महीने बाद आरव धीरे धीरे घुटने के बल चलता है। घर में हंसी लौट आई, लेकिन एक चीज नहीं बदली। हर रात 2:13 पर घंटी और मोगरे की खुशबू और वो लोरी। पर अब कोई डरता नहीं। अगर कभी लोरी में देर हो जाए तो दादी माँ मुस्कुरा के कहती हैं, अरे भाई आज बहू को देर हो गई, और सब एक साथ हंसते हैं। एक दिन आरव चलने की कोशिश करता है और वो लड़खड़ाता है तो किसी ने जैसे उसको थाम लिया है, वो गिरता नहीं है। आरती, नीरज भावुक होके कहता है, देखो आरती तुम्हारा बेटा चलने लगा। उस रात की लोरी भी अलग थी। 2:13 पे खुशी से भरी हुई थी। चलना सीख गया मेरा लाल, अब दुनिया उसकी राह बने। उस घर में अब डर नहीं था, वहाँ थी एक माँ की दुआ, जो हर रात 2:13 पर अपने बच्चे को सुलाकर चली जाती थी। प्यारे श्रोतागण, जल्दी मिलेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन गोंडा शहर की धड़कन।
1: प्यारे श्रोतागण, समय किसी का इंतजार नहीं करता। 7 वर्ष बीत गए। नन्हा आरव अब दूसरी कक्षा में पढ़ता था। दादी माँ के बाल पूरे सफेद हो चुके थे। नीरज की मुस्कान अब लौट आई थी, लेकिन रात के 2:13 पर हर रात सब जाग जाते थे, क्योंकि सबको पता था उस समय एक माँ अपने बेटे से मिलने आई है। आरव अब बहुत बातें करने लगा था। एक रात नीरज आरव के कमरे में बैठा था। आज उसने निश्चय किया कि वो अपने बेटे से सब पूछेगा। उसने कहा, बेटा एक बात पूछूं? हाँ पापा, पूछिए। जब मम्मी आती हैं, तो कैसे दिखती हैं? आरव ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, बिल्कुल फोटो जैसी, बस पापा थोड़ा ज्यादा मुस्कुराती हैं, और उनकी साड़ी से, उनके बालों से हमेशा मोगरे की खुशबू आती है। नीरज के हाथ कांप जाते हैं। वो तुमसे क्या बातें करती है बेटा?
2: बहुत सारी बातें पापा, कभी कभी तो आपकी बहुत शिकायत भी करती है।
1: दादी हंस पड़ती हैं। अरे भाई, हमारी बहू आज भी वैसे ही है लगता है। आरव कहता है, पापा, वो कहती है तुम्हारे पापा आज भी चाय में चीनी ज्यादा डालते हैं।
3: नीरज एकदम चौंक जाता है, ये बात सिर्फ आरती जानती थी।
1: कुछ देर बाद आरव बहुत गंभीर हो जाता है और कहता है, पापा मम्मी आजकल एक बात बार बार कहती हैं।
2: क्या? उन्होंने कहा अब समय आ गया है, आप लोग डॉक्टर अंकल से मिले।
3: डॉक्टर मेहरा?
2: हाँ पापा। लेकिन क्यों? मम्मी कह रही थी 7 साल से एक इंसान मेरी वजह से हर रात रोता है, अब उसे आजाद करना है।
1: नीरज का चेहरा बदल जाता है। उसे पहली बार डॉक्टर मेहरा की भीगी आंखें याद आती है। ऑपरेशन थिएटर, वो झुका हुआ सर, वो टूटी हुई आवाज। क्या सचमुच डॉक्टर मेहरा किसी बात के लिए अपने को दोष दे रहे हैं? अगले दिन नीरज, दादी और आरव तीनों डॉक्टर मेहरा के घर पहुँचे। 70 वर्ष के डॉक्टर मेहरा, झुके हुए कंधे, आंखों पर मोटा सा चश्मा, चेहरे पर गहरी थकान। उनके दीवार पर दर्जनों बच्चों की तस्वीर लगी है, लेकिन एक फ्रेम अलग रखा था, उसमें आरती की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर।
3: नीरज कहता है, डॉक्टर साहब आपने आरती की तस्वीर?
1: डॉक्टर मेहरा की आंखें भर आती है। कुछ मरीज नीरज डॉक्टर की फाइल से निकल जाते हैं, लेकिन उनके दिल से नहीं निकलते। वे कुर्सी पर बैठते हैं, बहुत देर तक कुछ नहीं बोलते, फिर अचानक दोनों हाथ जोड़ लेते हैं।
2: आज मैं आपको एक सच बात बताने वाला हूँ, जो 7 साल से मेरे सीने पे पत्थर बनकर रखा है।
1: बाहर हवा चल रही है, अंदर एकदम सन्नाटा, और अचानक पूरे कमरे में मोगरे की खुशबू फैल जाती है। डॉक्टर मेहरा फुसफुसा के कहते हैं,
2: आरती तुम क्या यही हो?
1: दोस्तों, 7 वर्षों से दबा हुआ सच अब सामने आने वाला था। एक ऐसा सच जो एक डॉक्टर को अपराधी बना गया, एक पति को अधूरा, और एक माँ को हर रात 2:13 पर अपने घर लौटने के लिए मजबूर करता है। कहते हैं डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि भगवान की तरह उन्हें कभी कभी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिसका दर्द वे सारी उम्र अपने भीतर लिए फिरते हैं। डॉक्टर मेहरा कहते हैं, नीरज जी उस रात की पूरी कहानी मैंने कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन अब समय आ गया है। डॉक्टर मेहरा उस रात की पूरी घटना बताते हैं, कैसे ऑपरेशन के दौरान हालत अचानक बिगड़ गई, कैसे उन्हें कुछ ही पलों में एक कठिन निर्णय लेना पड़ा, और कैसे उस निर्णय ने उनकी जिंदगी बदल दी। उनकी आवाज में
2: पछतावा साफ था। उस दिन से नीरज, मैंने अपने को माफ नहीं किया। नीरज और दादी माँ की आंखें नम थी। डॉक्टर मेहरा आगे बताते हैं कि ऑपरेशन के बाद कुछ क्षणों के लिए आरती को होश आया था। उन्होंने बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत गहरी बात कही थी। उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया बल्कि एक माँ की तरह अपनी आखिरी इच्छा जताई। उसने बस इतना कहा था कि डॉक्टर साहब, जब भी उसका बच्चा उसे पुकारे, उसे उसके पास आने दिया जाए। दादी माँ रो पड़ती हैं। कमरे में सिर्फ सिसकियों की आवाज आती है। डॉक्टर मेहरा घुटने के बल बैठ जाते हैं। कहते हैं, 7 साल से मैं हर रात 2:13 पे जाग जाता हूँ। ऐसा लगता है आरती शायद मुझसे नाराज होगी। पर इतने में आरव मुस्कुराते हुए आता है और कहता है, देखिए देखिए, मम्मी आ गई हैं। फिर कहता है, डॉक्टर साहब, मम्मी कह रही हैं, डॉक्टर अंकल अब रोइए मत, आपने कोई गलती नहीं की, आपने मेरा वादा पूरा करवाया, आप अपने आप को माफ कर दीजिए। डॉक्टर मेहरा की रुलाई फूट पड़ती है। वे तस्वीर के सामने सिर झुका देते हैं। मोगरे की तेज लेकिन मधुर खुशबू, घंटी की आवाज और कमरे में मौजूद चारों लोग एक साथ वही लोरी सुनते हैं, सो जा मेरे लाल। मगर अब किसी को किसी बात का डर नहीं था। श्रोतागण, 7 वर्षों का बोझ एक पल पे उतर गया। एक डॉक्टर को माफी मिल गई, एक पति को उत्तर मिल गया, एक दादी को सुकून मिल गया, लेकिन एक माँ को अभी एक वादा पूरा करना था। जल्दी मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
4: चंपा, अब तुम भगवान से वो प्रार्थना करो जो बाबूजी किया करते थे।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: श्रोतागण, कभी कभी किसी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य भूत नहीं होता, प्रेम होता है। और प्रेम जब वचन बन जाए तब उसे मृत्यु भी नहीं रोक सकती। आइए सुनते हैं आखिरी लोरी का अंतिम अध्याय। डॉक्टर मेहरा के घर से वापस आने के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदल गया। अब कोई डर नहीं था। हर रात ठीक 2:13 पर सब कुछ एक तय क्रम से होने लगा। दादी उठती, दीपक जलाती, नीरज खिड़की खोल देता और आरफ हल्की मुस्कान के साथ कहता, मम्मी मैं वेट कर रहा हूँ। और फिर वही परिचित संकेत, चांदी की घंटी की हल्की आवाज, टन मोगरी की खुशबू धीरे धीरे कमरे में फैल जाती और लोरी शुरू हो जाती। लेकिन उस रात कुछ अलग था। लोरी वही थी, घर वही था, पर उसके सुरों में एक गहरी विदाई का एहसास था। आरव धीरे से उठकर बैठ जाता है। वो मुस्कुरा रहा था लेकिन आंख में आंसू भी थे। नीरज ने पूछा, क्या हो गया बेटा तुमको? आरव कहता है, मम्मी कह रही है आज वो आखिरी बार आई है, दादी की आंखें भर आती हैं। नहीं नहीं बहू, इतनी मत, जल्दी मत जा। आरव कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, पापा दादी मम्मी कह रही हैं, अम्मा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो वहीं रहूंगी जहाँ आपने मुझे हमेशा रखा है, अपने आशीर्वाद में। नीरज धीरे धीरे उठता है, आरती की तस्वीर के सामने खड़ा हो जाता है। कुछ क्षण चुप रहता है जैसे शब्द खोज रहा हो, फिर शांत स्वर में बोलता है, आरती जब तुम आई थी मैंने तुम्हें जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, तुमने हर वादा निभाया, यहाँ तक कि वो भी जो मृत्यु के बाद का था, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें धन्यवाद नहीं कह पाया। आज कह रहा हूँ धन्यवाद, तुमने मुझे पिता बनना सिखाया, धन्यवाद मुझे माँ का प्रेम समझाने के लिए, और धन्यवाद उस रात के लिए जब तुमने हमारे घर की रखवाली की, मेरी जान बचाई। उसकी आवाज हल्की सी कांप जाती है। अब तुम निश्चित होकर जाओ, मैं तुम्हारे बेटे का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आरव भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जैसे उसके सामने खड़ा हो वो भी अपना छोटा सा हाथ आगे करता है। मम्मी आपने कहा था मैं पापा का सहारा बन जाऊं, तब आप चली जाए।

लेंगी। देखिए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं पापा को दवा याद दिलाता हूँ, दादी का ध्यान रखता हूँ। मैं अब रोता नहीं हूँ, पढ़ाई अपने आप से करता हूँ। आप जाइए माँ, आराम करिए, मैं पापा का हाथ पकड़ूंगा माँ। इतना कहकर वो एक हाथ से नीरज का और दूसरे से दादी का हाथ पकड़ लेता है। तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। पहली बार और आखिरी बार आरती की आवाज साफ सुनाई देती है, बहुत शांत, बहुत स्नेह से। अम्मा, अपना ध्यान रखिएगा, नीरज समय पे खाना खा लिया करना, और मेरे लाल याद रखना, माँ कभी दूर नहीं जाती, सिर्फ दिखाई देना छोड़ देती है। कुछ क्षण का मौन, फिर वही लोरी, सोचा मेरे लाल, अब तेरा हर सपना तेरी माँ की दुआ है। लोरी धीरे धीरे दूर हो जाती है, पोगरे की खुशबू भी धीरे धीरे हवा में घुल जाती है। दीपक की लौ एक बार हल्की सी तेज होती है, फिर स्थिर हो जाती है। अगली रात घड़ी में फिर वही समय, 2:13। तीनों जाग रहे हैं, लेकिन इस बार न घंटी, न लोरी, न मोगरे की खुशबू, घर पूरी तरह शांत। नीरज कहता है, माँ वो अपना वादा निभा के चली गई। उसके आंख में आंसू है, लेकिन उनमें सुकून है। दादी माँ भी भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहती है, जा बहू, अब चैन से रहना, तेरा घर, तेरा लाल, हम सब संभाल लेंगे। आरव खिड़की से आसमान की ओर देखता है, एक चमकीला तारा टिमटिमा रहा है। वो धीरे से हाथ हिलाता है और कहता है, गुड नाइट मम्मी। श्रोताओं, आखिरी लोरी यही खत्म होती है, पर उसका एहसास शायद कभी नहीं खत्म होगा। अगर माँ साथ है तो उसे गले लगा लीजिए, और अगर नहीं तो उसकी एक सीख आज भी जी लीजिए, क्योंकि माँ का प्रेम कभी जाता नहीं, बस एक अनसुनी लोरी बनकर साथ रहता है। मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे, आप सुन रहे थे 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो। अपनों का हाथ थामे रखिए, क्योंकि कुछ वादे मृत्यु भी नहीं तोड़ सकती। शुभ रात्रि।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: तेरा नाम लूं तो सुकून आ जाता है, जैसे भीड़ में कोई अपना मिल जाता है। सोचूं जब भी तेरे साथ की बातें, दिल फिर से धड़कना सीख जाता है। तू साथ हो तो मुश्किल भी आसान लगे, तेरे बिना हर खुशी भी सुनसान लगे। ये दिल सिर्फ तुझसे जुड़ना चाहता है, बाकी दुनिया तो सब मेहमान लगे।
3: तेरी यादों का मौसम दिल पे छाया है, हर ख्वाब में बस तेरा ही साया है। कोई पूछे प्यार क्या होता है मुझसे, मैं कहूँ जो तूने मुझ में जगाया है। न जाने कैसा रिश्ता है तुझसे, न जाने कैसा रिश्ता है तुझसे, बात ना हो तो दिल नहीं लगता जरा। तू सामने हो तो वक्त रुक जाता है, और दूर हो तो हर पल लगे जैसे सजा।
2: जी हाँ दोस्तों, आज भूले बिसरे गीत में आज हम लेकर के आए हैं वैलेंटाइन स्पेशल, यानी प्यार के नगमों को एक साथ लेकर के। आपकी आज ये गुमसुम एंड आपकी आज ये ख्वाहिश। तो आज जो सफर शुरू करने जा रहे हैं उसमें कई मुसीबतें, जी हाँ, इसलिए आ रही हैं क्योंकि प्यार एक ऐसी सीढ़ी है, एक ऐसी कड़ी है जिसमें मुसीबतें ना हो तो प्यार को पाना आसान कहाँ लगता है। सबसे पहले हम उस सिंगर की बात करेंगे जो कि अपने आप में एक कहते हैं ना कि पूर्ण विराम हम नहीं कह सकते हैं, पूर्ण है। क्यों आरजे गुमसुम?
3: बिल्कुल आरजे ख्वाहिश। वो जो अपने में पूरी है, वो जिनकी आवाज जो भी सुनता है वो उनकी आवाज का मुरीद हो जाता है,
2: और आवाज के मुरीद होने के साथ साथ में उनके व्यक्तित्व, उनके चलन, उनकी बोली, उनका व्यवहार, शायद ये प्यार में कम नहीं होता है, ये प्यार को और पूर्ण बनाता है। बहुत सारे नगमों के साथ में जब उन्होंने गीतों को सुना, गाया और उनको जिया, जी हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, प्यार की बेमिसाल मूरत हमारी लता जी। उनके नगमों में से एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, प्यार हुआ इकरार हुआ।
3: इकरार से याद आया, बहुत ही बेहतरीन गाना है प्यार हुआ इकरार हुआ। कहते हैं ना कि प्यार तो यूं ही हो जाता है, लेकिन जब इकरार करना होता है तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होती है। हम सोचते हैं ना, अच्छा चलो कह देते हैं, फिर रुक जाते हैं। सामने वाले को बुरा लग गया तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, फिर रुक जाते हैं। लेकिन ये ऐसा एहसास है कि कहा भी नहीं जाता और रहा भी नहीं जाता।
2: तो भाई ये तो मुझे कुछ इस तरीके से लग रहा है कि अगर हमने कुछ मुंह में खाया हुआ है तो ना निगला जाए ना उगला जाए, कुछ ऐसा ही हो गया। पर मैं बताऊं कि वैलेंटाइन वीक जो ऐसा होता है जिसमें प्यार का इजहार करने से किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए, तो आइए इस प्यार के इजहार को हम करते हैं और सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

0: अगले सिंगर जिनकी आवाज में जादू तो था ही, शायद हम उनको ये भी कह सकते हैं कि उनकी आवाज इतनी वर्सटाइल थी कि हर कोई आवाज पहचान जाता था और हर एक हीरो की आवाज में फिट होने वाले हमारे मोहम्मद रफी जी। दिलीप कुमार का दर्द हो या फिर शम्मी कपूर की मस्ती, देवानंद का रोमांस हो, सब पर उनकी आवाज फिट हो जाती थी। लेकिन कहा जाता है मोहम्मद रफी की आवाज नगमे और उनके गीतों की जो एक प्यारी सी एक मिसाल हुआ करती थी, वो लव सॉन्ग्स पर ज्यादा फिट हुआ करती थी।
1: बिल्कुल, मोहम्मद रफी जिनकी आवाज को कहा ही जाता है कि उनकी आवाज में एक रूहानियत थी। रूहानियत ऐसी कि जो भी उनके नगमे सुनता था वो खो जाया करता था। कोई भी गाना हो, कोई भी शैली हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दर्द हो, खुशी हो या फिर बहारों की खुशबू, हर किसी को, हर किसी एहसास को अपनी आवाज में बहुत ही बेहतरी से कैसे निखारा जाता है, ये मोहम्मद रफी जी बहुत ही अच्छे से जानते थे।
0: बिल्कुल, और मोहम्मद रफी जी ने तो बहुत सारे ऐसे गानों को अपनी एक मिसाल दे दी, जैसे रोमांटिक हो, फिर दर्द भरे हो, कव्वाली हो, भजन हो, देशभक्ति, कॉमेडी सॉन्ग्स, ऐसा कोई भी अंदाज हो, जिन्होंने इन सारे सॉन्ग्स को छोड़ा ही नहीं था। बेहद विनम्र इंसान, उनकी शोहरत के बावजूद बेहद सादगी भरी जिंदगी जीते थे। इंडस्ट्री में जो लोग उन्हें सबसे अच्छे और प्यारे व्यवहार के लिए जानते थे, इंडस्ट्री में लोग उन्हें उनके अच्छे व्यवहार के लिए भी याद करते थे और वो जाने जाते थे। दिल ढल गया ये दुनिया ये महफिल, तूने ये क्या कर दिया, सीधे दिल पर उतर जाने वाले सॉन्ग्स थे। लेकिन मैं बात करना चाहूंगी आरजे गुमसुम से कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत, क्या आपने ये गाना सुना है?
1: जी आरजे ख्वाहिश, बिल्कुल सुना है। और इतना प्यारा गाना, इतना प्यारा गीत, जिसकी कहे है ना कि कोई सार ही नहीं, कोई मिसाल ही नहीं।
0: ओके, तो चलिए अब हम लिसनर्स को सुना देते हैं इस प्यारे से नगमे को, जो कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की

0: अगले जिस सिंगर की हम बात करने वाले हैं, उनकी आवाज में मस्ती है, कुछ नयापन है, पर इस नएपन के साथ साथ अपनी आवाज में सभी गीतों को बड़ी ही खूबसूरती से संवारते हैं वो। और उनका गाना आते जाते खूबसूरत, इन आवारा सड़कों पर, और ऐसे ही बहुत सारे गीत जो कि आपको याद दिलाते हैं मस्ती, याद दिलाते हैं खुशी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार जी। अपनी गानों के लिए तो वो जाने ही जाते हैं, पर साथ ही साथ में जाने जाते हैं अपने व्यक्तित्व के लिए। उनका व्यक्तित्व जो बहुत ही सादा और सौम्य है। कहते हैं कि हम जितने बड़े पद पर होते हैं उतना ही हमारा व्यक्तित्व सौम्य होता है। इसकी बहुत ही बेहतरीन मिसाल है किशोर कुमार जी।
1: मल्टी टैलेंटेड जीनियस, ये भी नाम उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में मिला। किशोर कुमार गायक ही नहीं बल्कि एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। इतनी सारी प्रतिभाएं एक ही इंसान में कब मिलती हैं, जब उनके अंदर प्यार कूट कूट के भरा होता है, दूसरों के प्रति सम्मान, एक प्यार भरा होने के कारण ये सारी खूबियाँ होती हैं। आवाज जो दिल से निकली थी, उनकी आवाज में एक नेचुरल खुशी और शरारत हुआ करती थी। रोमांटिक गाने हो या फिर मस्ती भरे, वो उन गानों को गाते नहीं थे, वो उन गानों को जीते थे। मस्ती के बादशाह, एक चतुर नार, पान खाए सैया हमार जैसे ये मस्ती वाले गाने जब उन्होंने रिकॉर्ड किए थे, जब उन्होंने गाए थे, तो सारे लोगों ने उनके लिए बस एक ही कहा था, अरे वाह, अब तो बात किशोर कुमार की है। तो आइए उनकी ही आवाज में एक प्यार भरे नगमों के साथ में एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं, जो कि है हमें तुमसे प्यार।

0: अरे ये कौन सा गीत है और किसके लिए गाया जा रहा है?
1: मैं गा तो नहीं रही थी, मैं गुनगुना रही थी और सिर्फ मैं सोच रही थी आंखें बंद करके कि काश ये गाना भी मैं किसी के लिए गाऊं। और इतना प्यारा गीत है ना, जो कि उनकी आवाज, और आप सभी को पता है कि जिसने इस गीत को गाया है वो हम सबकी प्यारी आशा भोसले जी। बिल्कुल, आशा भोसले के जो गीत होते हैं वो हमेशा से एक ना रोमांटिक सॉन्ग्स को लेकर के क्लासिकल, पॉप, गजल, और वो हर तरह के गानों को जीती हैं, हर गानों को गाती हैं। उनकी आवाज में वो हर मूड भी ढलसा जाता है, चाहे वो ओपी नैयर साहब जी हो, चाहे आजी बर्मन साहब जी के साथ हो, वो हर एक जादू को अपने साथ में इस तरीके से पिरो लेती हैं कि हर युग में उनके गानों को एक यादगार के रूप में ले ही लिया जाता है। मस्ती और अदा की पहचान, जी हाँ आप सही सोच रहे हैं, जिसके लिए मैं अभी कहने जा रही हूँ, पिया अब तो तू आजा। इतने बेहतरीन सारे सॉन्ग और जो कि रोमांटिक सॉन्ग्स को दिया है वो ही हमारी आशा भोसले जी हैं।
0: बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने गीत सुना दीवाना हुआ बादल, तो देखा प्यार में क्या कुछ नहीं हो सकता। ये कल्पना देखिए प्यार के लिए कि बादल भी दीवाना हो सकता है, यानी वो भी दीवानगी कर सकता है, प्यार में पड़ सकता है। और दूसरा बहुत ही बेहतरीन गाना जो कि है पिया तू अब तो आजा, तो बिल्कुल इन दोनों ही गीतों में प्यार है बेशुमार। तो आज जैसा कि हम प्यार को ही बता रहे हैं, उसी को आपके सामने रख रहे हैं, तो आइए सुनते हैं प्यार भरे ये बहुत ही बेहतरीन गीत।

जिनकी आवाज में एक सच्चाई और टूटन थी। अब आप सोचेंगे टूटन का क्या मतलब होता है? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जब दिल टूटते हैं तो उस टूटन की कोई आवाज नहीं होती है, लेकिन प्यार भरों को जोड़ना, प्यार भरे दिल को जोड़ना जो सीधे दिल तक पहुंचती थी, उनके गाने सुनकर लगता है जैसे कोई अपना पुराना दर्द सुना रहा हो। उन्हें अक्सर राज कपूर की आवाज कहा जाता था, आवारा हूं और मेरा जूता है जापानी, जीना यहां मरना हुआ। ऐसे गानों की कई जोड़ियों को अपनी आवाज दिया और उन गानों को अमर बना दिया। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, जिनकी आवाज के लिए हम बात कर रहे हैं वो है हमारे मुकेश दाजी, जिनकी आवाज में दर्द तो था ही, इसी कारण उन्हें आवाज के बेताज बादशाह भी कहा जाता है। और उनके गाने आज भी हम सभी बड़े ही शौक से और बड़े ही दिल से सुनते हैं। कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो उनकी ही प्यार भरे गीतों को हम कैसे भुला सकते हैं। चाहे वो आज के जुगल जोड़ी क्यों ना हो, चाहे वो पुरानी ही जोड़ी क्यों ना हो, सभी के दिलों में आज के ये जो गीत हैं, ये पुराने मिक्स करके भी आज हम सभी लोगों को सुनने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं।

0: युगल जोड़ी।
1: महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हसी है, बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग जो कि मुकेश जी की आवाज में गाया गया। आप देखिए इस गीत में कि कितनी बेहतरी से बताया है कि महबूब मेरे, यानी ये गीत ये बताता है कि तुम हो तो पूरी दुनिया है, सब कुछ है, और तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। प्यार कुछ ऐसा ही होता है, अगर आपके पास आपका हमदर्द, कोई आपका हमराज है तो दुनिया बेहद खूबसूरत लगती है, और वो नहीं है तो मन करता है कि कुछ भी नहीं। ऐसा ही होता है प्यार, फिर चाहे वो आप उसे किसी भी रिश्ते में ले लीजिए, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो आपका माता पिता से आपका रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो, जब कोई हमारे दिल के बहुत करीब होता है तो हमें यही लगता है कि तुम हमेशा हमारे पास रहो, बस कहीं दूर मत जाओ। इसी एहसास को, इन्हीं बातों को, इन्हीं भावनाओं को बहुत बेहतरी से अपनी आवाज के साथ उन्होंने निखारा है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में उन्हीं का ये बेहतरीन गीत, महबूब मेरे तू है।

ट्रेनिंग अगर शास्त्रीय संगीत की थी तो उनके गानों की सुरों की गहराई में परफेक्शन साफ झलकती थी। बिल्कुल, जिनकी ट्रेनिंग अगर शास्त्रीय संगीत में की गई है तो उनकी नींव भी उतनी ही मजबूत होती है। बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। जो कि हमारे अगले सिंगर हैं मन्ना डे, जिनकी आवाज को आज भी हम बड़े ही अच्छे वाले मूड में सुनते हैं। मुश्किल धुनों के बादशाह, ऐसे गाने जो दूसरे गायक मुश्किल समझते थे, वो मन्ना डे साहब ने बड़ी ही आसानी से गा लेते थे। जैसे लागा चुनरी में दाग, पूछो न कैसे मैंने, हर मूड में फिट और हर अदा में फिट, उनकी आवाज को बड़े ही शौक से और बड़े ही चाह से हम सुनते हैं। क्लासिकल ही नहीं, उन्होंने